माज महला पंजवा जी प्राण प्रभ मन है अधारा भगत जीव है गुण गाए अपारा गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मटावे हास मनोरथ पूरन होवे टेटत गुर दरसाया जियो अगम अगोचर किश मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी खुदी मिटी चूका पुलावा गुरमन ही मह प्रगटाया जियो आनंद मंगल कल्याण निदाना सुख सहज हर नाम बखाना।

राम ठाकुर अत पारी तुमरी करतब तुम ही जान हूँ तुमरी ओट गोपाला जियो गुण गावत मन हरिया हुए कथा सुनत मल सगली खोए।

गुरु प्रसाद मन तारू तुमरी कृपा ते होए परगासा सर्व मया प्रतपाला जीव सत सत सत प्रभ सोई।

खिन पीतर हर हर हर गुण जापे जीओ माज महला पंजवा। आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गाव है गुण अगम अपारी गावत सुनत सबे ही मुक्ते सो त्याई है जिन हम की।

आई। कर कृपा प्रभ भक्ति लाभ हो, सच नानक अमृत पिए जियो। माज महला पंजवां, पये कृपाल गोविंद गुसाई। मेघ वरसै सबनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला। ठांड पाई करतारी जियो, अपने जी जंत प्रित पारी। ज्यों बारक माता संभारी, दुख भंजन सुख सागर स्वामी। देत सगल आहारी जियो, जल थल पूर रहया मेहरवाना। सद बलिहार जाइय कुर्बाना, रैन दिन सतिस सदा त्याई। जे खिन मह सगल उधारी जी।

योग कर्म कमाए दलाब देखोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला।

सुख सहज धुन उपजी साधु संग निवासा जीओ लागी प्रीत ना तू कै मूले हर अंतर बाहर रहया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम की फासा जीओ अमृत वरख है अनहद बाणी मन तन अंतर शांत समाणी तृप्त अगाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जीओ जिसका साह तिस ते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मलाया आमन जान रहे वड भागी नानक पूर्ण आसा जीओ माज महला पंजवा मीह पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेश पया सुख साचा हर हर नाम संभाली जीओ जिसके से तिन्ही प्रित पारी पार ब्रह्म प्रभ पये रखवारी सुनी बेनंती ठाकुर मेरे पूर्ण होई काली जीओ सर्ब जिया कहो देवनहारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल थल महियलो।

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जीओ। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जीओ। सुख दाता दुख भंजन हारा,

तुद त्याई जीओ माज महला पंजवा सभी सुख पए प्रभ तुठे गुरपूरे के चरण मन उठे सहज समाध लगी लिव्य अंतर सोर

मन इको सच्चा हुक्म पछाणी सहज संतोख सदा त्रिपतासे अनद खसम कह पाणे जीओ हथी दिती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारी नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्ति।

गुर के चरण बसे मन माही, अंगीकार किया तिन करतै, दुख का डेरा टाहया जीओ, मन पन बसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसै कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जीओ, जो किछ करे सो आपे आपै, बुद्ध सियाणप किशु ना जापै, अपनिया संतां नू आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जीओ, चरण कमल जन का आधारु, आठ पहर राम नाम वापारु, सहज आनंद गावहै गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जीओ, माज महला पंजवा, सो सच मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा धरत सुहावी जित वस है हर जन, सच्चे नाम विटहो कुरबाण जियो, सच वडाई कीम ना पाई, कुदरत कर्म ना कहना जाई, त्याए त्याए जीव है जन तेरे, सच शब्द मन माणो जियो, सच सलाहन वड भागी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

सुई नानक सच तियाई सदही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूरत सिमरत पल वंजह जीवन सफल तिथाई जियो सिमरत नाम दुख सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथी पै पौ परम खोया गुरपूरे देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वाडे ऊच अपारा नौ निद नाम भरे भंडारा आदि अंत मद प्रभ सोई दूजा लवै ना लाई जियो कर किरपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचै सादर वाला देह दान नानक जन मांगै सदा सदा हर त्याई जियो माज महला पंजवा एथे तू है आगे आपे जी जंतर सब तेरे थापे तुद बिन अवर ना कोई करते मैं

ही सुख पाया, सो जन्म न जूए हारी जीव। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया। हर कीर्तन गाव हो दिन राती, सफल एहा है कारी जीव। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया।

ऐसा भली जाए। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लग है जिस मीठा जियो। सब परोई इकत धागै, जिस लाए लए सो चरनी लागै। ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निरंजन।

निर्मल जिन देखे सब उत्तर कलमल नानक नाम त्याए त्याए जीवै बिनसिया भ्रम पहो तीठा जीओ माज महला पंजवा झूठा मंगण जे कोई मांगे तिस को मर

अन दिन नित जागी बाहां पकड़ तिस स्वामी मेले जिसकै मस्तक लैणा चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांच है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाइए जिस सिमरत वार निहचल पाइए नानक कहो प्रभ होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदियां।

माया मोह चुकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारनिया गुरमती परगास हो आजी अन दिन हर गुण गावणिया रहाउ तन मन खोजे ता नाउ पाई धावत राखै ठाक रहाई गुर की बाणी अन दिन गावै सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साथ मिले ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया।

जामपुर बद्दा दुख सहाही, अन्ना बोला किस नदर ना आवे, मन मुख पाप पचावनिया, एक रंग राते जो तुद आप निवलाई, पाए भगत तेरे मन पाई, सतगुर सेवन सदा सुख दाता, सब इच्छा आप पुजावनिया, हर जीओ तेरी सदा सरनाई, आपे बख्शे दे वडियाई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, जो हर हर नाम त्यावनिया, अण दिन राते जो हर पाई, मेरे प्रभ मेले मेल मलाई, सदा सदा सच्चे तेरी सरनाई, तू आपे सच बुझावनिया, जिन सच जाता

तै सदा नाली गुर प्रसादी को नदर निहाली मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मनावणिया माया मोहे एहो जग सुत्ता।

मन वसाई आंदिन सदा रह भय अंदर भय मार भरम चुकावणिया भरम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजी गावणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाणे भरमे भूला।

सावणिया गुर कृपा ते हर निरपौ ध्याया बिख पौ जल शब्द तरावणिया रहाउ मन मुख मुग्ध करह चतुराई नाता धूता थाए ना पाई जिहा आया तेहा जासी कर अवगण पछो तावणिया मन मुख अंधे किशु ना सूझै मरन लखाए आए नहीं बूझै मन मुख कर्म करे नहीं पाए बिन नामे जन्म गवावणिया सच करनी शब्द है सार पूरा गुर पाईऐ मुख द्वार अन दिन बाणी शब्द सुनाई सच राते रंग रंगावणिया रसना हर रस राती

गुरमुखो वैसो इक सिंह निभलाए, दूजा भरम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वापारा, नाम निधान सच पावणिया, गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, आनंद रंग रत्ता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया, सतगुर दाता मिले मिलाया, पूरे भाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वडियाई, हर सच्चे के गुण गावणिया, माज महला तीजा, आप मंझाए ता सब किछ पाई, गुर शब्दी सच्ची लिवलाई, सच वणंजह सच संग्रह है।

निर्मल बाणी शब्द वखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया, सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा, परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया, माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पलाणी।

पात्रे भिदमाया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सार ना पावणिया, आपे रंगे रंग चढ़ाई, से जल राते गुर शब्द रंगाई, हर रंग चढ़िया अत अपारा, हर रस रस गुण गावणिया, गुरमुख रिद सिद्ध सच संयम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई।

गुरमुख जात पत सब आपी, नानक गुरमुख नाम त्याई, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत परलोह शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओ पत होवे। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख अपाए समावणिया। हों वारी जीओ वारी, गुरपूरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कहै गुणी समावणिया। रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन बै संतर।

मूड़ा बाहर पाली, मनमुख अंधे फिरह बेताली, जिथे वत होवे तिथों कोई ना पावे, मनमुख परम भलावनिया आपे देवे शब्द बुलाई, महली महल सहज सुख पाई, नानक नाम मिले वडियाई, आपे सुन सुन ध्यावनिया, माज महला तीजा सतगुर साची सिख सुनाई, हर चेतो अंत होए सखाई।

हर पाई हर सिओ सहज समावणिया रहाउ पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया सतगुर सेव सदा सुख पाया बिन भागा गुर पाईऐ नाही शब्द मेल मलावणिया गुरमुख अलिप्त रह संसारी गुर कै तकिया नाम अधारी गुरमुख जोर करे क्या तिसनो आपे खप दुख पावणिया मनमुख अंधे सुध ना काई आत्म घाती है जगत कसाई निंदा कर कर बहु भार उठावे बिन मजूरी भार पहुंचावणिया इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली सदा संभाले को नाही खाली जेही वासना पाए ते ही वरतै वासु वास जनावणिया मनमुख रोगी है संसारा सुखदाता विसरिया अघम अपारा दुखिए नित फिर है बिललांदी बिन गुर शांत।

पावणिया। किस बाजू हूँ सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाई लय सो निर्मल होई। नानक नाम वसै घट अंतर, जिस देवै सो पावणिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाई। हम मैं मेरा सब दुख गवाई।

अमृत बाणी मन वसाई, अमृत नाम त्यावणिया रहाव। अमृत बोलै सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा लैणी। अमृत कथा कह सदा दिन राती, अवराख सुनावणिया। अमृत रंग रता लिवलाई, अमृत गुर प्रसादी पाई। अमृत रसना बोलै दिन राती, मन तन अमृत पी आवणिया। सो किस करै जो चित ना होई,

खोटे भरम पलावणिया क्यों कर वेखा क्यों सालाही गुर प्रसादी शब्द सलाही तेरे पाणे विच अमृत वसै तू पाणे अमृत पी आवणिया अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुर सेवै हृदय समाणी नानक अमृत नाम सदा सुख दाता पी अमृत सब भुख लह जावणिया माज महला तीजा अमृत वरसै सहज सुपाय गुरमुख विरला कोई जन पाए अमृत पी सदा तृप्तासी कर कृपा तृष्णा बुझावणिया।

नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी, तुझते बाहर किस ना हुए, गुरमुख सोजी पावणिया गुरमुख तत है बिचारा, अमृत भरे तेरे भंडारा।

सच राती सच सुन आख बखाननिया मनसा मार सच समाणी इन मन डीटी सभ्या मन जानी सतगुर सेवे सदा मन निश्चल निज घर वासा पावनिया गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह शब्द जलाया सचो सचा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावनिया जो सच राते तिन सची लिव लागी हर नाम संभाल है से वडभागी सच्चा शब्द आप मलाई सतसंगत सच गुण गावनिया लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवे ओह अगम अगोचर शब्द सुद होवे अन दिन सच शब्द सलाही होर कोई ना कीमत पावनिया पढ़ पढ़ था के शांत ना आई तृष्णा जाले सुध ना काई बिख विहाज है बिख मोह प्यासी कूड़ बोल बिख खावनिया गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाना नानक एको नाम वरतै मन अंतर गुर प्रसादी पावनिया माज महला तीजा वर्ण रूप वरत है सब तेरे मर मर जमह फिर पवह कनेरे तू एको निश्चल अगम अपारा गुरमति बूझ बुझावनिया हों वारी जियो वारी राम नाम मन वसावनिया किस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमति आप

तै सब थाई ज्योति ज्योत मलावणिया तिसना अगन जलै संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा मर मर जन्मै पत गुआई अपनी बिरथा जन्म गुआवणिया गुर का शब्द को विरला बूझै आप मारे तां त्रे पवन सूझै।

सच सलाहि सब घट अंतर, सचो सच सुहावनिया। सच सलाहि सदा हजूरे, गुर कै शब्द रहया परपूरे। गुर पर साधु सच नदरी आवे, सच्चे ही सुख पावनिया। सच मन अंदर रहया समाए, सदा सच निश्चल आवे ना जाए। सच्चे लागै सो मन निर्मल, गुरमति सच समावनिया। सच सलाही अवर न कोई, जित सेवै सदा सुख होई। नानक नाम रते विचारी, सचो सच कमावनिया। माज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी। निर्मल जोत सब माहि समाणी, निर्मल बाणी हर सालाही। जप हर निर्मल मैल गवावनिया, हों वारी जीओ वारी। सुखदाता मन वसावनिया, हर निर्मल गुर शब्द सलाही। शब्दो सुन तिसा मटावनिया, रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आई। मन तन निर्मल माया मोह गुआई, निर्मल गुण गावै नित साचे के। निर्मल नाद बजावनिया, निर्मल अमृत गुर ते पाया। विचों आप मोआ तिथे मोह ना माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल। निर्मल बाणी मन वसावनिया, जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवै। हऊ मैं मैल गुर शब्दे धोवै, निर्मल वाजै अनहद धुन बाणी। दर सच्चै सोभा पावनिया, निर्मल ते सब निर्मल होवै। निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै, निर्मल नाम लगे बड़ भागी। निर्मल नाम सुहावनिया, सो निर्मल।

माया मोह इस मनहन चाई, अंतर कपट दुख पावनिया, गुरमुख भगत जा आप कराई, तन मन राता सहज सुपाई, बाणी बजे शब्द बजाई, गुरमुख भगत थाई पावनिया, बहु ताल पूरे बाजे बजाई, ना को सुने ना मन वसाई, माया कारण पेड़ बंद नाचे, दूजे पाए दुख पावनिया, जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संयम जुगता, गुर कै शब्द सदा हर त्याई, एहा भगत हर पावनिया, गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाईए, गुर चरणी चित लावणिया, माज महला तीजा, सच्चा सेवी सच सालाही, सच्चे नाही दुख कब ही नाही, सुख दाता सेवन सुख पाइन, गुरमत मन वसावणिया, हौ वारी जीओ वारी, सुख सहज समाग लगावणिया, जो हर सेवह से सदा सोह, सुबा सुत सुहावणिया, रहाउ सबको तेरा भगत कहाय, सेई भगत तेरे मन पाए, सच बाणी तुदै सालाहन, रंग राते भगत करावणिया, सबको सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिले ता चूकै फेरा, जां तुद भावै ता नाही रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया, गुरमती हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, इक सस्यों डिव लागी सदही, हर नाम मन वसावणिया, भगत रंग राते सदा तेरे चाई, नौ निध नाम वसया मन आई, पूरे भाग सतगुर पाया।

किसै मलाई, गुर शब्द मिलहै से विछड़ह नाही। सहजे सच समावणिया, तुझते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेखहै जानहै सोई।

माज महला तीजा आत्म राम परगास गुर ते होवे हौं मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे मन निर्मल अन दिन भगती राता भगत करे हर पावणिया हौं वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया तिन्ना भगत जना को सद नमस्कार कीजै जो अन दिन हर गुण गावणिया रहाओ आपे करता कारण कराई जित पावै तित कारै लाई पूरै भाग।

सदा मुकत हर मन वसाई, सहजी सहज समावनिया, बहु कर्म कमावै मुक्त न पाई, देसंतर भवै दूजे भाई खुआई, बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्द दुख पावनिया, धावत राखै ठाक रहाई, गुर प्रसादी परम पद पाई, सतगुर आपे मेल मलाई, मिल प्रीतम सुख पावनिया, एक कूड़ लागे कूड़े फल पाई, दूजे भाई बिरथा जन्म गवाई, आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड़ बोल बिख खावनिया, इस तन मह मन को गुरमुख देखै, भाई भगत जा हौ मैं सुखै, सिद्ध साधक मोल धारी रहे लिवलाई, तिन

मैं मारे बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया। बिन शब्द नाम ना पाई कोई, गुर कृपा मन वसावणिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेतरी पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति ज्योत मिली मन मान।

गुरमुख हर दर शोभा पाई, गुरमुख विचों आप गवाई, आप तरह कुल सगले तारी, गुरमुख जन्म सवारनिया, गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हौ मैं चूकै पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सहज समावनिया, गुरमुख नाम मिले वडियाई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रहे दिन राती, गुरमुख शब्द करावनिया, गुरमुख आन दिन शब्दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्दे भगत करावनिया, बाज गुरु है अंध अंधारा,

कर आए, गुरमुख हृदय उठाय आप आई, नानक नाम मिले वडियाई, पूरे गुर ते पावणिया, माज महला तीजा, एका जोत जोत है शरीरा, शब्द दिखाए सतगुर पूरा, आपे फर्क की तुन घट अंतर, आपे बणत बनावणिया, हों वारी जियो वारी, हर सच्चे के गुण गावणिया, बाज गुरु को सहज ना।

फेरा, जम्मण मरण ना चूकै फेरा, गुरमुख हो ऐसो हमें मारी, सचो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दुही मिलकै सृष्ट उपाई, दुए मार जाए इकत घर आवे, गुरमत सहज समावणिया, कर ही माही दूजे पाए अनेरा, चानण होवै छोड़ै हमें मेरा, प्रगट शब्द है सुखदाता, अन दिन नाम त्यावणिया, अंतर जोत प्रगट पा सारा, गुरसाखी मिटिया अंधियारा, कमल बगास सदा सुख पाया, ज्योति जोत मलावणिया, अंदर महल रतनी परे भंडारा।

सत सच्चा हृदय वसावणिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाउ आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेव है गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सू है, गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हम मैं परम चुकाया। अन दिन नाम सलाहन रंग राती, गुर किरपा ते पावणिया। गुर कै शब्द इहो गुफा विचारी, नाम निरंजन अंतर वसै मरारी। हर गुण गावै शब्द सुहाई, मिल प्रीतम सुख पावणिया। जम जा गाती दूजै पाई कर लाई, नाम भूले दे सजाई। कड़ी मोहत का लेखा ले वै, रतियों मासा तोल कढावणिया। पे अड़ै फिर चेते नाही, दूजै मुठी रोवै ताही। खरी क्वालियो कुरूप कलखणी, सुपने फिर नहीं पावणिया। पे अड़ै फिर मन वसाया, पूरे गुर हदूर दिखाया। कामन फिर राख्या कंठ लाई, शब्दे फिर रावै सेज सुहावणिया।

पाड़ बोझ मानव सामणिया गुरमुख पढ़ है हर नाम सलाह है दर सच है सूबा पावणिया रहाऊ अलक अपेयो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करी ता सतगुर पीते नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं दूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूटे हैं गुर शब्दी मुक्त करावणिया इहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस तावे बिख का कीड़ा बिख मैं राता बिख ही माही पचावणिया हों हों करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझते बाहर किछु ना हुए बख्शे शब्द सुहावणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अन दिन दूजे पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश शिंगार बनाई मन मुख आंदे से।

कै शब्द पुछाता, अन दिन भगत करे दिन राती, सहजे ही सुख पावनिया, सब मैं वरतै इको सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, नानक नाम रते जन सोहै, कर किरपा आप मलावनिया, माज महला तीजा, मनमुख पढ़ै पंडित कहावै, दूजै पाए महा दुख पावै, बिख्या माते किस सूजै नाही, फिर जूनी आवनिया, हौ वारी जियो वारी, हौ मैं मार मनावनिया, गुर सेवा ते हर मन वसिया, हर रस सहज पी आवनिया, रहाउ वेद पढ़ै हर रस नहीं आया, वाद वखाणै मोहे माया, अज्ञान मत्ती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावनिया, अकथो कथिया शब्द सुहावै, गुरमती मन सचो पावै, सचो सच रवै दिन राती, इहो मन सच रंगावनिया, जो सच रत्ते तिन सचो पावै, आपे दे ना पछो तावै, गुर कै शब्द सदा सच जाता, मिल सच्चे सुख पावनिया, कूड़ कसत किन्ना मैल ना लागै, गुर प्रसादी अन दिन जागै, निर्मल नाम वसै कट पीतर, ज्योति जोत मलावनिया, त्रै गुण पढ़ै हर तत ना जानै, मूलों भुले गुर शब्द ना पछाणै, मोह व्यापे किस सूजै नाही, गुर शब्दी हर पावनिया, वेद पकारै त्रिविध माया,

मैं मल लाई, इशनान करै पर मैल ना जाई, जीवत मरै गुर शब्द बीचारै, हम मैं मैल चुकावनिया, रतन पदार्थ करते पाया, पूरा सतगुर शब्द सुनाया, गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा, घट चानने आप पछाननिया, आप अपाए तै आपे वेखै, सतगुर सेवै सो जन लेखै, नानक नाम वसै घट अंतर, गुर किरपा ते पावनिया। माज महला तीजा, माया मोह जगत सबाया, त्रै गुण दिसह मोहे माया।

मोह जलाई सो हर सिउ चित लाई हर दर महली शोभा पावणिया रहाउ। देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त्र जिन उपाया काम क्रोध पसरिया संसारी आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जात सत संयम सच कमावै गुरपूरै नाम त्यावणिया पेयड़ै तन परम फुलाणी दूजै लागी फिर पछोताणी हलत पलत दोवै गवाई सुपनै सुख ना पावणिया पेयड़ै तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखै नाले फिर कै सहज रह रंग राती शब्द शिंगार बनावणिया सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया दूजा भाओ गुर शब्द जलाया एको रव रहिया घट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावणिया सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मनमुख नाम चित ना आवै बिन नावै बहु दुख पावणिया जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मेलै शब्द पछाणे नानक नाम मिलिया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखावणिया माज महला चौथा आदि पुरख अपरंपरे।

आज महला पंजवा कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता कौन सो गृही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जियो किन बिद बादा किन बिद छूटा किन बिद आवण जावण टूटा कौन कर्म कौन नेह कर्मा कौन सो कह कहाए जियो कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया किन बिद मिलिया किन बिद बिछर एह बिद कौन प्रगटाए जियो कौन सो अखर जित धावत रहता कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याई किन बिद कीर्तन गाए जियो गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता तन गिरहि उदासी गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जियो हउमै बादा गुरमुख छूटा गुरमुख आवण जावण टूटा गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा गुरमुख करे सो सुपाए जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया मनमुख विछरे गुरमुख बिद प्रगटाए जियो गुरमुख अखर जित तावत रहता गुरमुख उपदेश दुख सुख सम सहता गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याई गुरमुख कीर्तन गाए जियो सगली बणत बणाई आपे आपे करे कराए थापे इकस ते होयो आनंता नानक एकस माहे समाए जियो माज महला पंजवा प्रभ अबनासी ता क्या काड़ा हर भगवंता ता जन खरा सुखा।

गुरमुख मन तन पावणिया, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावणिया। रहाव तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट पार ब्रह्म तिन जन दीठा, थान थनंतर तू है तू है, इको एक वरतावणिया। सगल मनोरथ तू देवन हारा, भगती पाए परे पंडारा, दया तार राखे तुद से, पूरे कर्म समावणिया। अंधकूप ते कंडे चाड़े, कर किरपा दास नदर निहाले, गुण गावे है पूर्ण अवनासी, कह सुन तोट ना आवणिया। एथे उथे तू है रखवाला, मात गर्भ में है तुम ही पाला, माया अग्न ना पो है तिनको, रंग रते गुण गावणिया। क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर ना जाननिया। जिसको तू प्रभ पया सहाई, तिस तत्ती वाओ न लगे काई, तू साहेब सरन सुख दाता, सत संगत जप प्रगटावणिया। तू ऊच अथाह अपार अमोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला, तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावणिया। माज महला पंजवां कर दूजा, नित नित दयो संभाली है, मूल ना मनहु विसारी है। रहाव संतां संगत पाई है, जित जम कह पंथ ना जाई है।

है। कार्ज सब सवार लह नित पूजो हो गुर के पाव जियो, जो हर कीता है अपना किनह गुसाई जापना, सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिस द भाग जियो, मन मंदे हे प्रभ अवगाहिया एह रस भोगण पातशाहिया, मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कार लाग जियो, करता मन वसाया जन्म का फल पाया, मन पावंदा कंत हर तेरा तिर हुआ सुहाग जियो, अटल पदार्थ पाया

राम जित घर हर कंतना प्रगटई पाठ नगर से ग्राम सर्ब सिंगार तंबोल रस सन देहि सब खाम।

आनेह चल काम चेत गोविंद अरादिया होवे आनंद घना संत जना मिल पाईए रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल तल मई अल पूरिया रव्या विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मलाई सो प्रभु तिसकै पाई लगा वैसाख तीरन क्यों वादिया जिन्ना प्रेम बशो हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तो पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओह पलच पलच सगली मुई झूठ तंदे मोह इक सहार के नाम बिन अगे लई है खोहे दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई प्रीतम चरणी जो

वन साधु संग परापते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस तनी जिस कै भाग मथन असाड़त पंदा तिस लगे हर लाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस दुइये पाइव गुचिये गल पई सो जम की फास जेहा बीजै सो लुणे मथे जो लिखियास रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निराश जिनको साधु भेटिए सो दरगहा हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा विया दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वाण तेन प्रभ संग मौलिया समरत पुरख अपार हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौ तिन कै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवार नहार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार भादोए परम पलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देह बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत पकड़ चलायन।

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरु वह रोज कीता किशु ना होवई लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब वियोग नानक कौ प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कत्तक होवे साध संग बिन सह सबे सोच मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां किनकी शोभा क्या गणी जे साहेब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सही लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम कै बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरनी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राई सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई मिल

लाख बेरियां हर सज्जन अगम अगाह शरण पई नारायण नानक दर पैया पोख सोहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान जन्म कर्म मल उत्तर।

सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगहा सच खरी सर्व सुखा निध चरण हर भौजल बिखम तरी प्रेम भगत तिन पाईया बिख्या नाही जरी कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म प्रभ सेम दे मन अंदर एक तरे महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे नानक मंगे दर्श दान कृपा करहु हरि माज महला पंजवा दिन रैन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रैन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैन जन्म जन्म का विछड़िया हर मेल हो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैन हर फिर बिन चैन ना पाई खोज दिते सब गैन आप कमाणे विछड़ी दोष ना काहू देन कर कृपा।

नंतिया हर सुरजन देखा नैन जी की बिरथा सुह सुनी हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार ससुरै पेय तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध किस अंत न पारावार सेवा सा तिस भावसी संतां की होए शार दीना नाथ दयाल देव पतत उदारण हार आद जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई ना जाने।

अंत आराधन सद सदा सबना का बख्शिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती नगिंद गुर शब्दी आराधिय जपिय निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइय परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायणु सो कहिय भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रैण जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्ब कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थां हर ऊट गई मन अंदरी जप जप जीवा नाम कर कृपा प्रभ अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू राख है त्यों रहा तेरा दिता पैना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बनासन तम हरन ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेली है नानक एहो सुआओ सर्व कल्याणा तित दिन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तत्

जाई। जिन रच रचिया तिसह ना जाने, अंधा अंध कमाई। जा भजै ता ठीकर होए, घाड़त घड़ी ना जाई। नानक गुर बिन नाही पत, पत बिन पार ना पाई। महला दूजा, दिन दे थाम हूं दिता चंगा, मन

कर्म कमावे सो चहो कुंडी जानिए, जो धर्म कमावे तिस धर्म नाऊ होवे, पाप कमाणे पापी जानिए, तू आपे खेल करह सब करती, क्या दूजा आख बखानी है, जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले, बिन ज्योति कोई किस करे हो दिखा सियाणी है, नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सुगड़ सुजानी है, पौड़ी तुदे आपे जगत अपाए कै, तुदे आपे तंदे लाया, मोह ठगौली पाए कै, तुदे आपो हो जगत खुआया, जिसना अंदर अग्न है नह तिपतै भुखा त्याया, सहसा एहो संसार है मर जमै आया जाया, बिन सतगुर मोह ना तुटई सब थके कर्म कमाया, गुरमति नाम त्याई है सुख रजा जा तुद पाया, कुल उधारे अपना धन जने दी माया, सोभा सुरत सुहावनी जिन हर सेती चित लाया, सलोक महला दूजा अखी बाजो वेखना विन कन्ना सुनना, पैरा बाजो चलना विन हथा करना, जीबे बाजो बोलना इं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै तो खसमै मिलना, महला दूजा।

पाया। ज्यो भावै त्यो रख तू, सब करे तेरा कराया। इकना बख्श है मेल लह, गुरमति तुझ लाया। एक खड़े करह तेरी चाकरी, विण नावे होर ना पाया। होर कार वे कार है, एक सच्ची कार है लाया। पुत कलत कटंब है, एक अलिपत रहे जो तुझ पाया। ओहे अंदर हूं बाहर हूं निर्मले, सच्चा नाहे समाया। सलोक महला पहला, सोइने कै पर्वत गुफा करी। कै पानी पयाल, कै विच धरती कै आकाशी। उर्द रहा सिर पार, पुर कर काया कपड़ पहरा। तुआ सदाकार, बग्गा रत्ता पियला काला। बेता करी पुकार, हुए कुचील रहा मल तारी। दुर्मत मत विकार, ना हूं ना मैं ना हूं। नानक शब्द विचार। महला पहला, वस्त्र पखाल पखाले काया। आपे संयम होए, अंतर मैल लगी नहीं जाने। बाहर हूं मल मल धोए, अंधा भूल पया जम जाले। वस्त पराई अपनी कर जाने, हम मैं विच दुख काले। नानक गुरमुख हम मैं टुटे, ता हर हर नाम ते आवे। नाम जपे नामो आराधे, नामे सुख समावे पवड़ी। काया हंस संजोग मेल मलाया, तिन्ही किया वजोग जिन उपाया। मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया, सुख हो उठे रोग पाप कमाया। हरख हो सोग वजोग उपाय खपाया। मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया। सतगुर हाथ नबेड़ झगड़ चुकाया। करता करे सो होग ना चले चलाया। सलोक महला पहला, कूड़ बोल मुरदार खाई। अवरी नो समझावन जाई, मुठा आप महाए साथ है। नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा, जिसदे अंदर सच है। सो सच्चा नाम मुख सच अलाई। ओहो हर मार्ग आप चलदा, होर नानू हर मार्ग पाई। जे अगे तीर्थ होए ता मल लह, छप्पड़ नातै सगवी मल लाई। तीर्थ पूरा सतगुरु, जो अन दिन हर हर नाम त्याई। ओहो आप छुट्टा कुटंब सियो, दे हर हर नाम सब सृष्ट छडाई। जन नानक तिस बलिहार ने, जो आप जपै अवरा नाम जपाई। पौड़ी एक कंद मूल चुन खाहे, वन खंड वासा। एक भगवा वेश कर फिर है, जोगी सन्यासा। अंदर तृष्णा बहुत, साधन भोजन की आसा। बिरथा जन्म गवाई, ना गिरही ना उदासा। जम काल सिरहो ना उतरे, त्रे विद मनसा। गुरमति काल ना आवै नेड़े, जा होवै दासन दासा। सच्चा शब्द सच मन, घर ही माहे उदासा। नानक सतगुर सेवन अपना, से आसा ते निरासा। सलोक महला पहला, जे रत लगे कपड़े, जामा होए पलीत। जो रत पीवे मानसा, तिन क्यों निर्मल चीत। नानक नाहो खुदाई का, दिल हच्छे मुख ले हो। अवर दवाजे दुनी के, झूठे अमल करे हो। महला पहला, जाहो नाही ता क्या आखा। किहो नाही क्या हुआ, कीता करना कहया कथना। भरिया पर धुआ, आप ना बुझा लोक बुझाई। ऐसा आगू हुआ, नानक अंधा हुए कै दसी राह है।

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाव पढ़िया नाव बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगती परे भंडारा।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माहे निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्ब भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किते से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां होवह तीनवा सोम होवह दुध कीओ सगली धरती सक्कर होवे खुशी करे नित जीओ।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाव पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोहरा रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

चार खसम पठाया, तबल बाज दी चार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती, इकनी बदे पार इक ना ताखती। सलोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया, रही सो पलरवार सण की सारा चिथिया। कान लया तन झाड़, दोए पुड़ चक

पाला क्या करे, खुसरे क्या करवास, कुत्ते चंदन लाई है पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझाई है भरी है सिमरत पाठ, अंधा चानन रखी है जीरे बल है पचास, चौने सोयना पाई है चुन चुन खावे कास, लोहा मारन पाई है कह ना हुए कपास ना।

एक खोटे एक खरे आपे परखण हार, खरे खजाने पाई है खोटे सती है बाहर वार, खोटे सच्ची दरगाह सुटी है किसे आगे करह पुकार, सतगुरु पिछे भज पवे है एहा करनी सार, सतगुरु खोट्यों हो खरे करे शब्द सवार नहार, सच्ची दरगाह मनियन गुर कै प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करी जो आप

मेरबद बादशाह अफजू खुदाई, एक तू ही एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साधका तरा, अस्त एक दिगर कोई एक तुई एक तुई महला पहला, ना दादे देहांदे आदमी ना सपत जेर जिमी, अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला, ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप नह जलो, अन पौन फिर ना कोई एक तुई महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला, परंदे ना ग्रहा जर दरखत आब आस कर, देहांद सुई एक तुई महला पहला, नानक ललार लिखिया।

खाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवह लै साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे भावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाहे एक ना शक्ति ही अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाए एक पौन समारी पौन समार एक निरंकारी नाम आधार जीवे दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम त्याई है दूजी कार लग जन्म गवाई है बिन नावे सब विस पेंजे खाई है सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है बिन सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा सलाहे पत स्यों जाई है सलोक महला पहला तुद भावे ता वावे गावे तुद भावे जल नावे जा तुद भावे।

सेख कहावह, जां तुद भावै ता होवह राजे, रस कस बहुत कमावह, जां तुद भावै तेग भगावह, सिर मुंडी कट जावह, जां तुद भावै जाहे दसंतर, सुन गल्लां घर आवह, जां तुद भावै नाहिर चावह, तुद पाणी तू भावह, नानक एक कह बेनंती, होर सगले कूड़ कमावह। महला पहला, जां तू वड्डा सब वडियाईयां, चंगा चंगा होई, जां तू सच्चा ता सब को सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई, आखण वेखण बोलण चलण, जीवन मरना तात, हुक्म साज हुक्मै विच रखै, नानक सच्चा आप पौड़ी, सतगुर सेवन संग परम चुकाई है, सतगुर आखै कार सो कार कमाई है, सतगुर हुए दयाल ता नाम त्याई है, लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है, मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है, सच्चे दै दर जाए सच चुवाई है, सच्चा अंदर महल सच बुलाई है, नानक सच सदा सच्यार सच समाई है। श्लोक महला पहला, कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया, हों भाल विकुन्नी होई, अंधेरै राहो ना कोई, विच हों मैं कर दुख रोई, कहो नानक किन बिदगत होई। महला तीजा, कल कीरत प्रगट चानन संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, जिसनो नदर करे तिस देवै, नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी, भगतां तै संसारियां, जोड़ कदे ना आया, करता आप अभुल है, ना भुलै किसै दा भुलाया,

बिख खाया चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करन हर चाकरी जिन्नी अन दिन नाम त्याया दासन दास होए कै जिन्नी विचों आप गवाया ओना खसमै कै दर मुख उजले सच्चै शब्द सुहाया सलोक महला पहला सबाही सालाह जिन्नी त्याया इक मन से पूरे साह वक्त उपर लड़ मोए दूजे बहुते राह मन किया मती खिंदिया बहुत पए असगाह गोते खाए ना निकलह तीजे मुही ग्राह भुख तिखा दोए पौंकिया खादा हुए स्वाह पी खाने स्यों दोस्ती।

पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुट्ठी तंदे चोर महल ना पाई है इन्हें चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाई सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तोलाई है कोई ना आखै घट हों मैं जाई है लइयन खरे परख डर भी नाई है सौदा इक तहट पूरे गुर पाई है सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर इस विच नौ निद नाम एक पाल है गुणी गहीर कर्म

ठगियो ठग आईऐ जाईऐ तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाईऐ सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्कै कर्म ध्यान पत।

प्यार मन वसाइय मोहत ना चसा विलम भरिय पाइय गुर प्रसादी बुज सच समाइय सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस हंडन करमा बाहरी महला पहला मत पंखे रू किरत साथ कब उत्तम कब नीच कब चंदन कब अक डाल कब उच्ची परीत नानक हुक्म चलाई है।

पावना, खट दर्शन कै भीख किसे सच समावना, सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना, मन्ने नाउ बसंक दरगाह पावना, खालक कौ आदेश ढाडी जावना, नानक

आपण है देखू चाया पे लाए हुक्म पया तुर खसम का अती हूं टका खाए गुरमुख स्यो मन मुख अड़े डुबे हक न्याय दुहां सिरियां आपे खसम वेखे कर व्यपाय नानक एवै जानिए सब किस तिसहर जाय महला दूजा नानक परखे।

तृप्तिया सायर परेक सुख नानक सच्चे नाम की कीती पुछा पुछ महला दूजा नेह पलंग तस जन्मस

पौड़ी खसमै कै दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलाण कमल विगसिया खसमुह पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल वधोसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास

जे सौ धोवण पाए नानक बख्शे बख्शी है नाहे ता पाही पाए महला पहला नानक बोलण चखना दुख छड मंगी है सुख सुख दुख दोए दर कपड़े पहर है जाए मनुख जिथे बोलण हारी है तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरख अलख सिरज निहालिया उजड़ भुले राह गुर वेखा लिया सतगुर सच्चे वाह सच संभालिया पाया रत्न कराह दीवा बालिया सच्चा शब्द सलाहे सुखिए सच वालिया ने डरिया डर लग गर्भ से गालिया नाउह भुला जग फिर बेतालिया सलोक महला तीजा पै विच जम्मै पै मरै

नानक भैवन जी मरै मुहे काले उठ जाय पौड़ी। सतगुरु हुए दयाल ता शरदा पूरी है, सतगुरु हुए दयाल ना कबहू चूरी है। सतगुरु हुए दयाल ता दुख ना जानी है, सतगुरु हुए दयाल ता हर रंग माणी है। सतगुरु हुए दयाल ता जम का डर के हा, सतगुरु हुए दयाल ता सद ही सुख देहा। सतगुरु हुए दयाल ता नव निद पाई है, सतगुरु हुए दयाल ता सच समाई है। सलोक महला पहला सिर खुहाए पिए है मलवाणी, जूठा मंग मंग खाही फूल फदीहत मुहे लैन पड़ासा। पानी देख सगाही भेडा वांगी सिर खोहायन, भरियन हथ सुआही माऊ पीऊ किरत गुआयन। टब्बर रोवन ताही ऊना पिंड ना पत्तल किरिया ना दीवा, मुए एक थाऊ पाही अठसठ तीरथ देन ना ढोई। ब्रह्म

इत के होम जग सद पूजा पै कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वडे आई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए नानक ता पत जानी है जा पत रखे सोए पौड़ी तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा दी बाण हो रिया मन।

चढ़े सुआया, नानक मंगे दान जो तुद पाया। सलोक महला दूजा, दीख्या आंख बुझाया, सिफती सच समेओ तिनको क्या उपदेसी है। जिन गुर नानक देव महला पहला, आप बुझाए सोई बुझे, जिस आप सुझाए तिस सब किस सूझे। कह कह कतना

लह परांत हुए जिस दात पौड़ी हो ढाडी वेकार कार लाया रात जह कह वार तुरो फुरमाया ढाडी सच्चे महल खसम बुलाया।

खादा राज तिन सुख पाया ढाडी करे पसाओ शब्द बजाया नानक सच सलाहे पूरा पाया शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला चौपदे दुपदे

ना डूबै तरै जिन किस किया सो किस करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाई हंस हित आसा समान तिस विच भूख बहुत नैसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार।

नानक आखण बिखम बीचार। गौड़ी महला पहला, माता मत पिता संतोख, सत भाई कर इहो वसेख। कहना है किस कहन न जाए, तौ कुदरत कीमत नहीं पाए। रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भये, करनी कामन कर मन लये। साहा संजोग व्याह वियोग, सच संतत कहो नानक जोग। गौड़ी महला।

तत तीर्थ जाही रत्न पदार्थ घट ही माही पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाणे पीतर होंदी वस्त ना जाने हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई ओ ना मुआ जो रहे आसमाई कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया मरता जाता नदर ना आया गौड़ी महला पहला दखनी सुन सुन बूझे मन नाउ ता कै सद बलिहारे जाऊं आप भुलाए ठौर ना ठाऊं तू

गुरमुख मुख तो बंद ना पाए, शब्द विचार छुट्टे हर नाई, तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, सांझ बिहाग तक आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास, नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहस्य पूरे हर लोग, मन तन देले सहज सुभाए, नानक तिनके लागो पाए, गौड़ी महला पहला, काम क्रोध

कुंडा पड़वाऊ जेवा इंद्री एक सुवाऊ दिष्ट वकारी नाही पहु पाऊ आप मारे ता पाए नाऊ शब्द मरे फिर मरन ना हुए बिन मुए क्यों पूरा हुए परपंच व्याप रहया मन दोए।

नानक दर घर एकंकार, गौड़ी महला पहला, उल्टियो कमल ब्रह्म विचार, अमृत धार गगन दस द्वार, रे पवन बेदिया आप मरार, रे मन मेरे भरम ना कीजै, मन माने अमृत रस पीजै, रहाउ जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर पई घर घर ते जानिया, जत सत तीरथ मज्जन नाम।

थाऊ। नानक गुरमत सहज समाऊ। गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरण दिखाई। मरन रहन रस अंतर पाई। गर्भ निवार गगन पुर पाई। मरन लखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ। सतगुर मिले तदुबदा भागे। कमल बगास मन हर प्रभ लागे। जीवत मरे महारस आगे। सतगुर मिले सच संयम सूचा। गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा। कर्म मिले जम

गुरबचनी सत शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांधे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले ब्रह्म दूरे, गौड़ी महला पहला, जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथ है आकार, तीन अवस्था कह बखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाऊ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जाके हृदय बसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माही निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहु संसारु, लाभ लोभ मुच कूड़ कमावे, बहुत उठावे भारू, तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों धारू परिचारु, सुन सुन सिख हमारी, सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ न आवे वारी रहाउ, हौ तुदे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करह पराई,

रहिए छुट्टड़ हो यह नारी तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जा किस लिया ता मन भला पाया हलक ना सोभा पलक ना टोई

भोग तिसै का पाना रहाऊ, साहु हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके बनजारी, जियो पिंड सब रास तिसै की, मारे आपे जीवाले, गौड़ी चेती महला पहला, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना, मार है लूट है नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना।

नित कामण अवर लुटेन सो पंच जना ताई मडोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए सी पंच जना कामण लोड़े सोयना रूपा मित्र लोड़ेन सो खादाता नानक पा

लभ लोभ की ताविसता, जपस निरंजन रचस मना, काहे बोलह जोगी कपट कना रहाउ, काया कमली हंस एयाणा, मेरी मेरी करत बिहानीता, प्रणवत नानक नांगी दाजै, फिर पाछै पछतानीता, गौड़ी चेती महला पहला, औखद मंत्र मूल मन एकै, जे कर दृढ़ चित की जैरे, जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जैरे, मन एको साहिब पाई रे, तेरे तीन गुणा संसार समाव है, अलख न लखना जाई रे रहाउ, सक्कर खंड माया तन मीठी, हम तो पांड उचाई रे, रात अनेरी सूजस नाही, लाज टूकस मूसा पाई रे।

तिनकी पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किश पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आई अगन बिंब जल पीतर निप।

केते पशु उपाय, केते नाग कुली मह आई, केते पंख उड़ाई, हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगों देख पिछों देख, तुझते कहां छुपावे। तट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी टोलन लागा, घट ही मह वणजारा। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करहु किस मेहर उपावहु। डुबदे पत्थर तारी जिया।

धन धरनी धरे अनत ना चाहया जाए अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ हो।

गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी हुआ बन बसा कंद मूल चुन खाऊं गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हों जाऊं जियो मैं बनजार नाम की तेरा नाम बखर वापार जी रहाऊ कोकिल हुआ अम बसा सहज शब्द विचार सहज सुपाए मेरा सहु मिले दर्श

पसार मेरा सहु वस हौ मिलोंगी बाहां पसार नागन होआ तर वसा शब्द वसै पहु जाए नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिए करते का हुए विचार तित कर गाव हो सोहिला सिवर हो सिरजनहार तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला हौ वारी जाऊं जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालियन देखे गा देवनहार तेरे दान कीमत ना पवे तिस दाते कवन समार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होवे साहिब स्यो मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन राग गौड़ी गवार री महला तीजा चौपदी।

ले शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा चै सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

आलाय बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावै दुखिया चलिया रोए रसना हर रस चाखिया सहज सुपाय गुर कृपा ते सच समाय साचे राती गुर शब्द विचार अमृत पीवै निर्मल धार नाम समावै जो भांडा होए ऊंडै भांडै टिकै ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास गौरी गुआरी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहे जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाओ। एक गाव है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जीवालन हारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हौ मैं विच सब जग बौराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवे आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन वेहाना हिरदय राम रमहु मेरे भाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ। गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए

गहीर गौड़ी ग्वारी महला तीजा सो क्यों विसरह जिसके जी पराना सो क्यों विसरह सब माही समाना जित सेवे दरगाह पत परवाना।

फल्ला तीजा एक सते सब रूप है रंगा पौन पानी बैसंतर सब सहलंगा पिन पिन वेखै हर प्रभ रंगा एक अचरज एको है सोई गुरमुख विचारे बिरला कोई रहाउ सहज पवै प्रभ सब नी थाई कहां गुप्त प्रगट

ते बूझै जन कोई रहाओ। असंत अनारी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। विरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उदारा। इस काल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कै कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई, गौड़ी महला तीजा गुवारेरी। सच्चा अमर सच्चा पातशाह।

राम जप हो पवजल उत्तर हो पार रहाव परमे आवे परमे जाय एहो जग जन्मया दूजे पाय मन मुख ना चेतै आवे जाय आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया किरपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निध पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

नाम नित हर रस भोग गुरमुख प्राणी नाम हर त्याय जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ ज्ञान ध्यान।

बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधियो माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है क्या धरती मध्य पानी नाही जैसे धरती मध्य पानी परगासिया बिन पगा वरसत फराही बाबा तू ऐसे परम चुकाही।

तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही। जाका कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द।

महला तीजा सब जग काल बस है बांदा दूजे पाई हमें कर्म कमावंदी मन मुख मिले सुजाई मेरे मन गुर चरणी चित लाए गुरमुख नाम निदान लै दरगाह लै छडाई रहाओ लख चौरासी भरम दे मन हठ आवे जाई गुर का शब्द ना चीन्यो फिर जो नी पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आई अन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाय मन शब्द मरे प्रतीत होए हम मैं तजे विकार जन नानक कर्मी पाईन हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागण महला तीजा पेयड़ दिन चार है हर हर लिख पाया शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया देव कड़े गुण संभले सोहरे वास पाया गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया ससुरह पेय पिर वसे कहो कित बिद पाइय आप निरंजन अलख है आपे मेलाइय रहाओ आपे ही प्रभ देह मत हर नाम ते आइय वडभागी सतगुर मिले मुख अमृत पाइय हमै दुबदा बिर सजाए सहजे सुख समाइय सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाइय मन मुख गर्भ ना पायो अज्ञान ज्ञानी सतगुर सेवा ना करह फिर पछताणी गर्भ जूनी वास पाए दे गर्भे गल जानी मेरे करते एवं पावदा मन मुख परमाणी मेरे हर प्रभ लेख लखाया तुर मस्तक पूरा हर हर नाम ते आया भेटिया गुर सूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधप बीरा हर हर बख्श मलाए प्रभु जन नानक कीरा गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बीचारा मत मलीन प्रगट पई जप नाम मरारा शिव सकत मटाईया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईया संत जन हो जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मेले हो हर रस पीवा रहाओ हौ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर राय है हम अवगण यारे पापी पाथर डूब दे गुरमत हर तारी तू गुण दाता निर्मला हम अवगण यारी हर शरणागत राख लेहु मूड मुग्ध निस्तारी सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया कर सोहिला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे धूड़ तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी गुआरी महला चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भज मन मेरे तर भौजल तू तारी रहाओ सन्यासी बेपूत लाए दे सवारी पर त्रय त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी।

चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की पाज मिल साधु संगत जन की तर पौ जल कथ कथा सुन हर की गोविंद सत संगत में लाई हर रस रसना राम गुण गाई रहाउ जो जन प्याव है हर हर नामा तिन दासन दास करहु हम रामा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रेन वड भागी पावे।

जहां हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाटे गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरी महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होवे अन्न खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारी सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसै देखे माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी गुआर री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी गुरसिख हर बोलो हो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलया तब मन वास आया तावत पंच रहे हर त्याया अन दिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई तिन कूड़ ते आगे हर लिब लाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी गवार री महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहे बनवारी हर आपे तप तापे लाए तारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत तुन आपे हर आपे वेखै विगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत धारा हर अमृत आप पिया मनहारा।

जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा वड्डा हुए तन खाट दे कर भोग बलासा क्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझे वडैया रहा मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लगह जा हर गुण गावे हर जन परवार सधार है इक्की ही कुली सब जगत छडावे जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार नहाईंदा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या तिस चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी को हर नाम कढाई जन नानक हर का दास है हर की वडियाई गौड़ी ग्वार भी महला चौथा किरसानी किरसान करे लोचे जियो लाए हल जोते उदम करे मेरा पुत धी खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए।

हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता, तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। गौड़ी बैरागन महला चौथा, कंचन नारी मह जियो लुभत है। मोह मीठा माया, कर मंदर घोड़े खुशी, मन अन रस लाया।

हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नाही किस ढंग ना मेरा क्या मुंह लै बोल है गुण विहून ना।

जन नानक हाथ विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हिरदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जानो मास काती कै किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग ना सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावहु जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हौ खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाव कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुन्नी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिये टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िये जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधरे हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हौ गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कह अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुर पूरै सिर वेचियो गुर पै मोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावै मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते जन नानक नाम लए ता जीवै हर जपिए हर कृपाते गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहो कृपा जग जीवन दाते मेरा मन हर से तीराचे सतगुर बचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे
राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जेहे काल कै मुख जगत सब ग्रसिया गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहा जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूड नर काचे तिनको जन्म मरण अत भारी विच विस्ता मर मर पाचे तुम दयाल सरन प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीजे मन निरत करे कर नाचे आपे साहा वड्डे प्रभ स्वामी हम बन जा रे है ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरी जन नानक के साहा प्रभ साचे गौड़ी पूर्वे महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख पंजन एक बिनो सुनो दे कानी जिस ते तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राणी राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूड मुगद अशुद्ध मत होते गुर सतगुर कै बचन हर हम जाने रहाओ जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गाने जिनको गुर सतगुर नहीं पीटिया ते साकत मूड देवानी तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने गौड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी कहो कितै हर पहु नसीऐ हर आपे बख्श लए प्रभ साचा हर आप छुड़ाए छुटिऐ मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटिया रहाव मेरे मन सेव हो सो प्रभ सर्व सुख दाता जित सेवे निज कर वसीय गुरमुख जाए लहो कर अपना कस चंदन हर जस कसीय मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम लैला हर मन हसीय हर हर आप दया कर देवे ताय अमृत हर रस चखिए मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे ते साकत नर जम कुटिए

लेखा छुटिए जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल ना कटिए गौड़ी पूर्वे महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करहो हर दर्श दिखावहो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिल आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अन दिन नाम जपी सुख पाई।

अन दिन अनद पया वडभागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड भागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यो पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाढ़े हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यो हर राख है त्यों ठाढ़े हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाए पूरब लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाए कर साधु अंजलि पुन वड्डाए कर डंडोत पुन वड्डाए रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हम मैं कंडाए ज्यों ज्यों चल है चुभै दुख पावह जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम सुमाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाई।

इस गढ़ में हर राम राय है, किस साधना पावे तीठा, हर दीन दयाल अनुग्रह किया।

मुख मस्तक पाग सुभागी राम गुरमत हर लिव लागी रहाउ। कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागी। हो मन तन देवो काट गुरु कहो मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी। अंधियार है दीप ज्ञान जलाई गुर ज्ञान गुरु लिव लागी। अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ कर वस्त लही मन जागी। साकत बदक माया तारी तिन जम जो हन लागी। हुन सतगुर आग्या सीस ना बेचिया हुए आवह जाहे अभागी। हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगी। जन नानक की लाज पात गुरु है सिर बेचे हो सतगुर आगी। गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत।

गुर कै बचन हर पाया रहाउ, मेरा ही अरे प्रीत राम राय की, गुर मार्ग पंथ बताया, मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगे, जिन विछड़िया हर गल लाया, मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हृदय नाल दिखाया, सहज आनंद भया मन मोरे, गुर आगे आप विचाया, हम अपराध पाप बहु कीने, कर दुष्टि चोर चुराया, अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजे शब्द अनाहद, गुरमत मनुआ गावे, बड़ पागी गुर दर्शन पाया, तन तन गुरु लिव लावे, गुरमुख हर लिव लावे रहाउ, हमरा ठाकुर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावे, हम मल मल तो वह पाव गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे, हृदय गुरमत राम रसायन, जिहवा हर गुण गावे, मन रसक रसक हर रस आगानी, फिर बहोर न भूख लगावे, कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी, बिन कृपा नाम ना पावे, जन नानक को हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे, राह गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा, संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा, वडभागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो, वडभागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना, आवह संत हो मिल नाम जपाहा, विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो, जन नानक प्रेम रतन्ना, गौड़ी माज महला चौथा, आओ सखी गुण कामन करी हा जियो, मिल संत जना रंग मान रलिया जियो, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो, हर तुठै ढुल ढुल मिलिया जी।

प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीउ मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीउ हर नाम मिलिया सोहागनी मेरे गोविंदा मन अन दिन अन दरहस जीउ हर पायड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लैलाहा मन हस जीउ।

इकना फक्का पाया जियो। एक राजे तख्त बह नित सुखिये, इकना भिख मगाया जियो। सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा, जन नानक नाम ते आया जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मन माही

हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा सब दालत दुख लह जाही दियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो हूं धन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वादाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हौ तुद विटण हो सदवारी जियो मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुरु।

हरे आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगते उपाएदा मेरे गोविंदा हरे आप खेलै बहुरंगी जियो एक ना भोग पगाएदा मेरे गोविंदा एक नगन फिर है नंग

हर कथा मंग है हर चंगी दियो, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा। हर भगता लोच मन पूरी जियो, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा। राव रहया नहीं दूरी जियो, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा। हर आप रहया परपूरी जियो, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा। हर वेखै आप हदूरी जियो, हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा। हर आप बजाए त्यों वाजै जियो, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुर शब्दी हर प्रभ गाजै जियो, आपे सरन पुआईदा मेरे गोविंदा। हर भगत जना राख लाजै जियो, वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा। जन नानक नाम सिद्ध का जय जियो, गौड़ी माज महला चौथा। मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो, मेरा नाम सखा हर पाई जियो। गुण गावो संत जियो, मेरे हर प्रभ केरे जियो। जप गुरमुख नाम जियो, भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो, प्राण हर मेरे जियो। फिर बहुड़ना

मन लगा पाव जियो, गुर शब्दी पाई हर प्रीतम राव जियो, बड़ भागी जप नाउ जियो, मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रभ पासा जियो, सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो, जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जियो, मन हर रंग रतड़ा, हर रस सदा

सुपने पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक हूं मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवा क्यों भ्रमिए भ्रम किसका होई जा जल थल महियल रवे आसोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मनमुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्स मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी गुआर री महला पंजवा कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कोरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म प्रापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश होआ सो तुझ ते होग अवरना दूजा करने जोग ता मिलिए जानह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाय गौड़ी गुआर री मोहल्ला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पाव है मिटे जम त्रास नित गाव है हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर तार शीघ्र कार्य लिहो सवार रहाओ अपने प्रभ स्यों हो सावधान ता तू दरगाह पावह मान उगत सियाणप सगली त्याग संत जना की चरणी लाग सर्ब जी है जा कै हाथ कदे ना विछड़े सब कै साथ अपाव छोड़ गहो तिसकी ओट निमक माही होवै तेरी छोट सदा निकट कर तिसनो जान प्रभ की आज्ञा सत कर मान गुर कै बचन मटाव हो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआर री महला पंजवा गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम पासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत करमान रहाओ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कट्टे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु ना जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रकट संसार गुर कै बचन नाया वैहार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआर री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिले अपना खसम त्याओ रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

न सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किश नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी ग्वारी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पौ सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखनहार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

हर कीर्तन मनसी तल पहे जन्म जन्म के किल विख गए सर्व निदान पेखे मन माए अब ढूंढन काहे को जाए प्रभ अपने जब पहे दयाल पूर्ण होई सेवक काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुर पूरै सब परम चकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी गुआर दी महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बांध लख खरे।

रहाउ। हस पवन हस्त असवारी, चोआ चंदन सेज सुंदर नारी। नट नाटक आखारे गाया, तामह मन संतोख न पाया। तखत सभा मंडन दोलीचे, सगल मेवे सुंदर बागीचे। अखेर बिरत राजन की लीला, मन ना सुहिला परपंच हीला। कर कृपा संतन सच कहया, सर्व सुख एहो आनंद लहया। साध संग हर कीर्तन गाईऐ, कहो नानक वड भागी पाईऐ। जा कै हर तन सोई सुहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला। रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवां।

गाय। कवन सो मत जित तरे एह माए रहाउ, जो पालाई सो बुरा जाने, साच कह सो बिखे सुमाने। जाने नाही जीत अरहार, इहो अलेवा साकत संसार। जो हलाहल सो पीवे बवरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग कह नाही नेर, लख चौरासी प्रमता पेर। एक जाल फहाए पंखी, रस रस भोग करह बहुरंगी। कहो नानक जिस पये कृपाल, गुरपुर ताके काटे जाल। गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, तौ कृपा ते मार्ग पाई है। प्रभ कृपा ते नाम ते आई है, प्रभ कृपा ते बंधन छुटै। तौ कृपा ते हम मैं टुटै, तुम लाभ हो तौ लाग है सेव। हम ते कछु ना हो वै देव रहाउ, तुद पावै ता गावा बाणी। तुद पावै ता सच बखाणी, तुद पावै ता सत गुरमया। सर्ब सुखा प्रभ तेरी दया, जो तुद पावै सो निर्मल कर्मा। जो तुद पावै सो सच धर्मा, सर्ब निदान गुण तुम ही पास। तू साहिब सेवक अरदास, मन तन निर्मल हो।

गुण गाओ। निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन ना सुनिय कतु जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए। आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद। इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली। बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े। आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार। इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह। कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी। अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय। कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै। कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै। कमन सो बिद जित पीतर।

जाके कोट बनजारी, तमन सो दाता ले संचारी, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवां गवारी, रैन दिन सरह इक रंगा, प्रभ को जान है सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन, हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे, रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है।

ते मुक्ते सदा अलिपत जोग अरजुगते दिस है सब मह सब ते रहते पार ब्रह्म का उय ध्यान धरते संतन की महिमा कमन बखानो अगाध बोध किस मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय तूर संतन की नानक दी जय गौड़ी गुआरी महला पंजवा तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत तू मेरी पत तू है मेरा गहना तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

बसना, निरपो नाम जपूं तेरा रसना। तू मेरी नावनिद तू पंडार, रंग रसा तू मन है आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया। सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरी महला पंजवा, व्यापत हरक सोग विस्थार। व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निरधन पेख सोभा। मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी। संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाऊ व्यापत हम बुद्ध का माता। व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता। व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अर रंगा। व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल शिंगार। पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हों फासा। व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, चार व्यवहार व्यापत एह जात। सब किश व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राए। तां को कहां व्यापै माई, कहो नानक जिन तूर संत पाई। तां कै निकट न आवै माई, गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

की खबर ना जाती मुसनहार पंच बटवारी सुने नगर परे ठगहारी हुन तेरा कह बाप ना माई हुन तेरा कह मीत ना पाई दर्ब सियाणप ना होए रहते साध संग ओए दुष्ट वस होते।

नाम पार ब्रह्म स्यो लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपूरह मेटिया अंधियारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जाके कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापे अमृत नाम हृदय हर जापे पार ब्रह्म परमेश्वर क्या यह।

पाल अगमय गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्व निदान प्रभु।

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जाके है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाय बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्श न मेटे कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन।

पुरख जपै भगवान। आठ पहर हर हर गुण गाऊं, कहो नानक कहो तिस बल जाऊं। राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, चौपदे दुपदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना, जो तज छोड़न तिस स्यों मन रचना। कहो गसाई मिली ऐ के, जो बिबरजत तिस स्यों ने रहाओ। झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना।

नामोल परे पंडार अखूट अतोल खाव है खर्च है रल मिल पाई टूट न आवे वद दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लियार लाए गौड़ी महला पंजवा डर डर मरते जब जानिए दूर डर चूका देखिया भरपूर सतगुर अपने कहो बलिहार छोड़ न जाई सर पर तारे रहाव दुख रोग सोग बिसरै जब नाम सदा आनंद जा हर गुण गाम बुरा भला कोई ना कही जै छोड़ मान हर चरण गही जै कहो नानक गुरमंत्र चितार सुख पावे साचे दरबार गौड़ी महला पंजवा जांका मीत साजन है समिया तिस जन कहो कहो का की कमिया जां की प्रीत गोबिंद स्यो लागी दुख दर्द भ्रम ता का भागी रहाव जां को रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जा का कहे दरगाह चले सो किसको नदर ले आवे तले जां का सब किस ता का होए नानक ता को सदा सुख होए गौड़ी महला पंजवा जां कै दुख सुख सम कर जापै ता को काड़ा कहां बियापै सहज आनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय रहाव जां कै अचिंत वसै मन आए ता को चिंता कतहु नाहि जां कै बिन सियो मन ते परमा ता कै कछु नाही डर जमा जां कै हृदय दियो गुरनामा कहो नानक ता कै सगल निधाना गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन महथाना गुर प्रसाद किन बिरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसह प्राप्त तिस लै पुंचा रहाव अनहत बाणी थान निराला ता की धुन मोहे गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कार गुरु नानक को दिया गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा अरादो कवन जोग काया ले साधो कवन गुण जो तुझ लै गावो कवन बोल पार ब्रह्म री जावो रहाओ कवन सो पूजा तेरी करो कमन सो बिद जित पव जल तरो कमन तप जित तपिया होए कमन सो नाम हमें मल खोए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल जिस कर कृपा

देव आद पुरख अपरम पर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रव तेरे गौड़ी महला पंजवा जाको तुम पए समरथ अंगा।

सो वड्डा जिन राम निबलाई रहाउ। भूमिया भूम ऊपर नित लुजै, छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक एहो तत बीचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। गौड़ी महला पंजवां, पूरा मार्ग पूरा इशनान, सब किश

हर कै मार्ग पतत पनीतर, पूरी शोभा पूरा लोकीक, करनहार सद वसै हदूरा, कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, संत की धूर मिटे अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट, संत का दर्श पूर्ण इशनान, संत कृपा ते जपिए नाम रहाव, संत कै संग मिटिया अहंकार, दृष्ट आवे सबे कंकार, संत सो प्रसन्न आए वस पंचा, अमृत नाम हृदय ले संचा, कहो नानक जा का पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, हर गुण जपत कमल परगासे, हर सिमरत त्रास सब नासे, सामत पूरी जित हर गुण गावे, बड़े भाग साधु संग पावे रहाव, साध संग पाईए निदनामा, साध संग पूर्ण सब कामा,

साद भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरने आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवा कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग तामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन महलेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलाब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवां जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सहसा दुख व्यापे सिमरत नाम परम पौ भाग।

पहले करत जन सोहै ता कौ माया अग्न ना पोहै। मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजिया ले।

काई, दुख बिन से सुख हर गुण गाई, गुर पूरा पेटिया लिवलाई रहाउ। हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, आनंद भये गुर मिलत कृपाल, कर कृपा।

साध संग मिल पजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा काल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरपो हर त्याया साध संग हर के गुण गाया।

जात पूरै गुड़ काढे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिस भेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा, साध संग ता की सरनी परो, मन तन अपना आगै धरो। अमृत नाम पीवो मेरे भाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। ताज अवमान जन्म मरण निवारो, हर के दास के चरण नमस्कारो। सास सास प्रभ मन है संभाले, सो तन संचो जो चाले नाले। तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग, कहो नानक ता की चरणी लाग। गौड़ी महला पंजवा, सूके हरे किए खिनमाए, अमृत दृष्ट संच जीवाए। काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ। मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा, कर दया सतगुर गुणतासा। दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फुरमाए। इच पुन्नी पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले। गौड़ी महला पंजवा।

सिमरत सिमरत प्रभ का नाम सगल रोग का बिनसे आठाव सहज सुपाए बोले हर वाणी आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी महला पंजवा पले दिनस पले संजोग जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग ओह बेला कहो हौ बल जाऊ जित मेरा मन जपै हर नाऊ रहाऊ सफल मूरत सफल ओह करी जित रसना उचरै हर हरी सफल ओह माथा संत नमस्कारस चरण पनीत चलह हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे।

ब्राह्मण जाना, तिन सुख पाया जो प्रभ पाना, अगन सागर महाव्यापै माया, ते शीतल जिन सतगुर पाया।

तुमरी कृपा ते दरगाह थाओ, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ। तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी सगल कटा के अंत।

हर हर नाम जपहु नित प्राणी, नाम बिहून त्रिग देह बिगानी रहाउ, नाम बिना नाही मुख भाग परत।

तू है मेरा स्वामी, सब किस सुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो सच समाणा, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवा, ताका दर्श पाईऐ वडभागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की तूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाव, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, बिकम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवा, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ, दलब देहे होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवां, गुरजी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवै परवान, गुरपार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वड भागी, नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी, गौड़ी महला पंजवां, करै दुख कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बेख मुख अमृत सुनावै, जमपुर बाता चोटा खावै, अनक पड़दे मह कमावै विकार, खिन मह प्रगट होवे संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस किरपाल बिदाता, गौड़ी महला पंजवां, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, संतह संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पहे निहाल, कहो नानक गुर पहे है दयाल, गौड़ी महला पंजवां, सिमरत स्वामी किल विख नासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाव, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई परतीत, निर्मल

आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीव हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़े महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लाग है कौडी बदले रतन त्याग है रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा

प्रभे अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मजन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोट जन्म की मन लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जा कैर दसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरे हरनाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरथा कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे तीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान जा कर दे वसह भगवान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी वडियाई।

ते अंधला पारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तू ही वडियाई माया मगन नरक ले जाई रहा।

निमित्त सदा सदा सिमरो प्रभ स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पहर संगी बटवारी कर कृपा प्रभ लय निवारी ऐसा हर रस रमहु सब।

मुक्त फल पाए। मुक्त सियानप इसके कश नाही, कर कृपा नानक गुण गाही। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड भागी हर कीर्तन गाइए। पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ, हर के चरण हृदय उरतार। भव सागर चढ़ उतरह पार, साधु संग करहो सब कोई। सदा कल्याण फिर दुख ना होए, प्रेम भगत भज गुणी निदान। नानक दरगाह पाइए मान, गौड़ी महला पंजवा। जल थल महियल पूर्ण हर मीत, भ्रम बिन से गाए गुण नीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जां कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल

कर कृपा प्रभ कीनों अपना, नानक जाप जपे हर जपना, गौड़ी महला पंजवां, पौ सरनाई जिन हर जाति, मन तन शीतल चरण हर राति, पै भंजन प्रभ मन ना बसाही, डरपत डरपत जन्म बहुत जाही, रहाउ जां कै हृदय बस्यो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम, जन्म जरा मृत जिसवास, सो समरथ सिमर सास ग्रास, मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक, गौड़ी महला पंजवां, बाहर राख्यो हृदय संभाल,

कर पूजी सौदे को तावै बिन पूंजी नानक राम नाम जप चीत सिमर स्वामी हर सामीत गौड़ी महला पंजवा सा मत निर्मल कहियत तीर राम रसायन पीवत बीर हर के चरण हृदय कर ओट जन्म मरण ते होवत छोट रहाओ सो तन निर्मल जित उपजै न पाप राम रंग निर्मल प्रताप साध संग मिट जात बिकार सब ते ऊज एहो उपकार प्रेम भगत राते गोपाल नानक जाचै सादरवाल गौड़ी महला पंजवा ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी मेल लए पूर्ण वडभागी रहाउ परता पेख बिकसै ज्यों नारी त्यों हर जन जीवै नाम चितारी पूत पेख ज्यों जीवत माता ओत पोत जन हर स्यों राता लोभी आनंद करै पेख तना जन चरण कमल स्यों लागू मना बिसर नहीं एक तिल दातार नानक के प्रभ प्राण आधार गौड़ी महला पंजवा राम रसायन जो जन गीदे चरण कमल प्रेम भगती बीते।

किल विख खोए। सिमरह साधु करह आनंद, मन तन रबिया परमानंद। जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां।

ऐसे उतर सपार साध संग मिल दुए कुल साध राम नाम नानक आराध गौड़ी महला पंजवा गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी पार ब्रह्मसा अग्न मह साड़ी पूरा न्याओ करे करतार अपने दास को रखनहार रहाउ आद जगाद प्रगट प्रताप निंदक मुआ उपज वड ताप तिन मारिया जे रखे न कोई आगे पाचे मंदी सोए अपने दास राखे कंठ लाए शरण नानक हर नाम त्याए गौड़ी महला पंजवा महजर झूठा की तुने आप पापी को लागा संताप जिसह सहाई गोविंद मेरा तिस को जम नहीं आवे नेरा रहाओ साची दरगाह बोले कूड़ सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़ रोग व्यापे कर दे पाप अदली होए बैठा प्रभ आप अपन कमाए आपे बांधे दर्ब गया सब जी कै साथे नानक सरन परे दरबार राखी पैज मेरे करतार गौड़ी महला पंजवा जन की धूर मन मीठ खटानी पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाओ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई साध तूर कर सुध मंजाई अनक जला जे धोवै देही मैल न उतरै सुध न तेही सतगुर भेट्यो सदा कृपाल हर सिमर सिमर काटिया पौ काल मुकत भुगत जुगत हर नाओ प्रेम भगत नानक गुण गाओ गौड़ी महला पंजवा।

प्राणी। कहो नानक जिस कृपा तार है, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है। गौड़ी महला पंजवां, थिर कर बैसो हर जन प्यारी।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपौ होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले। हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला। हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई। पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता। हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता। हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस। हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अन दिन जागे। हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै। हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए। कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही। गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे। मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद। रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कारे आए। पेटत साध संग गई बलाए रहाव। नेतर पनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीने आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए। आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए। जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान। लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम। सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु सरन दयाल। रहाव बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिंह मन माने। अगाध बोध हरे अग्नि अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे। नानक कहो प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया। गुर गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा। रहाओ अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम। दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए। कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई। गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाई। नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए। कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव। अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा। कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते। कहन न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम को बल पूरन पाई, ताते बिरता ना व्यापै काई। रहाओ जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई। गौड़ी महला पंजवा, पूज बल बीर ब्रह्म सुख सागर।
गर्त परत गह लेहो अंगोरिया रहाओ। श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगोरिया। दीना नाथ अनाथ करना में, साजन मीत पिता महतरिया। चरण कमल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागन महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दई गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ। तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुख दातिया निमख निमख बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्त हो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे सम्मला कवन विधि विचार। सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे। सो प्रसन्न भये केसवा सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंध पो तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार। गौड़ी बैरागण रोहोए के संत के घर महला पंजवां।

हाल। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से बड़ भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिस है प्रापत सो हर गुण गाहै। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

रास गौड़ी महला पंजवा हर पीखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवो दिन रैनी है कोई संत मलावे नेरा रहाओ सेवा करो दास दासन की अनक पांत तिस करो निहुरा तुला तार तुले सुख सगले बिन हर दर्स सबो ही थोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बोहोरा आनंद सुख पेटत हर नानक जन्म किरतार्थ सफल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मुहे मार्ग दे बताई रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत इकत ग्रह बस्ते मिल बात ना करते पाई एक बस्त बिन पंच दोहेले ओह बस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रहो तिन दिया ताला कुंजी गुर संपाई अनक अपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठले सतगुर मुझे बतायो रहाओ जत कत देखो तत तत तुम ही

सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निद नाम निदान एक ठाई तौ बाहर कैठे जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्तै तत् मलायो गौड़ी महला पंजवा औद कटै दिन सरै नार।

राखु राखन हारी खेद करह और बहुत संताव है। आयु शरण तुहारी कर कर हारियो अनक बहु भांति छोड़ है कतहु नाही। एक बात सुन ताकि ओटा साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया। जीत लये ओए महा बिखादी सहज सुहेली बाणी। कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अबनासी राया निरपो संग तुम्हारे बस्ते

रहाउ। अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया, बहुर बहुर दुख पाया, तुम्हारी कृपा ते मनुख दे पाई है, देहो दर्श हर राया, सोई हुआ जो तिस पाणा, अवर ना किन्ही कीता, तुमरे पाणे परम मोहे मोहया, जागत नाही सूता, बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी, कृपा निद दयाला, राख ले हो पिता प्रभ मेरे, अनाथ है कर प्रतपाला, जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन, साध संगत कह पाछे, कर कृपा तूर देहो संतन की, सुख नानक एहो बांछे, गौड़ी महला पंजवा, हौं तां कै बलिहारी, जां कै केवल नाम आधारी रहाउ, महिमा तां की कीतक गनिए, जन पार ब्रह्म रंग राते, सुख सहज आनंद तिना संग, उन समसारे अवर ना दाते, जगत उदाहरण से ही आए, जो जन दर्श प्यासा, उनकी शरण पर सो तरिया, संत संग पूर्ण आसा, तां कै चरण परों तां जीवा, जन कै संग निहाला, भगतन की रेन, होए मन मेरा, हो प्रभु कृपाला, राज जोगन अवध जो दीसे, सब किस जोग मह काटिया, नाम निदान सद नव तन निर्मल, एहो नानक हर तन खाटिया, गौड़ी महला पंजवा, जोग जुगत सुन आयो गुरते, मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ, नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया, निमख निमख नमस्कारा, दीखिया गुर की मुंदरा कानी, दृढ़े हो एक निरंकारा, पांच चेले मिल पए इकतरा, एक सकै वस किए, दस बैराग ने आग्या कारी, तब निर्मल जोगी थिए, परम जराए चराई बेपूता, पंथ एक कर पेखिया, सहज सूख सो कीनी भुगता, जो ठाकुर मस्तक लेखिया, जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो, सिंघी अनहत बानी, तत बीचार डंडा कर राखे हो, जुगत नाम मन पानी, ऐसा जोगी वडभागी पेटे, माया के बंधन काटे, सेवा पूज करो तिस मूर्त की, नानक तिस पग चाटे, गौड़ी महला पंजवा, अनूप पदार्थ नाम सुनो, सगल त्याए ले मीता, हर औखद जाको गुरदिया, ताके निर्मल चीता रहाओ, अंधकार मिट्यो ते तन ते, गुर शब्द दीपक परगासा, प्रभु की जाली ताकी काटी, जाको साध संगत विश्वासा, तारी ले पवजल तारु बिखड़ा, बोहित साधु संगा, पूर्ण होई मन की आसा, गुर पेट्यो हर रंगा, नाम खजाना भगती पाया, मन तन तृप्त अगाय, नानक हर जियो तां को देवे, जां को हुक्म मनाए, गौड़ी महला पंजवा, दया मया कर प्राण पत मोरे, मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी, अंध कूप मह हाथ दे राखो, पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ, कर्म करावन सब किश तुम ही, तुम समरथ नाही अनहोरी, तुमरी गातमित तुम ही जानी, से सेवक जिन भाग मथोरी, अपने सेवक संग तुम प्रभराती, ओत पोत भगतन संग जोरी, प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे, जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी, राम संत मह भेद किछ नाही, एक जन कई मह लाख करोरी, जा कहिय प्रगट प्रभ होआ, आनंदन कीर्तन रसन रमोरी, तुम समरथ अपार अति ऊचे, सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी, नानक को प्रभ की जय कृपा, उन संतन कै संग संगोरी, गौड़ी महला पंजवा।
तुम हर से तीर आते संत हो, नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते, ओढ़ पहचाव हुदाते रहाओ। तुमरा मर्म तुमा ही जानिया, तुम पूर्ण पुरख बधाते, राखो सरन अनाथ दीन कहो, करहो हमारी गाते। तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे, तुम जानो अपनी पांते, कर कृपा जिस राखो संगे, ते पार पुराते। ईत ऊत प्रभ तुम समरथा, सब किस तुम रह हाथे, ऐसा निदान देहो मोको, हर जन चले हमारे साथे। निर्गुण यारे कौ गुण की जय, हर नाम मेरा मन जापे, संत प्रसाद नानक हर पेटे, मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवा, सहज समायो देव, मोको सतगुर भये दयाल देव रहाओ। काट जेवरे कियो दासरु, संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी, मोको अचरज गुरह दिखायो। पयो प्रगास सर्व उजियारा, गुर ज्ञान मनह प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्तया, अन पहै ठहरायो। मान आग्या सर्व सुख पाए, दुखा ठाउ गवायो, जो सो प्रसन्न पये प्रभ ठाकुर, सब आनंद रूप दिखायो। ना किस आवत ना किस जावत, सब खेल कियो हर रायो। कहो नानक अगम अगम है ठाकुर, भगत टेक हर नायो। गौड़ी महला पंजवा, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, मन ता कियो टगहि जैरे, जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर, ताको नाम जपी जैरे रहाओ। मन की मत त्याग हो हर जन, हुक्म बूझ सुख पाई रे, जो प्रभ करे सोई पल मानो, सुख दुख योही त्याई रे। कोट पतत उधारी खिन में, करते बार ना लागे रे, दीन दर्द दुख भंजन स्वामी, जिस पावे तिस

जिस करते पूर रहे हो रतनागर रे जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुखदाता सगल कटा प्रित पारी रहाओ महाकष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरणी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखे पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन में जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहुलोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूड नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नु सागर लहर संसार संसार गुरबोहित पार ग्राम नु रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है हम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाव कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही तेक राज जोगन प्रभ तू तली तू निर्गुण तू सरगुणी इहां उहां तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत पने सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिर है गोविंद लोक नहीं जन्म मरह बल बुद्ध स्यान पहो मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाइय नीत नीत हर सेवी है
सास सास हर त्याई रहाओ, संत संग हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै, संत प्रसाद हर जापी है, सो जन दुख ना व्यापी है, जां को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अग्नते, नानक को प्रभ मया कर, मेरा मन तन वासै नाम हर, गौड़ी महला पंजवां, रसना जपिए एक नाम, इहां सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम रहाओ, कटिए तेरा अंगरोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर रस जिन जन चाखिया, तां की तृष्णा लाथिया, हर विश्राम निध पाया, सो बहुर न कत ही ताया, हर हर नाम जां को गुर दिया, नानक तां का पहो गया, गौड़ी महला पंजवा, जां को बिसरे राम नाम, ताहू को पीर, साध संगत मिल हर रवह से गुणी गहीर रहाव, जां को गुरमुख हृदय बुद्ध, तां कै कर तल नव निध सिद्ध, जो जान है हर प्रभ तनी, किस नाही तां कै कमी, करने हार पछानिया, सर्ब सुख रंग माणिया, हर तन जां कै ग्रह वसै, कहो नानक तिन संग दुख नसै, गौड़ी महला पंजवां, गर्भ बड़ो मूल इतनो, रहन नहीं गहो कितनो रहाओ, बेबरजत बेद संतना, वाहू स्यों रे हितनो, हार जुआर जुआ बिदे, इंद्री वस लै जितनो, हरन परन संपूर्णा, चरण कमल रंग रितनो, नानक उदरे साध संग, किरपा निद मैं जितनो, गौड़ी महला पंजवां, मोहे दासरो ठाकर को, तान प्रभ का खाना रहाओ, ऐसो है रे खसम हमारा, खिन मह साज स्वार नहारा, काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा, सरन परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन धीरा, एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा, गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हूं मैं तोरै, इस मीठी ते इहो मन हो रै रहाओ, अज्ञानी मनुख भया, जो नाही सो लोरै, रैण अंधारी कारिया, कमन जुगत जित पूरै, प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरै, कहो नानक कृपा पही, साध संगत निद मोरै, गौड़ी महला पंजवां, चिंता मन करना मई रहाओ, दीन दयाला पार ब्रह्म, जां कै सिमरन सुख पई, अकाल पुरख अगाध बोध, सुंत जसो कोट अग खई, किरपा निद प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लई, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां, मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए, जां दिन बिसरै प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाय रहाओ, एक रैन के पहुन तुम आए, बहु जुग आस बंधाए, ग्रह मंदर संपै जो दीसै, ज्यों तरवर की छाए, तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए, देवनहारा बिसरियो ठाकुर, खिन मह होत पराए, पहरे बागा कर इशनाना, चोआ चंदन लाए, निरपहो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यों हस्ती नवाए, जो हुए कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए, मुक्त भया बंधन गुरु खोले, जन नानक हर गुण गाए, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए, रत्न जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बल हरिए रहाओ, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइए, जो हुए दयाल सतगुरे अपना, तां एह मत बुद्ध पाइए, मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूटे है,
सर्व सुखा सुख पाईए। सेव स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आईए। नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारे चाले। कर सेवा सतगुर अपने की गुर ते पाईए पाल। गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी बिन से सर्व अंदेसा। नानक सुख पाया हर कीर्तन मिटियो सगल कलेशा। राग गौड़ी महला पंजवां।

करो रे मन ना हो रे परे परे ही को लुजी हे सुंदर नारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजी हे अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजी हे जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजी हे गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हर्ख सोग मान मृत दुख सुख, चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस

तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए जो लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान भरे पोट डार गुरु पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्यागियो री त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आगियो रहाओ मान अभमान दो समाने मस्तक डार गुर पागियो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लागियो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टागियो निरपौ भये संत भ्रम डारियो पूर्ण सर्वागियो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो न लागियो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जागियो जन नानक ओड़ तुहारी परियो आयो सरनागियो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लागियो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतल मन सीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख तृष्ण सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूझत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूझत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इहो मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इहो मेरा परम मोह कस सूजस नाही एह पैखर पए पैरा तब एहो कहा कमावन परया जब एहो कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन एहो रचन रचाया कहो नानक करनहार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संयम मह रहता इनका आड़ ना पाया आगे चलन और है भाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता।

वण तेन त्रि भवन सुख परमानंदा जीओ सेज सुहावी एहो मन बिकसंदा जीओ पेख दर्शन एहो सुख लहिया जीओ चरण पखार करी नित सेवा जी।

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन

ज्ञान दयो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुटे सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा रहा। राम गोबिंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र। सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाए। जिस लड़ लगे जीवी है भवजल पई पार, मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास। गौड़ी बाज महल।

सब फिक्किया तन मन फिक्का होय। बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय। अंचल गह कह साधका तरना इहो संसार। पार ब्रह्म आराधी है उदरै सब परवार। साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे। औगण सब मटाए कह पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर हर के

कार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नौवा साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहन सपागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जान और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता तिन जग तत पछाना पुस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाना जन नानक एहो खेल कथन है किन्हू गुरमुख जाना गौड़ी महला नौवा साधु रचना राम बनाई एक बिनसै एक अस्थर मान अचरज लखियो ना जाई रहा काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा करमा न्यू ज्यो सुपना रह नाई जो दिसै सो सगल बनासै ज्यो बादर की शाई जन नानक जग

को भजन राम को पावे गौड़ी महला नौवा। साधु इहो मन गहियो ना जाई चंचल तृष्णा संग बस्त है याते थिर ना रहाई रहाओ कठिन क्रोध घट ही के भीतर जेहे सुध सब बिसराई।

तौ सब बिद बन आई गौड़ी महला नौवा। साधु गोविंद के गुण गावो, मानस जन्म अमूलक पायो, बिरथा काहे गवावो रहाओ। पतत पनीत दीन बंद हर, सरन ताहे तुम आवो। गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत, तुम काहे बिसरावो। ताज अवमान मोह माया पुन, भजन राम चित लावो। नानक कहत मुक्त पंत एहो, गुरमुख हुए तुम पावो। गौड़ी महला नौवा। को माई भूल्यो मन समझावै, वेद पुराण साध मग सुन कर। निमख ना हर गुण गावै रहाओ, दुर्लभ देह पाए मानस की। बिरथा जन्म सरावै, माया मोह महा संकट बन। तास्यो रुच उपजावै, अंतर बाहर सदा संग प्रभ। तास्यो नेहो ना लावै, नानक मुक्त ताहे तुम मानो हो। जेह कट राम सुमावै, गौड़ी महला नौ। साधो राम सरन बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को एह गुण। सिमरे हर को नामा रहाओ, लोभ मोह माया ममता फुन। औ बिखियन की सेवा, हरख सोग परसै जे नाहिन। सो मूरत है देवा, सुर्ग नरक अमृत बिख ए सा।

प्राणी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यू हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पार रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मो धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावै कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निद सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकार।

ता हुक्म अपारा जात रहे पथ के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रातो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह परम पुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहज समाना गौड़ी गुआर री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुरे अंकस सच शब्द निशान राज द्वार है सोभ सो मान चतराई न चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर्म है अमृत तस कर ले नन्ना कार न कोई करे राखे आप बड़ियाई दे नील अनिल अग्न एक ठाई जल निवरी गुरबूज बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा मैं आखो कैसा सागर डूंघर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन न डरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहया तिन कहन बखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख बीचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रहे समाई निज कर व्याप रहे निज ठाई पुस्तक करह केते मन प्रीत तन मन सूचै साच सोचीत नानक हर पज नीता नीत गौड़ी गुआर री महला पहला ना मन मरै न कार्ज होय मन वस दूता दुरमत दोए।

0: जहां।
1: मन भूलो बहु चित विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम गुरु दूर है ना ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन।

ता मेल मलाई गुण संग्रह औगण शब्द जलाई गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूड माया चेतवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस मन चंचल धावत फुन धावे साचे सूचे मैल ना भावे नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वार री महला पहला हौ मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते भावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाओ अदिष्ट दिसै ता कहया जाए बिन देखे कहना बिथा जाए गुरमुख दिसै सहज सुभाए सेवा सुरत एक लिवलाए सुख मांगत दुख आगल होए सगल विकारी हार परोए एक बिना झूठे मुक्त ना होए कर कर करता देखै सोए तृष्णा अगन शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुभाए गुरमति नाम हृदय वसाए साची बाणी हर गुण गाए तन मह साचो गुरमुख पाओ नाम बिना नाही निज ठाओ प्रेम परायण प्रीतम राव नदर करे ता बूझै नाम माया मोह सर्ब जंजाला मनमुख को चील कुशत बिकराला सतगुर सेवे चूकै जंजाला अमृत नाम सदा सुख नाला गुरमुख बूझै एक लिवलाए निज करवासै साच समाए जम्मण मरना ठाक रहाए पूरे गुर ते एह मत पाए कथनी कथों ना आवै और गुर पुछ देखिया नाही दर होर दुख सुख भाणे तिसै रजाए नानक नीच कह लिवलाए गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चितवास काम क्रोध अहंकार बनास दूजा

तरन गगन नह देखो दोए, नारी पुरख सबाई लोए। रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला। कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुर मोह को एक बुझाया। एक निरंजन गुरमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता। एको हुक्म वरतै सब लोई, एक सते सब उपत होई। राहा दोवै खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पछान। सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सलाही। गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा। मुक्त भेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत बिचारे। पंच मार साच उर धारे रहाओ, जिसके अंतर साच वसावे। जोग जुगत की कीमत पावे, रव सस एको ग्रह उद्याने। करनी कीर्त कर्म समाने, एक शब्द एक भिख्या मांगे। ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, तै रच रह ना बाहर जाए। कीमत कौन रह लिव लाए, आपे मेले परम चुकाए। गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार। हम मैं मारे करनी सार, जप तप संयम पाठ पुराण। कहो नानक अपरम परमान। गौड़ी महला पहला, खिमा गही व्रतशील संतोखं। रोग ना व्यापै ना जम दुखं।

0: जोगी निरंजन त्यावे अनदिन जागे सच लिवलावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप करे पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पैर अच रह सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नरमिह केवल निरपो नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप छाने
1: साचे शब्द दर निसाने
0: शब्द मरे तिस निज कर वासा आवे न जावे चूके आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसे सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिले उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहा नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारी

ब्राह्मण हितकारी, क्रोध बनासै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम वसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर को देई, काम दाम चित पर वस सेई, बिन पेर त्रिपत ना कबहू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन खाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरै न लेखै पावै, वेस करै बहु भस्म लगावै, नाम विसार बहुर पछतावै, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम बसार सह जम दुख रहाओ, चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम बसारे है सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तखत सलाम, अदकी कृष्णा व्यापै काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावह नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, किसको वाह वाह जे वाट दिखावे, किसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, किसको वाह वाह जे मेल मलावे, वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाणे दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला, हौ मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हौ हौ करत नहीं सच पाईए, हौ मैं जाए परम पद पाईए रहाओ, हौ मैं कर राजे बहुतावह, हौ मैं खपह जन्म मर आवह, हौ मैं निवरै गुर शब्द विचारै, चंचल मत त्यागै पंच संघारै, अंतर साच सहज घर आवह, राजन जान परम गत पावह, सच करनी गुर परम चकावै, निरपो कै घर ताड़ी लावे, हौ हौ कर मरना क्या पावे, पूरा गुर भेटे सो झगर चकावे, जेती है तेती केहो नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही, हौ मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया, ब्रह्म कमल पयाल ना पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पलाया, जो उपजै सो का

जो है मनमुख को आवत जावत दुख मोह है रहाओ। अपयो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बहस सहज कर लही है। हर रस माते यो सुख कही है, गुरमत चाल निश्चल नहीं डोले। गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत् वरोले। सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पियो अंतरगत कीनी। गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार। परमहंस सच जोत अपार, जह देखो तह एकंकार। रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरचरणी। मन ते मन मानिया चूकी अहं भरमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया। हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निश्चल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे परम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई। तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई। गौड़ी महला पहला, राम नाम चित रापै जाका। उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपाग तुम्हारा। जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ। गुरमत राम जपै जन पूरा, तित काट अनहत बाजे तूरा। जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा धार। जिनकै हृदय हर हर सोई, तिनका दर्श परस सुख होई। सर्व जिया मैं एको रवे, मनमुख अहंकारी फिर जूनी भवे। सो बूझै जो सतगुर पाए, हऊ मैं मारे गुर शब्दे पाए। अर्ध उर्द की संद क्यों जाने, गुरमुख संद मिले मन माने। हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ हुए दयाल नानक जन करिए। सोलह अष्टपदियां ग्वारी गौड़ी किया, गौड़ी बैरागण महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ज्यो गाई को गोयली राख है कर सारा। अहनस पालह राख ले आत्म सुख तारा। इत उतराखो दीन दयाला, तो शरणागत नजर निहाला रहा। जह देखो तह राव रहे, रख राखन हारा। तू दाता भुगता तू है, तू प्राण अधारा। किरत पया अद ऊर दी, बिन ज्ञान बिचारा। बिन उपमा जगदीश की, बिन सैना अधियारा। जग बिन सत हम देखिया, लोभे अहंकारा। गुर सेवा प्रभ पाया, सच मुक्त द्वारा। निज कर महल अपार को, अपरंपर सोई। बिन शब्द

वेरी आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरे सहजे पत पाईए अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाईए नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावे नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावे बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्बही है।

अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दीस है, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रीस है। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीने आप को, सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूझी है, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जम्मे वारो वार। सूतक अग्न पौणे पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोई, विण नावे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरे ना आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हृदय उर धारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा। पंडित हर पर तजोह विकारा, गुरमुख भोजन उतरोह पारा। रहाओ गुरमुख विचो होमै जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए। गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो किछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे थौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजियों लाए बह नित ध्याना। जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई।

इहु संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे।

अहंकारी आप ना चीन बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिसते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण भरमे नाही निज घर वासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे।

ना जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिख का माता बिख माही समाई, माया कर मूल जंतर परमाई, हर

साच ना छपै जे को रखै छुपाए, ज्ञानी बूझ सहज सुपाए, गुरमुख साच रहिया लिभ लाए, हमें माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मलाए, सतगुर दाता शब्द सुनाए, धावत राखै ठाक रहाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, नानक गुरमुख बूझै कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अनगिन हिरदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ, हिरदय सूख पया परगास, गुरमुख गावे है सच गुण तास, दासन दास नित होवे दास, ग्रह कटंब मह सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई, जा हिरदय वसिया सच सोई, गुरमुख मन भेदिया अस्थिर होई।

सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसे अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वडभागी हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रविया चरण निवास जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए हृदय साचा नाम वसाए नानक सहजे साच समाए गौड़ी मोहल्ला तीजा मन ही मन सवारिया पै सहज सुपाए शब्द मन रंगिया लिवलाए निज कर वस्या प्रभ की रजाए सतगुर सेवया जाए अभमान गोविंद पाई है गुणी निदान रहाओ मन बैरागी जा शब्द पौ खाए मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहया समाए गुर कृपा ते मिले मलाए हर दासन को दास सुख पाए मेरा हर प्रभ इन बिद पाया जाए हर कृपा ते राम गुण गाए त्रिग बहु जीवन जित हर नाम ना लगे प्यार त्रिग सेज सुखाली कामन मोह गुबार तिन सफल जन्म जिन नाम आधार त्रिग त्रिग ग्रह कटंब जित हर प्रीत ना होए सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए हर नाम बिना मैं अवर ना कोए सतगुर ते हम गत पत पाई हर नाम ते आया दुख सगल मटाई सदा आनंद हर नाम लिव लाई गुर मिले हमको शरीर सुध पई हम मैं तृष्णा सब अग्न बुझई बिनसे क्रोध खिमा गह लई हर आपे कृपा करे नाम देवे गुरमुख रतन को बिरला लेवे नानक गुण गावे हर अलख अपीवे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागुण महला तीजा सतगुर तेजो मोह फेरे तेवे मुख बुरे दिसन अन दिन बद्दे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सत संगत मिलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर भाम दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओह क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय धार नाम मिले है पत पाई है नाम मन्ने है सुख होए सतगुर ते नाम पाई है कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए भ्रम दे ना टकन तरत असमान ना चलई विच विस्ता पए पचन एहो जग परम पलाया मोह ठगौली पाए जिन्ना सतगुर भेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हौ मैं मैल गवाए शब्द रत्ते से निर्मले चलह सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बख्श मलाए जन नानक शरणागती ज्यों भावे तिवें छडाए राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहले एक ओंकार सतगुर प्रसाद करहले मन परदेसिया क्यों मिलिया हर माए गुर भाग पूरे पाया गल मिलिया प्यारा आए मन करहला सतगुर पुर

मन करहला अत निर्मला मल लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय कित ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुरु गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल आप छडाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौनिध नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़गा हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम भवह बाहर पाल गुर पुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरी महला पंजवां अष्टपदिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इहो मन मह करत गुमाना तब इहो बावर फिरत बेगाना जब इहो हुआ सगल कीरीना ता तेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको इहो जान समंदा तब सगले इस मेल है फंदा मेर तेर जब इन्ह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इहो तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इहो होयो जौला पीछे लाग चली उठकौला
कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, कर्म करामन सब किश एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना नेरे सब कै संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवा, गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा, तिसकै हिरदै रविया सोए, मन पन सीतल निश्चल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाउ, जास जपत पहु अपदा जाए, तावत मनुआ आवै ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत एह हो मैं भागै, जास जपत वस आवै पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझै, जास जपत हर दरगाह सिजै, जास जपत कोट मिटह अपराध, जास जपत हर होवै साध, जास जपत मन शीतल होवै, जास जपत मल सगली खोवै, जास जपत रतन हर मिलै, बहुर न छोड़ै हर संग हिलै, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास, जास जपत एह अग्न ना पोहत, जास जपत एहो काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाथा, जास जपत मुश्किल कशु ना बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवां, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ताकै आत्मै हुई प्रगास।

ज्ञान सहज कथा मह आत्म रसिया ता कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे रुण चुनकार सुहाया ता कै तार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास ता कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवा प्रथमे गर्भवास ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दीसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ताका विचार कहो नानक जिस कृपा करे निश्चल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे तिसह मार राज जोग कमावे रहाव जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगाह सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवे गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वड भागा जो इस मारे सो अन दिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको पये कृपाल कृपा निध तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जा की है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यो जुरे ता सबको मीत हर स्यो जुरे ता निश्चल चीत हर स्यो जुरे ना व्यापै काड़ा हर स्यो जुरे ता हुए निस्तारा।

दास नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जा कै सुन नाम, कोट पूजा जा कै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी

काम ना जो है दूत, जाके काम तेरा वड गमर, जाके काम होवे तू अमर, जाके चाकर को नहीं दान, जाके चाकर को नहीं बान, जाके

कह पांत जांकी दृष्ट हुए सदा निहाल मन मेरे कर पांकी काल ना को चतर ना ही को मूड़ा ना को हीन ना ही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस भागा गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीव है साकत नाम बिसारी एक निमख जो सिमरन मह जिया कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाओ बिन सिमरन त्रिग कर्म करास काग बतन बिस्टा महवास बिन सिमरन पय कूकर काम साकत बेसुआ पूत निनाम बिन सिमरन जैसे

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन गुर मोह को दीना जियो, अपना दस राय आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार, काल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहु नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेह।

अरुण करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद ज्यो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख।

सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग। पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खोजत फिरे

पंत डराओ बहुत पैहारिया, मैं तक्की ओट संता लेहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किसे ही नाही हर पूर पंडारिया, चहो दिस जपिय नाओ सूख सुवारिया, मैं आ

बलिहारिया गुर काढ़ियो पुजा पसार मोह कुपारिया मैं जीतियो जन्म अपार बहुर ना हारिया मैं पायो सर्व निदान अकथक थारिया हर दरगाह शोभावंत बहां लुडारिया जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया गुर सेवा भौजन करिया कहो पुकारिया गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ ताज हूं मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किनै गुरमुख लहियो हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहो ते रहियो दुख अंधेरा घर ते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो जिन सेविया सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो महला पंजवां गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए मेरे मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौंकिया गुर चंदन सीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उटायो निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्श हर रायो नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के फूगा इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता सगली अवध बेहानी रहाओ हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझे समानी जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी ज्यों उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी पाई मीत बंदप सके पाछे तिन्हू कौ संपानी जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी दयाल पुरख कृपा।

हर के गुण सारे हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सकै गुर बिन महल न पाई जो गुर कह सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाई हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा धन मिले मलाई जिसनो आप मलाए धन रैन सुहेलड़िए जियो हर सिओ चित लाए सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचो आप गवाए विचो आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समा

कापर तन ना सुहाई। कापर तन सुहावै जां पिर भावै, गुरमती चित लाइय सदा सुहागण जां सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाइय। गुर शब्द मेला तां पिर रावी, लाहा नाम संसारी, नानक कामण नाह प्यारी, जां हर के गुण सारी। सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हमै मारे, इन बिद मिलोह प्यारे, सा धन सुहागण सदा रंग राती, साचै नाम प्यारे। अपने गुर मिल रही है अमृत गही है, दुबदा मार निवारे, नानक कामना हर वर पाया।

कूड़ मुठी कूड़ियारी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जूए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचो होमे मारी। हर का नाम हृदय बसाए, ऐसा करे सिंगारू। नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैणी नींद न आवे जियो, पावे अन्न ना पानी। पानी अन्न ना पावे, मरिए हावे। बिन पिर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बिनंती। जे गुर पावे ज्यों मिले तिवें मिलाईए। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस दे दीजियो। हर कै सहज सुपाई, मन मोहन मोए लिया जियो। दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए। कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारी। रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिए प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम अत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हम मैं मारे, गुरमुख कार्य सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी। किस आगै जाए पुकारे, नानक मनमुख थाओ ना पाए। बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो। फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो। आपे बख्शन हारा, अवगुण बख्शन हारा। कामन कंत प्यारा, कट कट रहे आसमाई। प्रेम प्रीत पाए भगती पाईए, सतगुर बूझ बुझाई। सदा आनंद रहे दिन राती, अन दिन रहे लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो। क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो। शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए। हर आप लंघाए, इन बिद दुत्तर तरिए। गुरमुख भगत प्राप्त होवै, जीवतियां इयों मरिए। जिन मह राम नाम किलविख काटे, पये पवित शरीरा। नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पये मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी, गत नहीं जानी। हम मैं तात संसारी, जो आया सो सब को जासी। उभरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम बखाने। आप तरे कुल तारे, नानक नाम बसे घट अंतर। गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो। बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो। राम नाम वापारा, राम नाम वापारा। अगम अपारा, गुरमति धन पाईए। सेवा सुत भगत एह साची,
ਵਿਚੋ ਆਪ ਗੁਆਈਐ ਹਮ ਮਤ ਹੀਨ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਅੰਧੇ ਸਤ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਹਾਵੇ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਜੀਉ ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਜੀਉ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੱਚੇ ਵਿਟੋ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।

हर पाए, कर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए, गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए, नामो बीजे नामो जम्मे, नामो मन वसाए, नानक सच नाम वडियाई, पूरब लिखिया पाए, हर का नाम मीठा पिरा जियो, जां चाख है चित लाए, रसना हर रस चाख मुइये जियो, अनरस साध गुआए, सदा हर रस पाए जां हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम त्याए सदा सुख पाए, नाम रह लिवलाए, नामे उपजै नामे बिनसै, नामे सच समाए।

कर आवहु नाह प्यारी। हौ मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब दिसा हौ सिर अर्पी तिस मीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेसा। अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया। दिन रहन रलिया करै कामण, मिटे सगल अंदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो, बजी वधाई कर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया। सब मीत बंद पहरखे उपजिया, दूत थाऊं गवाया। अनहत वाजे बजे है घर में है, फिर संग सेज विछाई। बिनवंत नानक सहज रह, हर मिलिया कंत सुखदाई। गौड़ी महला पंजवा। मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला। धर्मशाल अपार दयार ठाकुर, सदा कीर्तन गावे। जह साध संत इकत्तर होवे, तहां तुझे त्यावे। कर दया मया दयाल स्वामी, हो दीन कृपारा। बिनवंत नानक दर्स प्यासे, मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू मान है एक जी अवर सब राली। मान है ता एक अलेख ठाकुर, जिन्ह सब कल धारिया। तुद बचन गुर कै वस किया, आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया, आप सब कल धारिया। बिनवंत नानक पैज राखो, सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावे दर्स ध्याना, मोहन जम नेर ना आवे तुद जपह निधाना। जम काल किनको लगे नाही, जो एक मन त्यावे। मन बचन कर्म जे तुद आराध है, से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते, से देख दर्श सुगियाना। बिनवंत नानक राज निश्चल, पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारिया जहान

ना आया। बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही, सतगुरु पुरख मरारी। बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवां सलोक, पतत असंख पनीत कर, पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को, तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण, गोविंदा हर माधु। त्याए मना मरार मुकंदे, कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन सिरी तहर, चरण कमल अराधिए। जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर, निमक सिमरत साधिए। खल मलै दहता सुध करता, दिन सरैन अरादु। बिनवंत नानक करहु कृपा, गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर, पै पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर, भगत वचल बिरदाया। भगत वचल पुरख पूरन, मन है चिंदिया पाईए। ताम अंध कूप ते उधार है, नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, गुण अनक भगती गाया। बिनवंत नानक करहु कृपा, पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्व कला जिन तारी। करुणा में समरथ स्वामी, कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता, बेअंत अगम अपारू। शरण जोग समरथ मोहन, सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह, जपत नाम मरारी। बिनवंत नानक करहो कृपा, समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी, सब ते ऊच दयाला। बिसंबर देवन को एक है, सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महा दयाल दाना, दया तारी सब किसे। काल कंटक लोभ मोह नासे, जी जा कै प्रभु बसै। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूर्ण काला। बिनवंत नानक इच पुन्नी, जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवां, सुन सखिए मिल उद्यम करेहा। मनाए लह हर कंत, मान त्याग कर भगत ठगौरी। मोह है साधु मंत, सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई। एह रीत भली भगवंत, नानक जरा मरन पै नरक निवार। पनीत करे तिस जंत, सुन सखिए एह भली बिनंती। एहो मतांत पकाइए, सहज सुपाए अपाद रहत हुए। गीत गोविंद गाइए, कल कलेश मिट है भ्रम नास है। मन चिंदिया फल पाइए, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। नानक नाम ते आइए, सखी इश करी नित सुख मनाई। प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागण। पेखो थान सबाए, खोज लहो हर संत जना संग। समरथ पुरख मलाए, नानक तिन मिलिया सुर जन सुख दाता। सेवड भागी माए, सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे। मेरा मन तन हर संग हिलिया, सुन सखिए मेरी नींद पली। मैं आपनड़ा फिर मिलिया, प्रम खोयो शांत सहज स्वामी। प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी। नानक सुहाग ना टलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सुहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत,
गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आपह किया कराया आपह करमै जोग, नानक एको रब रहया दूसर हुआ ना होग पौड़ी। ओं साध सतगुर नमस्कार, आद मद अंत निरंकार, आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन, आपने आप आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो, आपह सूखम आपह असथूला, लखी न जाई नानक लीला, कर कृपा।

एक बखाननो, नानक एक अनेक पौड़ी। ओं गुरमुख कियो अकारा, एक है सूत पुरो मनहारा। पिन पिन त्रै गुण बिस्थार, निर्गुण ते सरगुण दृष्टार। सगल पांत कर करह अपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो। दूहू भांत ते आप नरारा, नानक अंत न पारा वारा। सलोक से सहा भगवंत से, सच संपै हर रास। नानक सच सोच पाई है, तेहे संतन कै पास। पवड़ी ससा सत सत सत सो, सत पुरख ते भिन्न ना को। सो सरन परै जिह पायं, सिमर सिमर गुण गाए सुनायं। संसय परम नहीं कछ व्यापक, प्रगट प्रताप ताहू को जापत। सो साधु एह पहुंचन हारा, नानक ता कै सद बलिहारा। सलोक तन तन कहा पकारते, माया मोह सब कूर। नाम बिहूने नानका, होत जात सब तूर। पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ, तन तेऊ जे रुच या मनुआ। तन नहीं बांच है सुरग ना आच है, अत प्रिय प्रीत साध रज राच है। धंधे कहां व्यापहता हूं, जो एक शाद अन कतै ना जाहू। जा कह ही है दियो प्रभ नाम, नानक साध पूर्ण भगवान। सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान, मन हठ मिलियो ना कोई। कहो नानक कृपा पई, भगत ज्ञानी सोए पौड़ी। गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों, अनक जुगत शास्त्र कर पातों। ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो, कहत सुनत कस जोग ना हो। ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै, उसन सीत समसर सब ताकै। ज्ञानी तत गुरमुख बिचारी, नानक जाको कृपा तारी। सलोक आमने आए सृष्ट मह, बिन बूझे पस ढोर। नानक गुरमुख सो बुझे, जां कै भाग मथोर। पौड़ी या जुग मैं एकै को आया, जन्मत मोहयो मोहनी माया। गर्भ कुंट मह उर्द तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते। उर्ज परे जो छोड़ छडाना, देवनहार मन है बिसराना। तारु कृपा जिसह गुसाई, इत उत नानक तिस बिसरहो नाही। सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म, आग्या पिन्ना कोए। आमन जाना ते मिटै, नानक जिहे मन सोए। पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे, मोह मगन मीठ जोन फासे। इन माया त्रै गुण बस कीने, आपन मोह कटे कट दीने। ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो बिखम एह माया। कर कृपा सतसंग मलाए, नानक तां कै निकट ना माए। सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ, कीने तिन प्रभ आप। असे आपन हों हों करे, नानक बिन हर कहां कमात। पौड़ी ये कह आप करावन हारा, आपै पाप पुन बिस्थारा। या जुग जित जित आपै लायो, सो सो पायो जो आप दुआयो। वाका अंत ना जाने को, जो जो करे सो फुन हो। ये कहते सगला बिस्थारा, नानक आप सवार नहारा। सलोक राच रहे बनता बनोद, कुसुम रंग बिखशोर। नानक ते सरनी परो, बिन सजाए मैं मोर। पौड़ी रे मन बिन हर जह रचो, तह तह बंधन पाहे। जेह बिद कतु ना छूटी है, साकत तेऊ कमाहे। हौ हौ करते कर्म रत,

लवै न को एक है आप अवर न हो होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीत हस्त मह पूर समाने प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर ते जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए जास रसन हर हर जस भनिए आए बस है साधु कै संगे अन बिन नाम त्याव है रंगे आवत सोजन न महराता जा को दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन न आया नानक हर कै दर्श समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा भाव दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समा

या भवजल करना यया जन्म न आवे सो एक नाम ले मन है पुरु यया जन्म न हारी है गुरपुरे की टेक नानक तेहे सुख पाया जान कह हिरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के नीत गुरपुरा उपदेसिया नानक जपी है नीत पौड़ी अन दिन सिमर हो तास को जो अंत सहाई होए एह बिख्या दिन चार छे शाद चल्यो सब कोए काको मात पिता सुत धीआ ग्रह बनता कस संग ना लिया ऐसी संच जो बिनसत नाही पत सेती अपने घर जाही साध संग कल कीर्तन गाया नानक तेते बहुर ना आया सलोक अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कई है नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खात शास्त्र ज्ञाता पूरक कुंभक रेचक करमाता ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी सोम पाक अपरस उदयानी राम नाम संग मन नहीं हेता जो कशकीनो सो अनेता वाते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसह गोपाला सलोक कुंट चार दह दिस ब्रह्मे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कछ दो बारा करने हार न भूलन हारा काहू पंत दिखारे आपे काहू उद्यान भ्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो सलोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कै पाहे जो देना सो दे रहे हो भावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम तन या भगतन की रास हिमा गरीबी अनद सहज जपत रह गुणतास खेलह बिगसह अनद स्यों जा

नदर करी नानक जो प्रभ पाणिया पूरी तिना परी। सलोक गन मिन देखो मने माहि सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटे नानक नाम अरोग पौड़ी। गग्गा गोविंद गुण रवो सास सास जपनीत कहां बसासा देहे का बिलम ना करे हो मीत। नह बारक नह जोबन नह बिरदी कस बंद ओह बेरा नह दूजी है जो आए पर जम फंद। ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं एठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूड़ तहां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते जा को प्रिय है सुहाग। सलोक कोके शास्त्र वेद सब आन ना कथतो कोय आद जुगादी हुण होवत नानक कै सोए पौड़ी। कग्गा कालो मन है एह बिन हर दूसर नाही नह हुआ नह होवना जत कत ओही समाहे। कुलह तो मन जो आवे सरना नाम तत कल मह पुनः चरना काल काल अनक पछतावे बिन हर भगत कहां थित पावे। कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुर जा को दिया। सलोक नान काले सब दिवस सास नह बदन कटन तिल सार जीवन लो रह परम मोह नानक तेहु गुवार पौड़ी। गंगा अंगरासे काल ते जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन्मह मरह आत्म राम ना कीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जिहे आप दुआए। गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जेह जीवत जपया प्रगट पए नानक नह छपया। सलोक चित चितमो चरनार बिंद ऊंद कवल बिग शांत प्रगट पए आपह गोबिंद नानक संत मतांत पौड़ी। चचा चरण कमल गुर लागा तन तन उवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दह दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार बचार बिनस्यो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा। सलोक छाती सीतल मन सुखी

दास्त मारे, दास दासन के पानी हारे, सच्चा शार होत तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता, शाड सियानप बहु चतराई, संतन की मन टेक टकाई, शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई। सलोक जोर जुल्म फूले कनो, साची दे विकार, हम बुद बंधन परे, नानक नाम छुटार पौड़ी। जज्जा जानै हौ कछ हुआ, बांधियो ज्यो नलनी भ्रम सुआ, ज्यो जानै हौ भगत ज्ञानी, आज्ञा ठाकुर तिल नहीं मानी, ज्यो जानै मैं कथनी करता, व्यापारी बसधा ज्यो फिरता, साध संग जे हौ मैं मारी, नानक तां को मिले मरारी। श्लोक चालांगे उठ नाम जप, निसबासुर आराध, कारहा तुझै ना व्यापई, नानक मिटै उपाद पौड़ी। चज्जा चूरन मिटै तुमारो, राम नाम स्यो कर व्यवहारो, चूरत चूरत साकत मुआ, जा कह हृदय होत पाओ बीया, चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दृष्टाई, नानक जाको कृपा गुसाई। श्लोक यतन करो तुम अनक बिद, रहन न पावो मीत, जीवत रहो हर हर भजो हो, नानक नाम प्रीत पवड़ी। जन्या जानो दृढ़ सही, बिनस जात एहेत, गणती गणो ना गण सको, ऊठ सधारे केत, न्यो पेखो सो बिनसतो, कास्यो करिए संग, ज्ञान होया बिद सही चित, झूठो माया रंग। ज्ञान तो सोई संत सोए, भ्रम ते की चत भिन्न, अंधकूप ते तेह कढ़ो, जेह होवो सो परसन। ज्ञान कै हाथ समरथ ते, कारण करनै जोग, नानक ते उस्तत करो, न्याहू कियो संयोग। श्लोक टूटे बंधन जन्म मरन, साध सेव सुख पाए, नानक मनो ना बिसरै, गुण निध गोविंद राय पौड़ी। टहल करहो तौ एक की, जाते बिरथा ना कोए, मन तन मुख ही है बसै, जो चाहो सो होए, टहल मैल तां को मिलै, जां को साध कृपाल, साधु संगत तौ बसै, जो आपन होहे दयाल। तोहे ताहे बहु पवन, बिन नावे सुख नाहे, तलह जाम के दूत तेहे, जो साधु संग समाहे। बार बार जाऊं संत सदके, नानक पाप बनासे कदके। सलोक ठाक ना होती तिन्हो दर, जेह हो वो सो प्रसन्न, जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते तन तन पौड़ी। ठठा मनुआ ठाह नाही, जो सगल त्याग एक लपटाई।

आद संग संबंध पौड़ी टड्डा ढूंढत कह फिरो ढूंढन या मन माहे संग तोहारे प्रभ बसे बन बन कहा फराहे तेरी ताहो साध संग हम बुद्ध बिकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल तेरी जामै जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हौ हौ आवे जाए टहत टहत अब टह परे साध जना सरनाए दुख के फाहे काटिया नानक लिए समाए सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नह छुटह निकट ना जाइयो दूत पौड़ी नाना रण ते सीजी है आत्म जीतै कोए हौ मैं अनस्यो लर मरे सो सो बादू होए मणि मटाए जीवत मरे

टेक आधार रैण दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार रेण सगल या मन कर एऊ कर्म कमाय हुक्मै बूजै सदा सुख नानक लिखिया पाए सलोक तन मन तन अर्पो तिसै प्रभु मलावै मोहे नानक भ्रम पहु काटियै चूकै जम की जोह पौड़ी तत्ता तां स्यों प्रीत कर गुण निध गोबिंद राय फल पावहि मन बांछते तपत तुहारी जाय त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाव गत पावहि मत हुई परगास महली पावहि ठाव ताहू संग ना धन चलै ग्रह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो एह तुहारे काज ताता कछु ना हुई है जो ताप नवारे आप प्रतपालै नानक हमह आपह माई बाप सलोक थाके बहु बिद काल ते कृपत न तृष्णा लाख संच संच साकत मुए नानक माया ना साथ पौड़ी थत्था थिर को नहीं काए पसारु पाम अनक बंच बल छल करहु माया एक अपाव थैली संच हो श्रम करहु थाक परहु गवार मन कै कामना आवई अंते अवसर बार हित पावहु गोबिंद भजो हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहु सद एक स्यों या साचा असनेह कारण करन कराम नु सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो तित तित लग है नानक जंत अनाथ सलोक दासा एक निहारिया सब कछ देवन हार सास सास सिमरत रह नानक दर्श आधार पौड़ी दद्दा दाता एक है सब को देवन हार देंदे तोट ना आवई अगणत भरे भंडार दैन हार सद जीवन हारा मन मूर्ख क्यों ताहे बसारा दोष नहीं काहू को मीता माया मोह बंद प्रभ कीता दर्द निवार है जाके आपे नानक ते ते गुरमुख त्रापे।

पंच ध्रोह मोह मिटनाई जा को राखो आप गुसाई पातशाह सत्तर सिर सो नानक दूसर अवरना को सलोक फाहे काते मिटे गवन फतह पही मन जीत नानक गुर ते थित पाई फिर न मिटे नित नीत पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ देह कल युग मैं पाया फिरया अवसर चरै ना हाथा नाम जप हो तो कटियह फासा फिर आवन जान ना होई एक जप हो जप सोई।

संपै बहु भोग रस नानक साध रुआल पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानत ते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा वीरा आपन बुरा मटावै ताहू बुरा निकट नहीं आवै बांधियो आपन हो बंदा दोष देत आगह को अंधा बात कीत सब रही सियानक जिसै जनाब हो सो जानै नानक सलोक पै पंजन अग दुख नास मनह अराध हरे संत संग जेह रिद बसियो नानक तेना भ्रमे पौड़ी पब्बा परम मटावो अपना या संसार सगल है सुपना परमेश्वर नर देवी देवा परमे सिद्ध साधक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डहकाए दुत्तर महा बिखम एह माए गुरमुख भ्रम पै मोह मटाया नानक तेह परम सुख पाया सलोक माया डोलै बहु विधि।

जो खिन मैं ऊने सुबर पराहू खरा निमा ना होत परानी हन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम ता वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परहो हर राय उकत सियानप सगल त्याग नानक लए समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

सिमरत सदाख्यर कीने राम नाम एक आख्यर किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे ताकि एक दर्श तुहारू नानक उन संग मोहे उधारू।

दासन दत्न प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी।

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात इहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना।

अपमान आप सुकौ जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना एक है सगल सृष्ट सा।

सगल कटाको देव हुदान कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बाणी मह अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी।

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत दूजै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा, कहां बिसन पद गावे गोंग, जतन कै तो पी सुर भंग।

दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत, काल न आवे मूले चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मह सूख कनेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुमरे सूतर धारी।

लपट रहे हो तह अंध अंधार बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुभा।

मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या त्रोहो मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा।

जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के नरारथ धाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तां कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर पेख ना काहू भीन। अवर अपदेश

ते रहत, सब कछ जान आत्म की रहत, जिस पावै तिस लय लड़ लाई, थान थनंतर रहे आसमाई, सो सेवक जिस कृपा करी, निमुख निमुख जप नानक हरी, सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव, अष्टपदी, यह प्रसाद छत्ति अमृत खाहे, तिस ठाकर को रख मन माहे, यह प्रसाद सुगंधत तन लाव है, तिसको सिमरत परम गत पाव है, यह प्रसाद बस है सुख मंदर, तिसै त्याहे सदा मन अंदर, यह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरहो तिस रसना, यह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याहिय त्यावन जोग, यह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावै है, तिसै त्याग कत अवर लुभावै है।

मन सुख पावह हर हर जस कहत, जे प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके, मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताके, जे

का ध्यान जेह प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास चतारी जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरहु सदा अनूप।

ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागु हो, गुर प्रसाद नानक मन जागु हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस पव को मूल।

साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरनै कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा पर फुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहू धावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

आनंदा साध क्या संग नाही हो ताप साध क्या संग तजै सब आप आपे जाने साध बुदाई नानक साध प्रभु बने आई साध क्या संग न कबहू तावे साध क्या संग सदा सुख पावे साध संग बस्त अगोचर लह साधु कै संग अजर सह साध क्या संग बसै थानी उच्चे साधु कै संग महल पहुंचे साध क्या संग दृढ़ है सब धर्म साध क्या संग केवल पार ब्रह्म साध क्या संग पाहि नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध क्या संग सब कुल उधार है साध संग साजन मी

सेवा। साधु कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्ब थान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग न बिरता जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाउ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट दीठा, साध संग भय आग्याकारी, साध संग गत भई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जान है, जेता सुनह तेता बखियान है, साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई, सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जा

नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी कीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को पूजह महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञान

रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत हुए निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म

पाइए धर्म नानक किस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान तू दास दरगाह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास

हार अष्टपदे कई कोट होए पुजारी, कई कोट अचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन ब्रह्म है उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म

कई कोट भय अब महानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरह, कई कोट पर दुख ना करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरा सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठते ही खाए, कई कोट काल है थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाना तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्म।

इसकै हाथ हुए ता सब किस ले, जो तिस पावै सोई करे, अनजानत बिख्या मह रचै, जे जानत अपने आप बचै, परमे फूला दह दिस धावै।

जो तिस पावे सोई फुन थियो तब हूँ ऊंच नीच मह बसै कब हूँ सोग हरख रंग हसै कब हूँ निंद चिंद व्योहार कब हूँ ऊब आकाश पयाल कब हूँ बेता ब्रह्म विचार नानक आत्मलाम।

बड़ राजा कबहु भिखारी नीच का साजा कबहु अपकीर्त मह आवे कबहु भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै गुर प्रसाद नानक सच कह कबहु होए पंडित करे बख्यान कबहु मोन धारी लावे ध्यान कबहु तट तीर्थ इशनान कबहु सिद्ध साधक मुख गया।

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जानै मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

कछ होए तब इसको सुख नाही कोए। जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई

को ओठ धावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी तिसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करन हार इसके हाथ कहां विचार।

जाए। नानक सद ही रहे आसमाए, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्तार सब।

अपार कौतक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन ना जाए सत सत सत प्रभ स्वामी।

चार अष्टपदी संत कै दुख में आर जा घटे, संत कै दुख में जमते नहीं छुटे, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक मह पाए, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हथे को रखे ना कोई, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक पी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन कै दुखन काग ज्यों लवे।

ज्ञान प्रमाइय संत का दुखी उजड़ पाइय संत का दुखी अंतर तेत होता जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किस नाहे आपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी को अवर ना राखन हार नानक संत भावे ता लए उभार संत का दुखी इयों बिन लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै

कर हर करम सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जल मथा बड भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लागह दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना

नानक सो जन सदा अरोग ज्यो मंदर को थम थमन त्यो गुर का शब्द मन अस्थमन ज्यो पाखाण नाव चढ़तर प्राणी गुर चरण लगत निस्तर

संग मिल जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए।

तिरै संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती घर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया। ताज अभमान ले हो।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहि, सगल दे

जगत करे खिन माहे, पूर रहे ओ पूर्ण सब ठाए, नाना विद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवन, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहि समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जां कै हृदय प्रवेश, सत नित बूझै जे कोय, नाम जपत तां की गत होय, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करनै हार, अवर ना बूझ करत बीचार, करते की मित ना जानै किया, नानक जोत सुभावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पये बिस्माद, जिन बूझया तिसे आया स्वाद, प्रभ कै रंग रात जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी।

आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पीखनहार नाम सत सत ध्यानहार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करन करावन तिन मूल पछानिया जां कै हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटा।

बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पात राखै, ताकी गत मित कोए ना लाखै, प्रभु के सेवक को ना पहुंचै, प्रभु के सेवक उचते उच्चे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल राखै, पसम करै लश्कर कोट लाखै, जिसका शासन काटते आप, तां को राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु भांत,

बारंबार बार प्रभ जपिए ई अमृत इह मन तन तृपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृष्ट।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाउ तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाउ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै।

बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक कह आप नहीं कछ भरम सहस सियान पलया ना जाइए नानक ऐसा गुरबद भागी पाइए सफल दर्शन पेखत पनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुन कर बचन करन आगहने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखयो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखा हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावै तिस लये मलाए जिहवा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने ना पाई अनक भगत बंधन नित करह चरण कमल हृदय सिमरह सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोई अमृत पीवे अमर सो होए उस

अंधकार दीपक परगासे नानक परम मोह दुख तह ते नासे तपत माहे ठांड वरताई आनंद भया दुख नाठे पहाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहु चूका निरपहु होए बसे सगल ब्याध मन ते खै नसे जिसका साथ इन कृपा धारी साध संग जप नाम मरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पये प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साथ न चल बिन भजन विखिया सगली शार हर हर नाम कमावना नानक इहो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत बसार हो चरण कमल रिद मह उरतार हो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठ धावह तो तन हर सेवा ते पावह जिस सुख को नित बांचह मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनक अपावी रोग न जाय रोग मिटै हर अवखद लाय सर्व निदान मह हर नाम निदान जप

0: नाव, सिमर सिमर सदा सुख पाव, पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म परगास, तित कर जाए बसै अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी,
1: तत बीचार कह जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा, आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग सरन गुरदेव, इउ रतन जन्म का हुए उदहार, हर हर सिमर प्राण अधार, अनक अपावना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद बिचारे, हर की भगत करहु।

मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हरियाप पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप अनक विस्थार एक ते पये एक अराध परासत गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजै चाहो साध कै संग परे सरनयान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहिया सतसंग हजूरी जिसका साथन लिया मलाए नानक भगति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल ना भान सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन दिया सो क्यों बिसरे जे अगन मह राखै

नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहु आप जपहु अवरहा नाम जपावहु भगत भाई तरियै संसार बिन भक्ति तन होसी चार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपहु गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाऊ मन तन अंतर इही सुआउ नेत्रहु पेख दर्स सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजै कर्म।

सर्व घटां करत प्रतिपाल आद पुरुख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो हुए पनीत भगत भाए लावे मन हीत हम निर्गुण आर नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरुख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत पली सो करनी सो बातनवंत।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इस का वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रव केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रव सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अवनासी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा।

तब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई, जह सर्व कलाया पह प्रवीन, तह वेद कतेव कहां को चीन, जब आपन आप आप उरतारै।

आप पति यारा, तह कौन कतह कौन सुनने हारा, बहो बेअंत पूछते उच्चा, नानक आपस को आपह पहुंचा, जह आप रचियो प्रपंच अकार, तेहो गुण मह कीनो विस्थार, पाप पुन कह भई।

नानक एकै जहां अवगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत प्रताप दुहू पाख का आप है धनी उनकी शोभा उनहू बनी आप है कौतक करै अनद चोज आप है रस भोगर निरजोग जिस भावै तिस आपन नाए लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेशमार अथाह अगंत अतुलै ज्यो बलाव हो त्यो नानक दास बोलै सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दिसतार अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आपै एक आप विस्थार जान तिस भावै तां सृष्टि अपाई आप

नानक फल पावहु, हलत पलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतर उर धार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया, मन तन नाम जपो निवलाय, दुख दर्द मन ते भौ जाय, सच वापार करो वापारी, दरगाह निबह खेप तुम्हारी।

दृष्ट दर्शन पेठत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पये अमरा।

नह कछ करा, आप भला करतूत आत्मी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज, ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख हुए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआऊ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक

अष्टपदी पूरे गुर का सुने अपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार उधार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरन ही आए कर कृपा प्रभ आप मलाए।

जन सोए नानक जिस है प्राप्त होए हेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम।

सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाई, साध शरण नानक ते आई। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, जिस जन आवै।

नानक संत निर्मल पए, जिन मन वसया सोए पौड़ी, तृतीया त्रै गुण बिखै फाल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग भ्रम तो घणो, सदा संगारे नीच, हरख सोग सहसा संसार, हौं हौं करत बिहाई, जिन किए तिसह ना जाननी।

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक तेरी आस। सलोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी चतुरथ चारे वेद सुन सोध्यो तत विचार सर्व खीम कल्याण।

बिन से अमृत रस से रंग रति निरंकार दुख दार्द अपवित्रता नासह नाम आधार सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला हुए नानक सादर वाल। सलोक पंच बकार मन में बसे राचे माया संग साध संग हुए निर्मला नानक प्रभ कै रंग पौड़ी। पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसम बास बहुरंग कणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझिय नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच। सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारा वार भगत सोह गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार। पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सीख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीदे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसेओ पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याए। सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुपाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोविंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत नरो धर्मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

संसार्य नरक स्वर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस जिस खोजत मैं फिरे हो जत देखूं तत सोए मन

अंत मन मह चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाइए नानक त्यो संजम प्रभ कृपा पाई।

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बासकार सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन वेद वर्त संपूर्ण भया, धावत मन राखे एक ठाई, मन तन शुद्ध।

नानक प्रभ स्यों मिल रहे। बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम इशनान। हर की भगत करो ताजमान, हर अमृत पान करो साध संग। मन तृप्ता सह कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सब कौ संतोख है। पंच भू आत्मा

राम पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन न मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख न गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिन विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। श्लोक चार कुंट

पाया नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभे आप दिन दिन चढ़े सो आया नानक होत ना घाट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सभी ऊपर जा का हाथ।

को दृढ़ तिसका हुए उदहार किलबिख काटे हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाय हलत पलत मुखी उजला नह पोहै तिस माय सो सुरता सो वैष्णो सो ज्ञानी तनवंत सो सूरा कलवंत सोए जिन भजिया भगवंत खतरी ब्राह्मण सूद बैस उदरै।

मन पहाया, सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा, मन अंतर हो मैं रोग है, भ्रम भूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग गवाए, मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा, मन तन रत्ता रंग सियो, गुरमुख हर गुण तास, जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर साबास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है, किस नाल तू बड़ी है, तुद जे वड होए सो आखी है, तुद जेहा तू है पढ़ी है, तू घट घट एक वरतदा, गुरमुख परगड़ी है, तू सच्चा सब सुदा खसम है, सब दू तू चढ़ी है, तू करह सो सच्चे होए सी, ता कायत करी है।

सतगुरु सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यों बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू कर है सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समर्थ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे तिन विचों तिस्तिया ना कोई सतगुर सबना।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब पावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुज सच समाणी। सलोक महला चौथा, हर सत निरंजन अमर है निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या

तिन को वारिया जिन जपया सिरजनहार महला चौथा आपे धरती साजियन आपे आकाश विच आपे जंत उपायन।

तू सब किलविख कत्ते तास पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे तिन के मुख दारे उजले जिन हर हिरदय सच्चा पावे कूड़े आर पछाह सटियन कूड़ हिरदय कपट महा दुख पावे मुह काले कूड़े आरिया कूड़े आर कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर धरती धर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए गुरसिखी अमृत बीजिया तिने अमृत फल हर पाए ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगहा सची पैनाए इकना अंदर खोट नित खोट कमाव है ओहो जेहा बीजे तेहा फल खाए जां सतगुर सराप।

चौथा एक मन एक वर्तदा जित लगे सो थाए पाए कोई गल्ला करे कनेरिया जे घर वत हो ऐ साई खाए बिन सतगुरु सोजी ना पवे अहंकार ना विचों जाए अहंकारिया नो दुख भुख है हथ तड है घर कर मगाए कूड़ ठगी गुजी ना रहे मलम्मा पाज लह जाए जिस होवे पूर्व लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यों लोहा पारस भेटी है मिल संगत।

हरि आप मलाई गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए अवगण विकण पल्लरी जिस दे सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगण मेट गुण प्रगट आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो अन दिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुच संजम हर नामे ही त्रिपतावे हर नाम तान हर नाम देवान हर नामो रख करावे जो चेत लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओह वेला ओ सहत न आवे ओह अपना बीजिया आपे खावे नरक भोर मुहे काले खड़िया ज्यों तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरनी पवे ता उबरे जां हर हर नाम त्यावे हर बातां आख

आया पौड़ी। सच सच्चा सबदू वड्डा है, सो लए जिस सतगुर टिके, सो सतगुर जे सच त्याईंदा। सच सच्चा सतगुर इक्के, सोई सतगुर पुरख है, जिन पंचे दूत कीते वस छिके, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाईंदे। तिने अंदर कूड़ फिट फिट मुंह फिके।

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन हो सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर काया।

रखै, हलत पलत सब तिसका गया, नित झहियां पाए झगू सुटे, झकदा झड़ पया, नित अपाव करै माया धन कारण, अगला धन भी उड गया, क्या ओह खट्टे क्या ओह खावै, जिस अंदर सहसा दुख पया, निर्वैरै नाल जे वैर विचाए, सब पाप जगतै का तिन सिर लया, ओस अगै पिछे ढोई नाही, जिस अंदर निंदा मुहे अंब पया, जे सोइने नो ओह हाथ पाए, तां खेहू से तीर हल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे, तां पिछले औगण बख्श लया, जन नानक अन दिन नाम त्याया, हर सिमरत किल विख पाप गया, पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब तू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याईंदे, सच सेवन सच्चे तेरा मान, उन्ना अंदर सच मुख उजले, सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाहिया, सच

सतगुर मारे। जे मेलन नो बहु तेरा लूची है, ना देही मिलन करतारे। सत संगत ढोई ना लहन विच।

से फिटे गुर अंगद कीते कूड़े आरे गुर तीजी पीढ़ी वेचारिया क्या हाथ एना वेचारे गुर चौथी पीढ़ी टिकया तिन निंदक दुष्ट सब तारे कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कारज सब सवारे जो इच्छा सो फल पाए सी पुत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर तारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत ललारे जन नानक मांगै धूड़ तिन जो गुरसिख मित प्यारे महला चौथा जिनको आप दे बड़ियाई जगत भी आपे आन तिनको पैरी पाए डरिया ता जे किश आप दू कीचै सब करता अपनी कला वधाए देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आन निवाए अपने भगतां की रख करे हर स्वामी निंदकां दुष्टां के मुंह काले कराए सतगुर की वडियाई नित चढ़ै सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए अन दिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सतगुर करी वसाए सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मुंह कढ़ाए गुरसिखा के मुंह उजले करे हर प्यारा गुर का जयकार संसार सबत कराए।

सच साहा हमारे सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे थारे सच सेव है सच वणंज लह गुण कथ है निरारे सेवक भाए से जन मिले गुर शब्द सुवारे तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला ओस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया नित चुगली करे अणहोंदी पराई मुंह कढ ना सकै ओस।

परतख गुरु जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही कोई जाए मिले तिन निंदका मुह फिके थुक थुक मुहे पाही जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित भंबल भूसे खाही जिन गुरु गोपिया अपना से लैंदे तहां फराही तिनकी भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कुकाही ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही सतगुर की वड़ियाई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे थाउ नाही जो सतगुर मारे तिन जाए मिलह रहंदी खुंदी सब पत गुआही ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही हर तिन का दर्शन ना करहो जो दूजे पाए चित लाही तुर करते आप लिख पाया तिस नाल केहो चारा नाही जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही।

करे, हर वस्त संभाले, नाम निदान हर बन जीए, हीरे परवाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे, से मूड़ बेताले, से उजड़ भरम पवाई है, ज्यों झाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग मह होया, नरक घोर दुख खूह है, उथे पकड़ ओह ढोया, कूक पकार को ना सुने, ओह औखा होए होए रोया, ओन हलत पलत सब गवाया, लाहा मूल सब खोया, ओह तेली संदा बल्द कर, नित भलके उठ प्रभ जोया, हर वेखै सुनै नित सब किश, तिदू किश गुजा ना होया।

रहे जिन हर बसिया मन माही हर घर गहती मुखी उजली तिनको सब देखण जाही जिन निरपव नाम त्याया तिनको भव कोई नाही हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आई ते हर दरगह पैनाई है जिन हर बुट्ठा मन माहे वे आप तरे सब कटंब सिओ तिन पिछे सब जगत छडाहे जन नानक को हर मेल जन तिन वेख वेख हम जिवाहे महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे

जिन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लय छाय हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जा दिथा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी।

मेरे भाई पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वड़ियाई सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया

त्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हाजी है मल होमे कड्डै धोए सच मणंजह रंग सियो सच सौदा होए तोता मूल ना आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वस्से सच सच्चा हर रखवाली।

अवस्था सतसंगत मह हर उस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचै नव खंड जगत नम शिकारिया तुदे आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुह जम मारिया तिस अगे पिछे ढोई नाही गुर सिखी मन विचारिया सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे जिन हिरदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जपे हो हर निस्तारिया महला तीजा हो मैं जगत भलाया दुरमत बिख्या बेकार सतगुर मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल लय जिसनो शब्द लाए प्यार पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाहा है सो करे जिस अंदर भिजै जिन्नी एक मन एक अराध्या तिनका कंध ना कबहू सिजै तन तन पुरख साबास है जिन सच रसना अमृत पिजै सच सच्चा जिन मन भामदा से मन सच्ची दरगाह लिजै धन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजै सलोक महला चौथा साकत जाए निवह गुर आगै मन खोटे कूड़ कूड़ आरी जा गुर कह उठो मेरे भाई वह जाहे कुसर बगलारी गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै चुन कड्डे लड्डू वारे कोई अगे पिछे बह मुह सुपाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा भख सो ओथै नाही जाए कूड़ लहन भेडारे जे साकत नर खवाई है लोची है बिख कड्डे मुख उगलारे हर साकत सेती संग ना करियो

आया जिन हर प्रभ दिता जोड़। महला तीजा माया धारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला। गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए। जो तिस भावै सो करे कराया नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी तू करता सब किस जानदा जो जिया अंदर वरतै। तू करता आप अगणत है सब जग विच गणतै। सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बनतै। तू घट घट एक वरतदा सच साहिब चलतै। सतगुरु नू मिले सो हर मिले नाही किसे परतै। श्लोक महला चौथा एह मनुआ दृढ़ कर रखी है। गुरमुख लाइयै चित क्यों सास ग्रास वसारीऐ। बहंदिया उठदिया नित मरण जीवन की चिंता गई। एह जियड़ा हर प्रभ वस ज्यों भावै त्यों रख तू। जन नानक नाम बखश। महला तीजा मनमुख अहंकारी महल ना जाने। खिन आगे खिन पीछे सदा बलाइए महल ना आवे। क्यों कर दरगाह सीजै।

सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने। अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने। एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा जिन गुरु गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाउ। हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाउ। ओह वेला हथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए। सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाय। सतगुर पुरख निर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वर्तदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कड दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले

तपा न होवे अंदरो लोभी, नित माया नो फिरे जज मालिया, अगों दे सद्या सतै दी भिख्या लए नाही, पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया। पंच लोग सब हसन लगे।

के पूरे सतगुर भावे गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते जो सिखा नू लोचे सो गुर खुशी आवे सतगुर आखे सो कार कमावन सो जप कमावे।

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावै त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे सुध। गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौजदी की वार की धुन उपर।

तिस जन कै बलिहारन जिन भजिया प्रभ निर्वाण जन्म मरण दुख कटिया हर भेटिया पुरख सुजान।

खयूजन सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथै अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम कै पंथ ना पाई है फिर नाही मरने जिसनो आया प्रेम रस तिसै ही जरने बाणी उचर है साध जन हम्यो चल है चरने पेख दर्शन नानक जीव्या मन अंदर धरने सलोक महला पंजवा सतगुर पूरै सेवै दुखां का होए नास नानक नाम अराधे है कारज आवै रास महला पंजवा जित सिमरत संकट छुट है आनंद मंगल बिचराम नानक जपिए सदा हर निमुख न बिसरो नाम पौड़ी जिनकी शोभा क्या गणी जिन्नी हर हर लगा साधा सरणी जो पवै तो छुट्टै बद्दा गुण गावै अबनासी है जोन गर्भ ना दद्दा गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समद्धा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा सलोक महला पंजवा कामना करे ही अपना फिर है अवत्ता लोए नानक नाए वसारे है सुख कनेहा हुए महला पंजवा बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरिय जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिय भव सागर संसार बिख सो पार उतरिय हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिय नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरिय सलोक महला पंजवा नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित डाली अल पलालिया कम ना आवे मित महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अग

निर्भ गुत्ते करतब करन पलेरिया मदमाया सुत्ते फिर जून पवाईयन जम मार्ग मुत्ते कीता पायन अपना दुख सेती जुत्ते नानक नाए वसारे है सब मंदिर उत्ते। सलोक महला पंजवा पठंदियां बहंदियां सवंदियां सुख सोए नानक नाम सलाह है मन तन सीतल होए। महला पंजवा लालच अटिया नित फिरै स्वार्थ करे ना कोए जिस गुर

जो जा चंडी हेकड़ो गाली ब्या विकार नानक धनी विहूणिया महला पंजवा नीह जे विद्या मन पछाणु विरलो थियो जोड़ नहारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव हो जियड़ी दाता बख्शिंद किल विख सब बनास होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दस्या जपिया गुरमंत माया स्वाद सब फिक्किया हर

सिक जिस तुस देवै आप जित खादै मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खट है जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सुपाए तन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवा जीवन पद निर्वाण।

ज्ञान रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस भलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

रह दिशा जल पर्वत बन राए जिथे दिठा मृत को तिल बेठी आए पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म एक नाम त्यावो।

सारी पौड़ी रसना उचरै हर श्रवणी सुने सो उदरै मित्ता हर जस लिखें लाए भावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिख्या गढ़ जिता नानक लड़।

तन फुटन जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतोह की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काला जसवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभ वड्डा है

जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया रहाउ, मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए, जेह पावक सुर नर है जारी,

काज तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहो कबीर पात हर परवान सर्व त्याग भज केवल नाम। गौड़ी कबीर जी नगल फिरत जो पाई जोग बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम जब नहीं चीन से आत्म राम। रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति भेद न गई आकाई। बिंद राख जो तरिय पाई खुसरे क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी।

गौड़ी कबीर जी अंधकार सुख कबह न सोई है, राजा रंक दू मिल रोई है, जौ पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ, जस देखी है तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया, जस जंती

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तौ मन माने जाते हो मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग होए नहीं चरण निवास कहो कबीर एह कही है काहे साध संगत बैकुंठ आहे गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई।

तौ कीजै जौ आपन जीजै। मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जे आवनहारा रहाऊ। या देही परमल महकंदा, तां सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज भरै मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपथ कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमोहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए।

पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन भया मगहर की बासी कांसी मगहर

सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भये है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भये है मीता साकत उल्ट सुजन भये चीता अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया शांत भई जब गोविंद जानिया रहाऊ तन मह होती कोट अपाद उल्ट भई सुख सह।

कबीर जी, पिंड मुवै जियो केहे घर जाता, शब्द अतीत अनाहद राता, जिन राम जानिया तिनह पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथै बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ, सो गुर करहो जे बहुर ना करना, सो पद रवहो जे बहुर ना रवना, सो ध्यान धरहो जे बहुर ना धरना, ऐसे मरहो जे बहुर ना मरना, उल्टी गंगा जमन मलावो, बिन जल संगम मन महनावो, लोचा समसर एहो व्यवहारा, तत विचार क्या अवर बिचारा, आप तेज बाए पृथ्वी अकासा, ऐसी रहत रहो हर पासा, कह कबीर निरंजन त्यावो, तित घर जाओ जे बहुर ना आवो, गौड़ी कबीर जी तिप दे कंचन स्यो पाईए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, अब मोहे राम अपना कर जानिया।

केवल राम भगत निज भागी गौड़ी कबीर जी जे मरना सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द परगासिया अब कैसे मरूं मरन मन मानिया मर मर जाके जिन राम ना जाने।

कहंदा गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लाव खोजत तन मह ठौर ना पाव लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाओ एक भाई देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अनंत।

जब लग रथ तब लग नहीं नेह रहाउ साहन सत करे जी अपने चोर मैये को मिले ना सुपने तन मन तन गृह।

चौड़ कत बोड़ी, हर सिंह तोड़ बिठिया संग जोड़ी रहाओ, तुर नर दादे लागी आग, निकट नीर पास पीवस ना झाग, चेतत चेतत निकसियो नीर, तो जल निर्मल कथत कबीर, गौड़ी कबीर जी, जेहे कुल पूतना ज्ञान बीचारी, विधवा कसना पई महतारी, जेहे नार राम भगत नह साधी, जनमत कसना मुओ अपराधी रहाओ, मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया, बुढ़ पुज रूप जी।

नहाऊ। इनकै सद बलिहारै जाऊ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावै रहाऊ। जेहे कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वाको कही है सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान भी चारा रहाऊ, सहज कलालन जो मिल आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अन पहु पाया, गौड़ी कबीर जी मन का सुपहु मन दयापी, मन है मार कमन सिद्ध थापी, कमन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाओ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई, कहो

तुझह ले तारू खिचह ता प्रेम कै चावक मारू कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव ते रह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गढ़ ले माटी।

का राखे कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ, काको जरे काहे होए हान, नटवट खेले।

तत माया कैसे जीवन हुए हमारा जब ना हुए राम नाम अधारा रहाओ। कहो कबीर खोजो असमान राम समान ना देखो आन। गौड़ी कबीर जी जेहे सिर रच रच बांधत पाग सो सिर चुंच सवार है काग। इस तन तन को क्या

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हम हो ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुख ते सिव ब्रह्म डराना सो सुख हम हो साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन मह।

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी ग्वार रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भये लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तार तारे।

सो जन पर कर जात ना सोही, सो साहिब रहया भरपूर, सदा संग नाही हर दूर, कवला चरण सरन है जाके, कहो जन का नाही घर ताके, सब को कह जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता, कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवर ना होई।

आउ कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छडाई। अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना। सतगुर

आधार जा स्थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो ताते अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

कहत कबीर अकुल नहीं चेतिया, लिखिया स्यों लपटाना गौड़ी, जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन समाया, अंजन माही निरंजन रही है, बहुड़ ना पवजल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बलोई है, गुरमत मनुआ स्थिर राखो हो, इन बेद अमृत पियोई है रहाओ, गुर कै बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा, सकत अंधेर जेवड़ी भ्रम चूका, निहचल शिव कर बासा, तिन बिन बाण तनख चढ़ाई है, एहो जग बेदिया भाई, दह दिस बूढ़ी पवन चलावै, जोर रही लिवलाई, उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी, कहो कबीर अनभव एक देखिया, राम नाम लिवलागी, गौड़ी बैरागण तिप दे, उल्टत पवन चक्कर खाट भेदे, सुरत सुन अनरागी, आवे ना जाए मरे ना जीवे, तास खोज बैरागी, मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल पही अवरे, नातर था बेगाना रहाओ, निवरै दूर दूर फुन निवरै।

हल्की लगे ना भारी रहाउ। अर्ध उर्द दो तह नाही, रात दिन स तह नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही। सतगुरु तहां समाही, अगम अगोचर रह निरंतर, गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाऊं गुर अपने। सत संगत मिल रही है गौड़ी, पाप पुन दोए बैल बसाही, पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर, इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बन जारा रहाओ। काम क्रोध दोए भये जगाती, मन तरंग बटवारा, पंच तत् मिल दान नवेर है, टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बन आई घाटी, चढ़त बैल एक थाका, चलो गोन छिटकाई।

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पल मीठा अवरना दूजा भाई रुंडित मुंडित एक शब्दी ए कह है सिद्ध पाई हर बिन भरम भलानी।

किस नाही पांच तात तह नाही एड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए अवगण कत जाही तागा टूटा गगन बिनस गया तेरा बोलत कहां समाई।

पिंड तह नाही रचनहार तह नाही जोड़नहारू सदा अतीता एह कहिए किस माही जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग होए बिन।

रहाउ। खांड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ, सब जग पसमा धारी, ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे हुए पसारी, मन पवन दोए तुम्बा करी है, जुग जुग सारद साजी, थिर पई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी, सुन मन मगन पए है पूरे, माया डोल ना लागी, कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी, पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस, पुरिया एक तनाई, साठ सूत नव खंड बहत्तर, पाठ लगो अधिकाई, गई बनावन माहो, कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ, गजी ना मिनिया तोल ना तुलिया, पांचन सेर अढ़ाई, जो कर पांचन बेग ना पावे, चगर करे करहाई, दिन की बैठ खसम की बरकस।

नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजै फूट मरै जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिलै सिद्ध पाई है।

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातु ठाकुर सो क्यों मनहु बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है।

विखै बाच हर्राच समझ मन बहुरारे निरपै हुए ना हर भजे मन बहुरारे गहयो ना राम जहाज रहाव मरकट मुष्टि अनाज की मन बहुरारे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा।

देव गौड़ी अग्न ना दह पवन नहीं मगन कस कर नीर ना आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कत ही ना जावे हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर यह सार धन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है रहाओ इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी मन मुकंद जिहवा नारायण परै ना जम की फासी निज धन ज्ञान भगत गुरदीनी तास समत मन लागा जलत अंब थंब मन धावत परम बंधन पहु भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असव हसती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुभद ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे ओ रहाओ ज्यों उद्यान कुसम पर फुल्लत किन्ह ना कराओ लयो तैसे भ्रमत अनेक जोन मह फिर काल हयो या धन जोगन अर सुत दारा पेखन कौ जो दयो तिन ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री परेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चहु दिस ठाट ठयो कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुरु।

तोरा तन धन सब रस गोविंद तोरा रहाउ। इस माटी मह पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ। जा तिस भावै ता हुक्म मनावै इस बेड़े को पार लंघावै गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर भज सारग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो लागत पवन खसम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रहाओ। गर्भ जोन मह उर्द तप करता तव जठर अगन मह रहता लख चौरासी जोन भ्रम आयो अब के छुटके ठौर ना ठायो कहो कबीर भज सारग पानी आवत दिसै जात ना जानी गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी।

गुण गाइए जाते पाइए परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संयमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत ना जानिए भाउ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है विद निरतिया सो होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जेह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार।

रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले।

पद कारण हर की भगत करीजै एक आधार नाम नारायण हरसना राम रवीजै राग गौड़ी ग्यारवां आस पास घन तुर।

साधु परम प्रगट हुए नाचो हो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन ते डर पै सती के सांचय भांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संधौरा रहाओ काम।

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लो रे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार जान कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपहु तरन तारन राम राया रहाऊ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पांच पहरुआ दर में रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत हुए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप ना।

तास गुण गाव है, तास बस है मोरे प्राणा न रहाउ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित, गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागे, मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ, दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पये मन बासन, त्याग घटियो अबमान हाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर, तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बसियो मन जाकै, कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो, एकै एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महा सुख, भ्रमत रहे मन मानाना। राग

बावन अक्षर लोक त्रय सब कछ इन ही माहे, ये अक्षर खिर जाहिंगे ओए अक्षर इन मह नाहे। जहां बोल तह अक्षर आवा, जह अबोल तह मन ना रहावा। बोल अबोल मद है सोई, जस ओह है तस लखै ना कोई। लह लहू तो क्या कहूं, कहूं ता को उपकार। बटक बीज

साध मैं जाना, लिख अर मिटै ताहि न माना। ओंकार लखै जो कोई, सोई लख मिटना ना होई। कक्का किरण कमल मह पावा, सस बगास संपट नहीं आवा। हर जे तहां कुसम रस पावा, कह कहां कह का समझावा।

परवाना। कत झख झख और न समझावा, झगर किए झगरो ही पावा। नन्या निकट सो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए। जा कारण जग ढूंढ्यो, नेरो पायो ताहे। तटा बिकट घाट घट माही, खोल कपाट महल के ना जाही।

अर्दह उर्दह मांझ बसेरा, अर्दह चाड उर्द जो आवा, तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा। नन्ना निस दिन निरखत जाई, निरखत नैन रही रतवाई। निरखत निरखत जब जाए पावा, तबले निरख है निरख मलावा। पप्पा अपार पार नहीं पावा, परम ज्योत स्यो परचो लावा। पांचो इंद्री निग्रह करी, पाप पुन दो निर्वरी। फफा बिन फूलह फल हुई,

पावा, बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंदक होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पवो पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद पूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कह कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई, एहो मन शक्ति एहो मन सियो, एहो मन पंच तत् को जियो, एहो मन ले जो उन मन रह, तो तीन लोक की बातें कह, जैया जो जान तो दुर्मत, हन कर बस काया गाँव, रण रूतो भाजे नहीं, सूरो थारो नाव, रारा रस निरस कर जानिया, होए नरस सो रस पहचानिया, ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ, ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੇ, ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੇ, ਅਰ ਜੋ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਤਉ ਅਲਹ ਲਹਿ ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੇ, ਵਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਸਨ ਸੰਹਾਰ,

होए। इहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोय। सत्सा सो नीका कर सुध हो घट परचा की बात नरुद्ध हो। घट परचै जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राओ। खखा खोज परै जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा तो भवजल तरत ना लावै बारा। सत्सा सो सह सेज सवारै सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एहे त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तबह मन माना। है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो करत

छठ खट चक्कर शहू दिस धाय, बिन परचै नहीं फिरा रहाय। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो।

एकादशी एक दिश तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो अचर्ज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगम बखान अर्ध उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरह कला सहज परगास। आदि अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर में।

सत बार बार हर के गुण गाव गुरगम भेद सो हर का पाव रहाव आदत करे भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंभ अहनिस अखंड सुर ही जाय तो अनहद बीन सहज महबाय सोमवार सस अमृत चरै

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए नातर खरार सहराई राय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में है हर का बास गुर मिल दो एक सम तरे उर्द पंकले सूदा करे बृहस्पत बिख्या दे बहाय तीन देव एक संग लाए तीन नदी तह त्रिकुटी माहे ऐनस कसमल तो वह नाहे सो किरत सहारे सो एह ब्रत चढ़े अन दिन आप आप स्यों लड़े सुरखी पांचो राखे सबे तो दूजी दृष्ट ना पैसे कबे थावर थिर कर राखे सोए जोत दी वटी घट मह जोए बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग घट मह दूजी आन तो लो महल न लाभे जान रमत राम।

जीव की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेऊ मुक्त भये।

कौराज दिए जापहीन तापहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआर रि एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

साध कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

मूसौ को ना कह समझाय, जाते आवा गमन बिलाय रहाव। बहु विद धर्म निरूपीय, करता दिसै सब लोए, कवन कर्म ते छूटीय, जेह साजे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारीय, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हिरदय बसै, कौन हिरै अभमान। बाहर उदक पखारी है, घट भीतर बेबिद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सोच कुंचर बिद व्यवहार। रब प्रगास रजनी जथागत, जानत सब संसार, पारस मानो तांबो छुए, कनक होत नहीं बार। परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ले लाट, हुन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत सत करी, भ्रम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक बेचार। अनक जतन निग्रह की

पड़े रिथी सुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले गावन तुदनो।

पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई तो पातशाह साहा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला चौथा सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो।

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे है हर त्यावे है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको

करी गुर प्रसाद वसै मन आई दुख अनेरा विचों जाय साच प्यारा आप करी अवरी को साच ना दे जे किसै देव खाने नानक आगै पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दौलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचै कल का पाव जति सती कह राखह पाव नानक नाम विटो कुरबान अंधी दुनिया साहिब जान रहाऊ।

कही है, सर्ब निरंतर रव रहिया, नाल कटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या बड़ा भया, रतन उपाय तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन की।

बाद जब लग हृदय न आवह जाद तौ प्रवाह के ही क्या कीजे जन्म जन्म किस लीजी लीजे रहाओ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिए सब खतो खता क्या मुंह लै की चै अरदास पाप पुन धोए साखी पास जैसा तू करह तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुद आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परिया परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो बीचार आसा महला पहला कर किरपा अपने घर आया ता मिल सखियां काज रचाया खेल देख मन आनंद भया सहो वी आहण आया गावो गावो कामणी बिबेक बिचार हमरै घर आया जग जीवन पतार रहाव गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ जा सहो मिलिया ता जानिया तिहो लोका हमें शब्द रविया है आप गया मन मानिया अपना कार्ज आप सवारी होरन कार्ज ना हुई जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझै कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रहो बन समसर सहज सुपाय दुर्मत गत पई कीरत थाए सच पौड़ी साचो मुख नाम सतगुर।

एक बहु करे दुख बिकिया सुख तन पर हरे काम क्रोध अंतर धन हिरे दुबदा छोड़ नाम निस्तरे सिफत सलाह।

दिसै, बिन जल सरवर कमल ना दिसै रहाउ। बिरला बूझै पावै भेद, साखा तीन कह नित भेद। नाद बिंद की सुरत समाई, सतगुर सेव परम पद पाई। मुक्तो रातो रंग रवंतो, राजन राज सदा बिकसंतो। जिस तू राख है किरपा तार, बूढ़त पाहन तार है तार। त्रे भवन मह जोत, त्रे भवन मह जानिया। उल्ट पई घर घर मह आणिया। अहनस भगत करे लिवलाई, नानक तिन कै लागै पाए। आसा महला पहला, गुरमत साची हुज्जत दूर। बहुत सियाणप लागै धूर, लागी मैल मिटै सच नाई। गुर प्रसाद रह लिवलाई, है हजूर हाजिर अरदास। दुख सुख सा

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मन तृप्त ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमे माया दुख संतापे। से जन बाचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द पाखे। साचे शब्द मुक्त गत पाई, नानक विचों।

हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ, कर्म धर्म सच साचा नाओ, तां कै सद बलिहारे जाओ, जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निदान, हर वार जिन पाया तन।

सात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेटे एको सो होए आसा महला पहला एक आव है एक जाव है आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन मह ठौर ना पाव है से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बिख वत अत भौजल

अठसख मज्जन हर सरीद गुरमुख निर्मल मैल ना लागे नानक हिरदय नाम वड्डी तुर भागे आसा महला पहला निव निव पाई लगो।

पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई।

प्रगट जाय, सच निशान है ठाक न पाय। पंडित पढ़े बखान है वेद, अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना होए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हों आखा आख बखानी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। इस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवै। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है कर है सोई, आसा मनसा धूब नासक। त्रिहो गुण आसन रास पई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई है। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हृदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत न कलपै माई, एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जम पुर जाहे, गुर दीखिया ले जप तप कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे, नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रहै समाए, आसा महला पहला, आप करे सच अलख अपार, हौ पापी तू बख्शन हार, तेरा भाणा सब किछ होवै, मन हठ कीचै अंत वगोवै रहाउ, मन मुख की मत कूड़ व्यापी, बिन हर सिमरन पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाहा किछ लेवहो, जो उपजै सो अलख अपेवहो, ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दिरड़ाई, सगली सौदी टोटा आवै, नानक राम नाम मन भावै, आसा महला पहला चौपदे, विद्या विचारी तां पर उपकारी, जां पंच रासी तां तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै।

मेरा सहु जागे हौ निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहु जागे हौ निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा आगे सह भाव।

रहाउ दर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासे थिर ना रहे जैसे भवह उदासे मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाउ फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू पंच सखी मिल

कराया, तिस क्या कहिए भाई, जो किश करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई, तेरा हुक्म भला तुद भावे, नानक ताको मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाव, किरत पया परवाना लिखिया, बहुड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सके कोई, जे को दरगाह बहुता बोले, नाव पवे बाजारी, सतरंज बाज

मह मुंदरा खिंता खिमा हंडावू जो किस करै भला कर मानू सहज जोग निध पावू बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी।

सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन पर थर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावे कर करनी कस पाई है पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चवाई है बाबा मन मतवारू नाम रस पीवे सहज रंग रच रहिया एनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाऊ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का व्यापारी होवे क्या मद छूछे भाउ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ है करे क्या सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारे कहो नानक सुन पर थर जोगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तै की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै बगे खसमे सा पुरसाई रतन बगार वगोए कुत्ती मोया सार ना काई आपे जोड़ बछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाणी मर मर जीवे तां किस पाई नानक नाम वखाणे राग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावे वडभाग गुर कै शब्द सच्चे बैराग खट दर्शन वरते वरतारा गुर का दर्शन अगम अपारा गुर कै दर्शन मुक्त गत हुए साचा आप।

कोए, गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगै ना पीर। जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै। आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गुआई। सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए। सच्ची बाणी पाए भाग कोई,

पाए, हर एकी मत किन बिद होए, हर अपरम पर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जान कोए रहाओ, गुरमुख कीमत जाने कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाने कोए, विणनावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरे पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिलै सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, इनकै हम सद लागह पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगाह मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़ आपे दूर, आखण आखै बकै सब कोई, आपे बख्श मलाए सोए, कहने कथन ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्दै बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी।

सुख पाई, संत संगत मेल हर गुण गाय, नामी नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की बाणी नाम वजाय, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाई आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाई, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाई, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाई, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरे बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हों मैं मारी सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जान है, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरहु फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मनमुख परम भुले संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्ले ना पाई, मनमुख भुला जन्म गुआई।

पार रहाउ सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अन दिन हर गावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साची जिस साच प्यार अपना पिर राखे सदा उर तार नेड़े वेखे सदा हदूर।

अवर ना कोई गुरसागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार आसा महला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए पूरे भाग गुर सेवा होए सो बूझै जिसे आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बनासै अन दिन जागै वेखै सच सोए रहाओ मोह गमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर ते सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछा

समावै सत संगत मेल सब सोजी पाए गुर का शब्द हर भगत दृढ़ाए भाणा मन्ने सदा सुख होए नानक सच समावै सोए हासा महला तीजा पंचपदे शब्द मरै तिस सदा आनंद सतगुर भेटे गुरु गोबिंद ना फिर मरै ना आवै जाए पूरे गुरते साच समाए।

ना जाई, पूरै सतगुर दित्ती वडियाई, उत्तम पदवी हर नाम समाई, जो किछ करे सो आपे आप, एक घड़ी मह थाप उथाप, कह कह कहना आख सुनाई, जे सो काले थाए ना।

दुख जाए, ज्ञान रतन साचै सहज समाए, नावै जेवड होर धन नाही कोय, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरा शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा, निरत करे बहु वाजे बजाए, इहो मन अंधा बोला है किसे आख सुनाए, अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले ना सूझी पाए, गुरमुख भगत घट चानण होए, आप पछाण।

पछान गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी भवजल तरे गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जियो आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मलाए निश्चल भगत हर सियो चित लाए भगत रते तिन सची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा घर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै भाणे सतगुर मिले सच सोजी होई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै तां सदा सुख होई रहाउ इस युग में निरपो हर नाम है पाईऐ गुर विचार बिन नामै जम कै वस है मन मुख अंध गुआर हर कै भाणै जन सेवा करै बूझै सच सोई हर कै भाणै सलाहियै भाणै मन्नै सुख होई हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा

जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा घर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। हमारा तड़ा हर रहया समाई, हम हर स्यों तड़ा किया मेरी हर टेक। मैं हर बिन पख तड़ा अवर न कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक। रहाव जिन स्यों तड़े कर है से जाहे, झूठ तड़े कर पछो ताहे। थिर न रह मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समरथ नाहे। यह सब तड़े माया मोह पसारी, माया को लूजह गवारी। जन्म मरह जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सुवारी। कलयुग मह तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सत संग मलाए। हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, प्राया सिदर अटकल अपना अहंकार वधावे। जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तड़ा धर्म सब सृष्ट जिने आवे। आसा महला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया।

वैराग सतगुरु पुरख पायावड भाग दूजै पाए भवह बिख माया भागहीन नहीं सतगुरु पाया अमृत हर रस हर आप पी आया गुरपूरै नानक हर पाया आसा महला चौथा मेरा मन तन प्रेम नाम आधार नाम जपी नामो सुख सार नाम जपो मेरे साजन सेना नाम बिना मैं अवर ना कोई वड्डे भाग गुरमुख हर लैना रहाउ नाम बिना नहीं जीविया जाए वड्डे भाग गुरमुख हर पाए नाम हीन कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीव आया वड्डा वड्डा हर भाग कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आख बखाणी जप जप नाम मन भया आनंदा सत सत सत गुर

माया मल धारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़िए।

काई नाम रविया सब सास ग्रासा रहाउ नामै सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई नाम हीन गए मूड नंगा पच पच मुए बिख देख पतंगा आपे थापे थाप उथापे नानक नाम देवै हर आपे आसा महला चौथा गुरमुख हर हर वेल वधाई हल लागे हर रस करसाई हर हर नाम जप अनत तरंगा जप जप नाम गुरमत सालाही मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाउ हर हर गुरमह भगत रखाई गुर तुठा सिख देवै मेरे भाई हउ मैं कर्म किस बिद नहीं जा।

सुनी मन सरसा, नाम लाहा लै गुरमत बिगसा, नाम बिना कुश्ती मोह अंधा, सब ने फल कर्म किए दुख धंधा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग पेन जोगी हर देहो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगै हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामै हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोग हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

खिन लागे हम तब लग समारो नाम। मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सकू। जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन। कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे। तब लग मेरा मन राम गुण गावे तब को नाचे पाम पसारे। कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे। तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे। लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो। ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा। सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए। ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाच हो हर हर त्याई ऐसे संत मिल है मेरे भाई। हम जन के तो वह पाए रहाओ हर हर नाम जप हो मन मेरे। अन दिन हर निब लाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो। फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए। से संत भले तुद भाव है जिनकी पत पाव है थाए। नानक आख नाराजे हर गुण ज्यों आख है त्यों सुख पाए। भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वणज लै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां के काफी महला चौथा। आया मन तुराहो हूं मैं रोई है गुरमुख नाम त्याए अस्थिर हुई है। गुरपूरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समानिया। रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन अज के कल तुरो फुरमाया। बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया जुए खेलन जग के इहो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया। गुर प्रसादी भुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया। दर सच्चे सत्यार महल बुलाया रहाओ अंतर नाम निदान गुरमुख पाई। अन दिन नाम त्याए हर गुण गाई है अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाई है। हम मैं गर्भ है गर्भ आप खुआई है नानक आपे आप खुआई है। गुरमत मन परगास सच्चा पाई है राग असावरी कर सोलवा के दो महला चौथा। सोधन एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम अन दिन हर नाम कीर्तन करू। सतगुरु मोको हर नाम बताया हम हर बिन खिन पल रह ना सको। रहाउ हमरे सर्वन सिमरन हर कीर्तन हम हर बिन रह ना सको। हम एक खिन जैसे हंस सर्वर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों।

हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान सावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई कौ हर बिन खिन पल रह ना सकूं जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ हमरा मन बैराग बिरकत भयो हर दर्शन मीत कै ताई जैसे अल कमला बिन रह ना सकै तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई राख शरण जगदी सुर प्यारे मोहे शरदा पूर हर गुसाई जन नानक कै मन आनंद होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

वख वख परमावै घर की नायक घर वास ना देवै जतन करूं पुरजाई फरेवै रहाउ तुरकी भेजी।

साधुए मनुख पहचाव। तृतीय मता किस करूं उपाया, मैं सब किस छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सह जाया।

परदेश झाग सौदे कहो आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन एहु मन लपटानी, सहा व्यापारी द्वारे आए,

मेरो सब दुख जो हो आंगन मेरा सोभा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलू।

कान सद कुचियां सदा रंग माने नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने कहो नानक जोह पिरह शिंगारी थिर सुहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उनमू कर परना।

मानते मन निर्मल हर हर गुण गाय पय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलो सहज सुपाए रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े।

मरना, मुआ होए तिस निश्चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाउ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटै त्रिकुटी तिस निज घर वासा, ऊंचा चढ़ै सो पवै पयाला, तरन पड़ै तिस लगै ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवां, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत

चौपदी एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पल दिन समो को कब हो ना बिहावे।

असमानी रैण पई तब अंत ना जानी। पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी, ब्रह्म भ्रम रोवै हाथ पछोड़ी।

करने दान अमृत सार साधे ही परपूरा रहा चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया गुरु नानक तुठा मिलिया हर राई सुख रैन विहानी सहज सुपाई आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगति आया मिल सतगुर धन पूरा पाया ऐसा हर धन संची है भाई भाए न जल जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतहु न जाई रहा तोट न आवे नखोट न जाए खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा महला पंजवा जैसे किरसान बोवे किरसानी काची पाकी बाड परानी जो जन्मे सो जानहु मुआ गोविंद भगत अस्थर है किया रहाउ दिन ते सर पर पौसी रात रैन गई फिर हुए प्रभात माया मोहे सोए रहे अपागे गुर प्रसाद को विरला जागे कहो नानक गुण गाई है नीत मुख उजल हुए निर्मल चीत आसा महला पंजवा नौ निद तेरे।

कै सद ही संगा, कुदरत वरत रूप अर रंगा, करह ना चुरै ना मन रोवन हारा, अवनासी।

त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा जी प्राण धन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार।

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की।

और पूरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवां गुर कै शब्द बंधावो

रहाउ तृप्त अगावन साक्य नाय अठसठ मज्जन संत तुराय सब मैं जानू करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभमान नानक को गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंधकूप में

मन सदा आनंद आन रसा मह व्यापै चिंद हर रस पीवै अलमस्त मतवारा आन रसा सब हो शेरे रहाओ हर रस की कीमत कही न जाए हर रस साधु हाट समाए लाख करोरी मिले ना किहे

पदे पई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

बैठत उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास ग्रासा रहाउ। राख राख शरण प्रभ अपनी अग्न सागर विकराला, नानक के सुख दाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला। आसा महला पंजवा, हर जन लीने प्रभु छडाई, प्रीतम स्यों मेरो मन मानिया।

आप सहाय गुण निदान नित गावै नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवां औखद खायो हर को नाउ सुख पाए दुख बिनसिया थाउ ताप गया बचन गुरपूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवां बांसत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

सदा सदाय आत्म परगास, साध संगत हर चरण निवास, राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल शांत सदा सुख पावे है, किलख जाही सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूरन कर्म, सतगुर भेटे।

गाए अतोली हर सिमरत नानक पई अमोली। खासा महला पंजवा काम क्रोध माया मद मत सर ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच एह अपने ग्रह भीतर वारी। जन्म मरण चूके सब भारे मिलत संग भयो मन निर्मल।

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल मह जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोबन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी बहुत दरबहस्ती अर

ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, अपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने, नांगा आया नांगो जासी।

कर कर डूबे खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा।

जन्म जन्म की मल धोवै पराई अपना कीता पावै इहां सुख नहीं दरगाह ढोई जमपुर जाए पचावै निंदक अहला जन्म गवाया पहुँच ना साकै काहू बातै आगै ठौर ना।

गोविंद भजन की मत है होरा, बरमी मारी साफ ना मरी, नाम ना सुनी डोरा रहाऊ, माया की किरत छोड़ गवाई।

आया कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचे आप निवारी पंच जना ले वसगत राखे मन में है इकंकारी तेरा जन नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द वज

सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे, संत धूर तन लावे, मन तन अर्प धरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे लाए श्रद्धा, तड़का जन्म मरण दुख भागे,

आया रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया गुरसिख राखे गुरु गोपाल काढ़ लिए महाभव जल ते अपनी नदर निहाल रहाओ जा कै सिमरन जमते छुटिया हलत पलत सुख पाई सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाई है।

तेरी कृपा तिसको बिपना को भाखै ओहो सुख ओहा वडियाई। जो प्रभ जी मन पाणी तू दाना तू सद मेहरवाना नाम मिलै रंग माणी तुद आ गया।

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्णना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी काजर कोट मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ने हो रहा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज धरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया, सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहा मह फलिया, ऐसा करहु बीचार ज्ञानी, जाते पाई है पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है भाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

तेरा ओले भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले रहाउ हुक्म बूझ रंग रस माणी सतगुरु सेवा महानिर्वाणी जिन तू जाता सो गिरस्त उदा

नरक सुर्ग फिर फिर अवतार, गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वासे आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर की

चित आवे सो नाम जपै जो जन तुद पावे रहाउ। तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत।

है कोई सगल श्रेष्ठ अवा के चरण मल धोई जो प्राणी काहू न आवत काम संत प्रसाद ताको जपिए नाम साध संग मन

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखों एकै ओही

मुख हर हर बोले, सोजन इतोत कतह ना डोले, कहो नानक जो राचे नाई, हर माला ताके संग जाई, आसा महला पंजवा, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापे कोई, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करे सोई भल जन के, आत्मनिर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया।

कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया। आसा महला पंजवां, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दू

क्रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, त्रिहो गुण में वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो नानक।

जानी, भोर पया बहोर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी, प्रभ मिलबे की लालसा, तांते आलस कहां करोरी रहाओ, कर्म है अमृत आनन सारेउ, खिसर गयो भूम पर डारेउ, साध मोहे लादी अहंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे।

परा को पहुँच न साकह जन तेरे को दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसै बैरागी।

देख चलत मन भये दलासा, नानक दास तेरा परवासा, आसा महला पंजवा, अनदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई, सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत, कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया, काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल कर पा।

उनकै संग हम तुम संग मेल, उनकै संग तुम सब को लोरै, ओस बिना को मुख नहीं जोरै, ते बैरागी कहां समाए, तिस बिन तुही दोहे रीरी रहाओ, उनकै संग तू ग्रह महमाहर, उनकै संग तू होई है जाहर, उनकै संग तू रखी पपोल, ओस बिना तू छुटकी रोल, उनकै संग तेरा मान महत, उनकै संग तुम साक जगत, उनकै संग तेरी सब बिद थाटी, ओस बिना तू होई है माटी, ओह बैरागी मरै ना जाए, हुक्मे बादा कार कमाए।

उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांधे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना

गर्भ मोह तज हूं रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमक निमक एही आराधो, दिन सरहन ए सेवा साधो। भये कृपाल गोपाल गोबिंद, साध संग नानक बख्शिंद। आसा महला पंजवा, प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

जिस खसम दयाल आसा मोहल्ला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कान्हेरी जो मिली तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ नाही लाग छुट्टो।

आठ घाट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुर प्रसाद में खोटी डीठी, अगरक उसके वडे ठगाऊ, छोड़ह नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन भया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

सगल धर्म हर के गुण गाम। महा पवित्र साधका संग, जिस भेट तलागे प्रभ रंग। गुर प्रसाद होए आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा। ताकी गात मित कह

थे लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा।

हर जसै अगानी जप जप जीवा सारग पानी करन करावन सरन परिया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाउ लाल जिवे हर भरे भंडार तोट न आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै।

सूख सहज मेरा धन सुहागा, कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा, आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट करूर, बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई रहाव, पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ भवे सब तरना, से उबरे जे

वहां पकड़ हम राखा आशा मोहल्ला पंजवा सर्व दुख जब बिसरह स्वामी इहां उहां कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्र है मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक तिस ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले हे तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जां की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। रहाओ जां का दान न खूटै नाही, पली भांत सब सहज समाही, जां की बख्श न मेटै कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जां कै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निरभउ पद पाईऐ, सास सास सो गुण निद गाईऐ, दूर ना होई कतहूं जाईऐ, नदर करे ता हर हर पाईऐ, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगै हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुर पूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी

गुरबाणी सखी आनंद गावै साचे साहिब कै मन भावै वदी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली मन चिंदिया सत

मेरा जियो पिंड सब तिसदा सब किश है तेरा मान न माने तू धनी तेरा परवासा बिन साचे अन टेक है सो जान हो काचा रहाउ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए जिस गुर पूरा भेट सी सो चले रजाए चतुराई सियाणपा कितै काम न आई है टुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाई है जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंधा आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया हर जीवड़ ना कोई गुर पुठे ते पाई है सच साहिब सोई बलिहारी गुर अपने सद सद कुर्बाना नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो कीजै दाना रहाउ भागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर सो छूटै महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कहां गुर विवेक सत सर ओहो आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेश्वर नाम त्याव हो सद सदा हर हर मन रंगे।

सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैण पसंदो सोए पेख मस्ताक भई मैं

पंजवा लाख भगत आराध्य है जप ते पियो पियो कवन जुगत मलावो निर्गुण बिखे जियो तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी श्रेष्ट सब रहाओ सदा सहाई संत पेख है सदा हजूर नाम बिहू नड़िया से मरन वसूर वसूर दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण विसरिया जिन्ना नाम तनाड़ा हाल कौन जैसे पास हरियाओ

संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाउ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोए सर्व रहया परपूर सच्चा।

आकर तू ही प्रभ ता केवड भागा ओहो सहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा करन करावन सगल बिद

आओ कर तो निद हर पावो सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसह सिंगारे नानका तिस सुख बसेरा आसा मोहल्ला पंजवा संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी सगल गुणा गुण उत्तमो भरता दूर ना पेखरी एहो मन सुंदर अपना हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ भरता कह सुमानी है एहो शिंगार बनाएरी दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाएरी गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाएरी आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर रायरी तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री।

तौ लो जो मन के भरमा भ्रम काटे गुरे अपने पाए विश्रामा हुए बिखादी दुखिया ए गुरते हुटे हम छूटे अब उनाते हुए हम ते छूटे रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमै बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाव ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाव बलिहारी गुरे अपने सद सद बल जाओ गुरु विटो हों वारिया जिस मिल सच सुआओ रहाओ सगुन अप सगुन तिस को लगे है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ भावे पुन दान जप तप जेते।

सर्व सुख पावं आज्ञा पावं के ना पावं एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हौ मांगो आनल जावो सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ उठो बैसो रह पीना साको दर्शन खोज खजावो ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुलपावो अगम अगम अगाद बोध कीमत परे ना पावो ताकि शरण सत पुरख की सत गुर पुरख त्यावो भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आवो।

मार्ग पंथ सुमारी नाम दृढ़ गुरमन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभु पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवा जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समग्री सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की

गंधण वहन सुन है उर्जावह नाम लैत अलकाया निंद चिंद को बहुत अमाहयो बूजी उल्टाया पारतान पारतान पारती निंदा अखाद खाहे हरकाया साच तर्म स्यो रुच नहीं आवे सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हर नाया नानक आहे शरण प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाई मोह माया कर बांधे जह जानो सो चीत ना आवे अहम बुद्ध भय आंदे मन बैरागी क्यों ना अरादे काच कोठरी माहे तू बसता संग सगल बिखे।

कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मोहत रंग मान है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ। पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तू मर। जैसा संग बिसियर स्यो है रे, तैसो ही एहो परग्रहो। बैरी कारण पाप करता, बस्त रही अमाना। छोड़ जाहे तिन ही स्यो संगी, साजन स्यो बैराना। सगल संसार एह बिद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा। कहो नानक पाव सागर तरेओ, पये पनीत शरीरा। आसा महला पंजवा दोपदे, लूक कमानो सोई तुम पेखेओ। मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांदे। फिर पाछे पछतानी, प्रभ मेरे सब बिद आगै जानी। भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी रहाओ। जित जित लाए तित तित लागे।

मैं रहाऊ। तिस सेवक कै हो बलिहारी, जो अपने प्रभु भावे तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसन आवे, आसा घर ग्यारवा महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावे बहु बिद। जैसा है ओह तैसारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम पीतर। सुख नाही परवेश सारी, साजन संत हमारे लीता। बिन हर हर अनीतारी, साध संग मिल हर गुण गाई। एहो जन्म पदार

कहां के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंच हो ही मोहे शलीरे जिन मिल मारे।

मोहकम फौज हथलीरे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चलीरे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर ना

हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमुख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे।

जालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियान।

नानक जपिया मिल साध संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रब के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता सरन राखण जोग मेरे मन त्याए हर हर नाम हलत पलत सहाए संगे एक स्यों लिवलाओ रहाओ वेद शास्त्र जन त्या

नाम चराव हो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन मह राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरा हृदय होए सहाई आप।

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यो त्यो रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मजन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रवतारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कलयुग उधारिया

तू आप करता सब श्रेष्ठ धरता सब मह रहया समाय धर्म राजा बिस्माद हुआ सब पई पैरी आय सतयुग त्रेता द्वापर भणिए कल युग उत्तम जुगा माहे एह कर करे सो एह कर पा।

उस्ताद सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पनीत संगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उधारे कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे कमन उपमा देओ कमन वडाई नानक खिन खिन वारे आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरी मिले प्रेम पिरी आसा महला पंजवा।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवै पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावै लोभ बिखया बिखै लागे हर वित चित दुखाही

निपट बाजी हार मूका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेख ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन मैदान पाए सब

प्रभ त्यावो भ्रम पीत जीत मटावो निद नाम नानक मोरे आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल का।

पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवां हरख सोग बैराग आनंदी खेल रीद खायो रहाओ खिनहु भय निरभय खिनहु खिनहु उठ तायो खिनहु रस भोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु योग ताप बहु पूजा खिनहु परमायो खिनहु कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो।

ना रहा अनन उपाव कर हां तौ निकसै सरन पैरी सखी थेर थेर चित थेर हां बन ग्रहो समसर हां अंतर

जग ज्ञानी विरला आचारी जग पंडित विरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिर अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोई।

को रोवै दुख कोई, सो रोवै जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौ बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना, निरपहु आप निर

0: भ्रांत
1: सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुरपूरा गुरमान मन

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी।

ससोग अमृत ज्ञान महारास भोग पंच समाई सुखी सब लोग सगली जोत तेरा सब कोई आपे जोड़ बछोड़े सोई आपे करता करे सो होई ताहे उसारे हुक्म सुमावे हुक्मों वरतै जोत सुभावै गुर

या लह संधान जिस कायन तन सहज ना जाना परम पुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे से वड भागे।

कहावह बीते बिन नावै मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम त्रिपतासे खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लभ लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन धीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन महल ना पछाणे निरंकार मह आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सो नर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाऊं गुर प्रसादी कर्म कमाऊं नामे राता हर गुण गाऊं गुर सेवा ते आप पछाता अमृत नाम वस्या सुखदाता।

ग्रास इकत थाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्मचीन भय निरंकारी इहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भाओ धुन होई अहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब आद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन

सखाई अहलस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर नाम ना छोड़ो। आपे बख्श मलावन हारा रहाऊ कनक कामनी हेत गवारा।

तू आप भलावहि नाम विसार, तू आपे राखहि कृपा धार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जपहि जप दूजा। आदि पुरख गुर दर्शना देखहि, बिन गुर शब्द जन्म के लेखहि। देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जां की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की

दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भये हर रंग, आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने।

साहा संचहे धन जाय बिन हर भगत ना पवी थाय बंधन भेद बाद अहंकार बंधन बिन सह मोह विकार नानक राम नाम सरनाई सतगुर राखे बंध ना पाई राग आसा महला पहला अष्टपदिया।

भाणे होवे किस थै जाए रुआईए हुक्मी हुक्म चलाए बिगसै नानक लिखिया पाईए एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा काफी महला पहला कर अठवां अष्टपदियां।

धनी साचा मुख नाम रहाउ सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांग है रिद्ध सिद्ध मैं एक नाम ना विसरै साचे गुरु बुद्ध जोगी भोगी कापड़ी क्या।

जाननी काट ब्रह्म लुकाना। एक तपसी बन मह तप कर है नित तीरथ वासा, आप ना चीन है तामसी काहे भये उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे है, बिन गुर शब्द ना छूट ही भ्रम आवे है जावे है। एक गिरी सेवक साधका गुरमती लागे, नाम दान इशनान दृढ़ हर भगत सो जागे।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसे हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूसो हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सहल है

बख्शनहार शब्द कमावही। नानक मंगै सच गुरमुख कालिया, मैं तुझ बिन अवर ना कोई नदर निहाली है। आसा मोहल्ला पहला, क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं घर बन हरियावला सच टिकै घर आए।

मटिया मन मुख पत खोई रहाउ। जिन्नी ए को सेवया पूरी मत पाई आद जगाद निरंजना जन हर सरनाई। साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई

वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मनमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए बिन हर नाम ना छूट सी मर नरक समाए जन्म मर परमाई है हर नाम ना लेवे ताकि कीमत ना पवे बिन गुर की सेवे जे ही सेव कराई है करनी पी साई आप करे किसे आकी है वेखे वडे आई गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए नानक सिर दे छूटी है दरगाह पत पाए आसा महला पहला रूड़ो ठाकुर माहरो रूड़ी गुरबाणी वड्डे भाग सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी मैं उल गया उल गी हम छोरू थारी ज्यो त्यों राख त्यों रहा मुख नाम हमारी रहाओ दर्शन की प्यासा कणी भाणे मन पाईए मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया भाणे पत पाईए साचो दूर ना जानिए अंतर है सोई जह देखा तह रव रहे किन कीमत होई आप करे आपे हरे वेखे वड्याई गुरमुख होए निहाली है इयों कीमत पाई जीवंदियां लाहा मिले गुरकार कमावे पूर्व होवे लिखिया तां सतगुर पावे मनमुख तोटा नित है परम है परमाए मनमुख अंध ना चेतई क्यों दर्शन पाई तां जग आया जानिए साचे लिव लाई गुर भेटे पारस पहे ज्योति ज्योत मलाए एनस रह निरालमो कार तुरकी करनी नानक नाम संतोखिया राते हर चरणी आसा महला पहला केता आखण आखी है ताके अंत ना जाना मैं धरिया धर एक तू मैं तान सताना नानक की अरदास है सच नाम सुहेला आप गया सूजी पई गुर शब्दी मेला रहाओ हों मैं गर्भ गवाई है पाईए विचार साहिब सिउ मन मानिया दे साच आधार अहनस नाम संतोखिया सेवा सच साई तां को बिघन ना लाग गई चालै हुक्म रजाई जो चलै सो पवे खजाने खोटे ठवर ना पाएनी रले जूठाने नित नित खरा संभाली है सच सौदा पाई है खोटे नदर ना आमनी ले अगन जलाई है जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिन्नी चाखिया सच रहे अगाई तिन्ना परम ना भेद है हर रसन रसाई।

नाम अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम वरारे नानक नाम ना विसरे पूरा गुर तारी आसा महला तीजा अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सात वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी तां के चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण अधारी ताके रूप न जाही लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोग ही अंतर चारी तेरिया खानी कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी।

कराई आपे गुरमुख नाम वसाई आप भलावे आप मार्ग पाई सच्चा शब्द सच समाई सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख जुग जुग आख वखाणी मनमुख मोहे परम पुलाणी बिन नावे सब फिरे बहु राणी तीन भवन मह एका माया मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा भाओ दृढ़ाया बहु कर्म कमावे दुख सवाया सतगुर सेव सदा सुख पाया अमृत मीठा शब्द वीच

जप पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िए होमे मार, हर जपिए पहे सच प्यार। नानक नाम गुरमत उरतार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा महला तीजा, अष्टपदियां घर अठवां काफी। गुर ते शांति उपजै जिन तृष्णा अग्न बुझाई, गुर ते नाम पाई वड्डी वडियाई। एको नाम चेत मेरे भाई,

घर घर पाया, भगती भरे भंडारा, गुरमुख नाम त्याई है, बूझे विचारा, गुरमुख भगत सलाहा है, अंतर शब्द अपारा, गुरमुख सुख उपजे, दुख कदे ना होई, गुरमुख हम मैं मारी है, मन निर्मल होई, सतगुर मिले है आप गया, त्रे पवन सो जी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही, ज्योति ज्योत मलाई, पूरा गुर समझाया, मति उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए, नामे सुख होई, पूरा सतगुर ता मिले, जा नदर करे, किलविक पाप सब कटी है, फेर दुख बिघन ना होई, अपने हाथ वडियाईया।

सुन मन मन वसाए तू आपे आए मिलै मेरे भाई अन दिन सच्ची भगत कर सच्चै चित लाई एको नाम त्याए तू सुख पाव है मेरे भाई हों मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाउ इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे विण सतगुर पाई ना जाए पंडित पढ़ दे जोत की तिन बूझ ना पाए आपै थै सब रखियोन किछ कहण ना जाई आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई जी जंत सब तिस दे सबना का सोई मंदा किसनो आखी है जे दूजा होई इको हुक्म वर्तदा एका सिर कारा आप भवाली दितियन अंतर लोभ बकारा एक आपे गुरमुख कीतियन बूझन विचारा भगत पियो नानो बख्शियन अंतर भंडारा ज्ञानिया नो सब सच है सच सोजी होई कोई भलाए किसे दे ना भुलनी सच जानन सोई कर्म है पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वास

बाहर किश नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक होए सो ले पाए रतन विचारा अंदर खोले दिब दिष्ट देखे मुक्त भंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा मन चिंदिया पल पाए से फिर हुए ना फेरा पारखियां वत संभाल ले गुर सोजी होई नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई चोरै वांगू पकड़ी बिन नावे चोटा खाई जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई आपे दान करे किसे आखी है आपे दे बुझाई नानक ना

नानिवह दूजा भाउ सुआउ इहो मनुआ क्यों कर वासे आवै गुर प्रसादी ठाकिया ज्ञान मती घर आवै रहाउ सुहागनी आप सुआरियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दिया नामे सहज सिंगार सदा रावह फिर अपना सच्ची सेज सुपाय फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाई ज्ञान अपार सिंगार है सुभावंती नार सा सब रहाई सुंदरी फिर कै हित प्यार सुहागनी विच रंग रखियों सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सुहागनी सिंगार बनाया गुण का गलहार प्रेम फिरमल तन लावना अंतर रतन विचार भगत रते से उत्मा जत पत शब्दे होय बिन नावे सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा होय हों हों कर दी सब फिरे बिन शब्द हों ना जाय नानक नाम रते तिन हों मैं गई।

दे आगे जुग जुग प्रगट होए ए मन रूढ़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूढ़ी बाणी जे रपे ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल जोत अपार बिन गुर कोए ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कह पै पाए जो रते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावनी झूठे ठाओ ना कोई जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए पूरे गुर ते सत संगत उपजे सहजे सच सुभाए बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

एक है बहुविध श्रिष्ट उपाय हुक्मी कार कराएंदा दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया ए तेरी सिरकार एक ना बख्शे मेल लह एक दरगाह मार कडे कूड़ियार एक तुर पवित पावन है तुद ना मेलाए गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चे शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर है उतवताए नदर करे जिस अपनी तिस नु भावनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाए गुरते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए इहो मन देही सोध तू गुर शब्द भी

रहाओ। एक पिर हदूर ना जाननी, दूजे भरम भलाए, क्यों पाए निडोहागनी, दुखी रहन विहाए। जिनकै मन सच वसिया, सच्ची कार कमाए, हन दिन सेव है सहज स्यों, सच्चे माहे समाए। दुहागनी भरम भलाइया,

शब्द रहिया भरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह फिरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाई शब्द हमें मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

भगत निराली अल्लाह दी जापै गुर विचार नानक नाम हिरदै वसै पै भगती नाम सवार। आसा मोहल्ला तीजा अनरस मह भुलाया बिन नामै दुख पाई सतगुरु पुरख ना भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाई। ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाई अनरस लागा तू फिरह बिरथा जन्म गवाई। रहाओ इस युग में गुरमुख निर्मली सच नाम रह लिवलाई। बिन कर्मा किश पाइय नाही क्या कर कहया जाई। आप पछाण है शब्द मर है मनहु ताज विकार गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार। बिन नामे सुख ना पाइए ना दुख विचों जाई। इहो जग माया मोहे व्यापिया दूजे भरम भुलाए। दुहागनी पिर की सार ना जानही क्या कर करहे श्रृंगार। पन दिन सदा जलदियां फिरह सेजै रवै ना पतार। सुहागनी महल पाया विचों आप गवाए गुर शब्दी सिंगारियां अपनी सह लईयां मलाई। मरना मनहु विसारिया माया मोह गुबार मनमुख मर मर जम है पी मर है जमदर होए खुआर। आप मलाइन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाणे मुख उजली तित सच्चै दरबार। आसा महला पंजवा अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गुआए इन बिद नगर बुठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई। रहाव साच धर्म की कर दीनी वार हरहे मुहकम गुरु।

सहज सुख के सब हाट, साहा व्यापारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साहु सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव। असावरी महला पंजवां घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत, निर्मल साची रीत, रहाउ दर्शन की प्यास घणी, चितवत अनक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म, हर कृपा धार मरार, मन परदेसी आया, मिले ओ साध कै

जिस वखर कौ चाहता सो पायो ना मह रंग जेते माया रंग रस बिनस जाहि खिन माहि भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचह सब ठाई सब जग चल तो पेखी है निह चलार को नाम कर मित्राई साध स्यों निह चल पावह ठाऊं मीत साजन सुत।

साथ चरण कमल बोहित पै लग सागर तरयो ते पेत्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद पावे सो भला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद हासा।

पार ब्रह्म प्रभ सिमरिय प्यारी दर्शन कौ बल जाओ जिस सिमरत दुख बिसरह प्यारी सो क्यों तजना जाय एह तन वेखी संत पह प्यारी प्रीतम दे मलाए सुख सिंगार बिख्या के फीके तज छोड़े मेरी माय काम क्रोध लोभ तज गए प्यारी सतगुर चरनी पाय जो जन राते राम स्यो प्यारी अनत ना काहू जाय हर रस जिन्नी चाखिया प्यारी तृप्त रहे आगाय अंचल गहया साध का नानक पै सागर पार पराय जन्म मरण दुख कटिया प्यारी

सत्सै सोए श्रेष्ठ जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिन का लागा आया तिनका सफल भया।

जलिया जमराज के ही रूह आए माया के संगल बंध लया खखे खुंदकार साहा आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधया अवरी का नहीं हुक्म पया गगे गोए गाए जिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कड़ भांडे जिन आवी साजी चाड़न वाहे तई किया कगे काल सेवक जे काल है शब्द गुरु कै लाग रह बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रह चचे चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम अपाए फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जजे जान मंगत जन जाचे लख चौरासी भीख पविया एको लेवे एको देवे अवर न दूजा मैं सुनिया छजे चूर मरहो क्या प्राणी जो किस देना सो दे रहे आ दे दे वेखे हुक्म चलाए।

सब थाई एक वसिया मन माही तत्तै तंच करहु क्या प्राणी घड़ी के मोहत के उठ चलना जूए जन्म ना हारो अपना भाज पढ़ो तुम हर सरना ठठै ठांड वरती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा से जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डै डंप करहु क्या प्राणी जो किश हुआ सो सब चलना तिसै सरे वो तां सुख पावहु सर्व निरंतर राव रहया तड्डै ताहे उसारे आपे ज्यों तिस पावै तिवें करे कर कर वेखै हुक्म चिल्लाए तिस निस्तारी जां कौ नदर करी नाणै रवत रहै घट अंतर हर गुण गावै सोई आपे आप मलाए करता पुनरप जन्म ना हुई तत्तै तारू भवजन होआ ताका अंत ना पाया ना तर ना तुल्हा हम बूडस तार ले तार नराया थत्थै थान थनंतर सोई जाका किया सब हुआ क्या परम क्या माया कही है जो तिस पावे सोई भला दद्दै दोष ना देऊ किसे दोष करमा आपणिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजै अवर जना तद्दै धार कला जिन छोड़ी हर चीजी जिन रंग किया तिसदा दिया सबनी लिया करमी करमी हुक्म पया नन्ने नाहा भोग नित भोगै ना दीठा ना सम्मलिया गली हों सुहागण पैणे कंत ना कबहू मैं मिलिया पप्पै पातशाह परमेश्वर वेखण कौ परपंच किया देखै बूझै सब किछ जाणै अंतर बाहर रव रहया फप्पै फाही सब जग फासा जम कै संगल बंद लया गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर शरणागत भज पया बब्बै बाजी खेलण लागा चौपड़ कीते चार जुगा जी जंत सब सारी कीते पासा ढालने आप लगा पब्बै पाल है से फल पाव है गुर प्रसादी जिन को पौ पया मनमुख फिर है ना चेत है मूड़े लाख चौरासी फेर पया मम्मै मोह मरण मधुसूदन मरण पया तब चेतव्या काया पीतर अवरो पड़या मम्मा अखर विसरिया यही जन्म ना होवी कद ही जे कर सच पछाण गुरमुख आखै गुरमुख बूजै गुरमुख एको जाणै रारे राव रहया सब अंतर जेते किए जनता जंत अपाई तंदै सब लाई कर्म हुआ तिन नाम लया लल्लै लाई तंदै जिन छोड़ी मीठा माया मोह किया खाना पीना सम कर सहना पाणे तां कै हुक्म पया ववै वास देओ परमेश्वर वेखण कहो जिन वेस किया वेखै चाखै सब किछ जाणै अंतर बाहर रव रहया राड़ै राड़ करह क्या प्राणी तिसह त्यावो जे अमर होवा तिसह त्यावो सच समावो ओस विटोह कुर्बान किया हाहै होर न कोई दाता जी उपाय जिन रिजक दिया हर नाम त्यावो हर

कराई सब किश जाने नानक शायर इव कहिया राग आसा महला तीजा पट्टी एक ओंकार सतगुर प्रसाद अयो अंग सब जग आया काके कंग काल पया रीरी लल्ली पाप कमाने पर अवगण गुण विसरिया मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया लेखा देना तेरे सिर रहिया रहाउ सिदंगा सिमरह नाही नन्ने ना तुद नाम लया सस्से सीजह अहन समूड़े क्यों छूटह जम पाकड़िया बब्बे बूजह नाही मूड़े परम भुले तेरा जन्म गया अनहोंदा ना उतरायो पांदा अवरा का भार तुद लया जजे जोत हिर लई तेरी मूड़े अंत गया पछतावहगा एक शब्द तू चीनह नाही फिर जूनी आवहगा तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरा नो ना सखाल बिखिया पहला फाहा पया पांदी पिछों दे गल चाटड़िया सस्से संयम गयो मूड़ी एक दान तुद कथाई लया साई पुत्री जजमान की सा तेरी एत धान खादै तेरा जन्म गया मम्मै मात हिर लई तेरी मूड़े हों मैं वड्डा रूप पया अंतर आत्मै ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज पया ककै काम क्रोध भरम्यो हों मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़ है गुण है तू बहुत पुकार है विन बूजे तू डूब मुआ तत्ते तामस जले ओहो मूड़े थत्ते थान पृष्ट होआ कग्गे कर कर फिर है तू मूड़े दद्दे दान ना तुद लया पप्पे पार ना पवे ही मूड़े पर पंच तू पलच रहया सच्चे आप खवायो हो मूड़े एहो सिर तेरे लेख पया पब्बे पवजल डुबो हो मूड़े माया विच गलतान पया गुरप्रसादी एको जाने एक घड़ी मैं पार पया वावे वारी आईया मूड़े वास देव तुद भी सरिया ए वेला ना लह सह मूड़े फिर तू जम कै वस पया झज्जै कदे ना झूरह मूड़े सतगुर काप देस सुन तू विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई न गुरे का है नाउ बुरा तद्दै तावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निदान पया गुरमुख हो वह ता हर रस पी वह जुगा जुगंतर खाही पया गग्गै गोविंद चित कर मूड़े गली किने ना पाया गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े पिछले गुनहा सब बख्श लया हा है हर कथा बूझ तू मूड़े ता सदा सुख होई मनमुख पढ़े तीता दुख लागे बिन सतगुर मुक्त ना हुई हरारे राम चित कर।

वाद पुरुष अपरम्परु तारीनाम अग्मय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानु आद जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानु कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुक्त क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाण अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हम मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे सत्यारू आवन जावन थाक रहाए गुरमुख तत विचारू साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन पर गासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रती बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हों मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला शंत घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सबनी थाई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारन हार जियो दुख बसारन हार स्वामी कीता जाका होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे बीचार जियो तू सबनी ताई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जियो ते कबहू ना हार है हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावै गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर तार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोहो कुर्बान जियो ताकी सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाईए मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै काली जै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हौ तिसै बिटोहो कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जियो इन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल तोट ना आवै तिन जरा ना मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करह से सुकह नाही नानक पीड़ ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै।

तुम करहु ता फिर सह खुशी न आवे। भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहिला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुक्म पछाने। जिन हुक्म पछाता हरी केरा सोई।

का शब्द संभाले, साथ तेरे सो सहु सदा है, एक खिन हर नाम संभाले, जन्म जन्म के तेरे पाप कटे, अंत परम पद पावे, साचे नाल तेरा गंड लागे, गुरमुख सदा संभाले, यूं कह नानक जह मन तू धामदा, तह हर तेरे सदा नाली, सतगुर मिले तावत थमिया, निज कर वस्या।

धुनि उपजै जित शब्द जगत थम रहाया तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहया समाए यों कह नानक सतगुर मिले है तावत थमिया निज

ना सहो जान है। मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जान है। ता दूजा भाव ना होई, मन शांत आई बजी बधाई।

गर्भ लदया जावे मन तू मत मान करह जे हों किछ जानदा गुरमुख ने माणा हो अंतर अज्ञान हों बुद्ध है सच शब्द मल खो हो नमाणा सतगुरु अगे मत किसे आप लखावे अपने हंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे सतगुर कै भाणे करहें कार सतगुर कै भाणे लाग रहो यूं कह नानक आप छड सुख पावे मन निमाणा होए रहो धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सहो चित आया महा आनंद सहज भया मन तन सुख पाया सो सहो चित आया मन वसाया अवगण सब वसारी जां तिस भाणा गुण प्रगट होए सतगुर आप सवारी से जन प्रवान होए जिन्नी एक नाम दिड़िया दुतिया भाउ चुकाया यूं कह नानक धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सहो चित आया एक जंत परम भुले तिन सह आप भुलाए दूजे पाए फिर हैं हम मैं कर्म कमाए तिन सह आप भुलाए

कथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जीवनो मैं जीवन पाया गुरमुख पाए राम हर नामो हर नाम देवे मेरे प्राण वसाए राम हर हर नाम मेरे प्राण वसाए सब संसार दुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाजे है नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दाता ज्योति ज्योत समाणी मन मुखा मन मुख मुए मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़े चित लागा ज्यों रंग कसुंब दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम शाए ज्यों चक कुम्हार पवाया दुख खावे हैं दुख संचे हैं भोगे हैं दुख की बिरद वधाई नानक बिकम सहेला।

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवह लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोल करतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक।

सिद्ध कार्य सब सोहाए राम, रोमे रोम रोम रोमे, मैं गुरमुख राम त्याए राम, राम नाम त्याए पवे।

गवाई। मन तन शीतल शिंगार सब हुआ, गुरमत राम परगासा। नानक आप अनुग्रह किया, हम दासन दासन दासा। जिन्नी रामो राम नाम वसारिया, ते मन मुख मूड अपागी राम। किन अंतरे मोह व्यापै, खिन खिन माया लागी राम। माया मल लागी मूड पय अपागी, जिन राम नाम नह पाया। अनेक कर्म करह अभमानी, हर रामो नाम चुराया। महाबिखम जम पंथ दुहेला, कलू खत्म हो अंधियारा। नानक गुरमुख नाम त्याया, ता पाए मोख द्वारा। रामो राम नाम गुरु, राम गुरमुखे जाने राम। एहु मनुआ खिन ऊब पयाली, परम दा इकत कर आणै राम। मन इकत कर आणै, सब गत मित जाने।

तमो रमय उच्चा गुण कहत्या अंत ना पाया। नानक राम नाम सुन पीने रामै नाम सुमाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया। राम सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया। राम मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया। राम नाम गुण गाई दुर्मत कुबुद गई सुध हुई। राम नाम मन लाई सफल जन्म शरीर सब हुआ। जित राम नाम परगासिया नानक हर पज सदा दिन राती। गुरमुख निज घर वासिया जिन शरदा राम नाम लगी तिन दूजे चेतना लाया। राम जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नाम है अवर ना पाया। राम राम नाम मन पाया परम सुख पाया।

सते सत गुरमुख जानिया राम। सेव को गुर सेवा लागा, जिन मन तन अर्प चढ़ाया राम। मन तन अर्पया बहुत मन सरदया, गुर सेवक पाए मलाए।

हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया, से धन वड्डे सत पुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगै पग साधु,

गुरमुख हुई अंतर बाहर हर प्रवेक को दूजा अवर ना कोई हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई हर दरगाह पावे मान जियो सत जुग सब संतोख सरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो एता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए दियो पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया मन हिरदय क्रोध जलाए दियो मन हिरदय क्रोध महा बिसलोद निरपता वह लड़ दुख पाया अंतर ममता रोग लगाना हों मैं अहंकार वधाया हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो एता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जी।

हैं जग पुन आरंभ है। अत किरिया कर्म कमाए दियो, किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिकै टकाए दियो। महाजुद्ध जोद बहु कीने, विच हों मैं पचै पचाए दियो। दीन दयाल गुर साध मलाया, मिल सतगुर मल लह जाए दियो। जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाय दियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए दियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए दियो। हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कल युग बीज बीजे बिन नावै, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए जियो। आसा महला चौथा, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया। तुर मस्तक भाग प्राण जियो, तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग। हर नामे हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी। हर नामे हर सुहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया। मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रदान जियो, तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोवै है। जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रती चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई। विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया। बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रस नरसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कड ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ पाथे निगृहत हम जाते।

को होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरन लखाया गुरमुख सुहाया जन उभरे हर हर ध्यान।

अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू घट कट अंतर सर्व निरंतर, सब में रहया समाए जियो, घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर, ताका अंत न पाया, तिस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर, गुरमुख अलख लखाया, सदा आनंद रहै दिन राती, सहजे नाम समाए जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो, हर हर प्रभ एको अवर न कोई, तू आपे पुरख सुजान जियो, पुरख सुजान तू प्रधान, तुद जेवड़े अवर ना कोई, तेरा शब्द सब तू है वरत है, तू आपे करह सो होई, हर सब मह रव्या एको सोई, गुरमुख लखिया हर नाम जियो, तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो,

सब शब्द समावे जां तुद पावे तेरा शब्द वडियाई गुरमुख बुद्ध पाईए आप गवाईए शब्दे रहिया समाई तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईए नानक नाम समाए जियो सब तू है करता सब तेरी वडियाई ज्यों पावे तिवें चलाए जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा।

मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पेरा मुकी सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजी हों मांगू सरन हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वच्छल हर बिरद है।

मेरा सतगुरु सोथान सोहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिखा की काल ताई पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की,

जन नानक हर हर होया, हर हर मन उठा, आसा महला चौथा, जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु।

हर जुग जुग भगते अपाया, पैज रख दाया राम राजी, हर नाखश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया अहं

प्यारे मन तृष्णा ना बुझि मेरे प्यारे नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे जम सास हिरे भाग मणि सुहागण मेरे प्यारे नानक हर पुर धारे फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे चात्रक बूंद जिवें मन

हर बिन प्रेम ना खेल सा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देख सा हर दातड़े मेल गुरु मो

भया गृहवासे आया मंगल गाया पांच दुष्ट ओए भाग गया शीतल आघाणे अमृत बाणी साजन संत बसीठा कहो नानक हर सियो मन मानिया।

सब किस मैं सब किस पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे

सरसियड़े मेरे भाई सब मीता राम, बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम। गुरमिल जीता हर हर कीता, टूटी पीता भरम गड़ा, पाया खजाना बहुत नदाना, साणथ मेरी आप खड़ा, सोई सुगयाना सो परदाना, जो प्रभ

अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम। सुर नर मुन जन सहज वखाणी राम। सहजे वखाणी अम्यों बाणी चरण कमल रंग लाया। जप एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया।

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाथे दूक संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागे आप।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम। वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम। सद बलिहारे करनम शिकारी जिन भेटत प्रभ जाता। घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता। गुरपुरा पाया नाम ते आया जूए जन्म न हारे। बिनवंत नानक सरन तेरी राख किरपा धारे। बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम। तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम। हर धूड़ी नाइय मैल गवाइय जन्म मरण दुख लाथे। अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे। मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा। बिनवंत नानक गुर सरन तरिय अपने प्रभ पावा। आसा संत महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर चरण कमल मन बेदया किशियान न मीठा राम राजे। मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजे। हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे। गुण निद गाया सब दुख मटाया हम मैं बिनसी गांठे। प्रियो

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अदारा राम राजे मालक जीना।

की जय। आसा महला पंजवा सलोक, बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब हर पाया मन माही। संत जां को खोजह असंख मुनि अनेक तपे। ब्रह्मे कोट अराधह ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संयम क्रिया पूजा अनक सोधन बंदना। कर गवन बसदा तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझ है आराधते। दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट बिसन अवतार शंकर जटा धार। चाह है तुझ दयार मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ धनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेव है लक्ष्मी अनक पांत। गुप्त प्रगट जाको राध है पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्याव है वसुद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद खट शास्त्र जा को जपात। पतत पावन भगत वचल नानक मिली है संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी। अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर सगल मंजे बाहरा। सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा। बस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी। एहो दान मान नानक पाए सीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवा सलोक, उदम करहो वडभागी हो। सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवे है। दुख दर्द भ्रम जाए। संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। भेटत साधु संग जमपुर नह जाई है। दुख दर्द ना पौ ब्यापे नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना। परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन। जल पल मही अल पूरिया एक निमख जा कैर दैवसिया। मिटे तिसैव सूरिया अगाध बोध समरथ स्वामी। सर्ब का पो भंजना नानक पयंपै चरण जंपै। पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी पतत उधरन हर हरे। सागर संसार पाव उतार नाम सिमरत बहुतरे। आद अंत बेअंत खोजें।

आवे अवनासी अवगत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावे नानक वखाणे गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सानार सोभा पूर्बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुर बचन जाने जा को राम पतार ताकै आनंद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताज आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

तपास सेवा लागी है, जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया, साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहु ना तामू शरण पावो, करना मैं प्रभ करमया। समर्थ अगत अपार निर्मल, सुनो स्वामी बिनो एहो,

हल्ला पंजवा पुरख पते भगवान ता की शरण गही निरपो भये प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरमलाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप भये राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रही अग्न सागर भये शीतल साध अंचल गह रही गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याए पूर्ण साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरलै किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त समानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निध जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अनदिन सिमरंत नानक हर हरे आसा महला पंजवा शंत कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत संत इन्नी रैनड़ी है चाम कन तारी जाग है संत जना मेरे राम प्यारे सदा जाग है नाम सिमर है अन दिनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो तज मान मोह बिकार मन का कलमला दुख जारी बिनवंत नानक सदा जाग है हर दास संत प्यारी मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुख हगामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री तार सगल आनंद रस बनिया मिल सखिया पुछ है कहो कंत नीचाणी रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे भगत पाए त्याए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सुगयान पूरन अपने प्रभ भामी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाणी सुख सोहिलड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते प्रभ आप कृपा धारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन तागे आसा महला पंजवा उठ मंज वटाउड़िया तैं क्या चिर लाया मुहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करहें पाप अमित्या
तन पसम टेरी जम है हेरी, काल बपड़ै जितया माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया नानक कमाना संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया हाथ हो मिर्ग जिवें, पेख रहन चंद्रायन सुख हो दुख पए नित पाप कमायन, पापा कमाने छड़ह नाही लै चले कत गलावया, हर चंदौरी देख मूठा कूड़ सेजा रावया, लब लोभ अहंकार माता गर्भ भया समायन, नानक मृग अज्ञान बिनसे नह मिटै आवन जायन, मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी, हस्ती गर्त पया क्यों तरियै तारी, तरण देहला पया खिन मह खसम चेतना आयु, दुखा सजाई गणत नाही किया अपना पायु, गुजा कमाना प्रगट होवा ईत उतह खुआरी, नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी, हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी, कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी, बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया, साध संगत आप हुआ आप जगत तराया, राख लिए रखण हारे सदा निर्मल करनी, नानक नरक ना जाहे कबहू, हर संत हर की सरनी।

धर्म करे दूत भय पलायन। धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनग्रहो राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायन। विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायन। निध सिद चरण गहे ताके हा काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा। गह पुजा लीने नाम दीने कर धार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापै हमें हर रस चाखिया।

पाद कमला भ्रम पीत कमला भ्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारत जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो गात।

नानक मगन होत अलियल गुंजात, अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास, चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजाले वो नाम देव हो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जंपै पतत पावन हर दर्श पे।

करत न लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ है हजार एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सोचेत

विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेद वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

मन भाऊ पौड़ी ना तेरा निरंकार है ना ही लय नरक ना जाई है जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गवाई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई है जे जरवाना पर हर है जर वेस करेंदी आई है को रह ना परिये पाईये सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरयत

समाव है अर्चा पूजा अगर वास बहकार। जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूर्त नाम निरंजन।

किया चिंता पे करनीताह सो करता चिंता करे जिन्यो पाया जग तिस जो हारी स्वास्थ तिस तिस दे बान अपहग।

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिलिया सच पाया, जिन कै हिरदै

मल उतरै तन करे हच्छा तोय। सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार, नाउ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार।

निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है।

खसम ते आया इना जनता कै बस किश नाही उद वेकी जग ते उपाया इक नानू तू मेल लै इक आपो तुद खवाया गुर किरपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया। सलोक महला पहला।

ना होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो।

सह साच रहे सबको सच समावे ऋग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर नाए लय परास्त जाहे नानक तौ मुख अंतर पाहे जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन मह रंग किया कल मह वेद अथर बन हुआ नाउ खदाई अल्लुह भया।

वारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रिया सत गुरु है बोहे था विरले किने विचारिया कर किरपा पार उतारिया सलोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मोच हुए जे आव है आस कर जाहे नरासे केत फल फिके फुल बक बके कामना आवे है पत मिठत नीवी नानका गुण चंगे आईया तत सब को निमे आप कहो पर को निमे ना कोई धर ताराजू तोली है निमे सो गौरा होए अपराधी दूना निमे जो हंता मिर्गा शीस नवाए क्या थी है जारिदैक सुधे जाहे महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादम सिल पूजस बगल समाधम मुख झूठ बेपूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गलमाला तिलक लिलाटं दुए धूती बस्तर कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चौ कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै

पौड़ी। साहिब हुए दयाल, कृपा करे ता साई कार कराए सी। सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी। हुक्म मने हुए प्रवान, ता खसमे का महल पाए सी। खसमे भावे सो करे, मनु चिंदिया सो फल पाए सी। ता दरगाह पैंदा जाए सी। श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण कौ कर लावो, गोबर तरण ना जाई। धोती टिक्का तै जप माली, धान मलेच्छा खाई। अंतर पूजा पढ़ै कतेबा, संजम तुरका भाई।

ताग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश पान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याईए सोच होवे तां सच पाईए पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो हो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहु कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहे कर मोहे पितरी दे अग्गे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एह करे नानक अग्गे सो मिले

नानका जिन मन वसया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझण नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया

आज ना कोई पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोय नानक सूतक एव ना उतर है ज्ञान उतारे तोय महला पहला मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रिय पर धन रूप कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला सभो सूतक भरम है।

पहला नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का हुए फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए फिक्का दरगाह सटिए मोहे तुका फिक्के पाए फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावह उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसह रंग रूवह चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह दरवाटे ऊपर खर्च मंगा

कै धारी है, देख कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है, क्यों साहेब मनु विसारी है। अपना हथी अपना, आपे ही काज सवारी है। सलोक महला दूजा, एह कने ही आशकी। दूजे लगे जाए, नानक आशक कांडी है। सद ही रह समाए, चंगा चंगा कर मन्ने। मंदे मंदा होए, आशक इहो ना आखी है। जे लेखे वरतै सोए महला दूजा। सलाम जवाब दोए।

सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाई है अपना, सा काल बुरी क्यों काली है, मंदा मूल ना कीचे ही, दे लम्मी नजर निहाली है, ज्यों साहिब नाल ना हारी है, ते वेहा पासा टाली है, किश लाहे उपर काली है। श्लोक महला दूजा, चाकर लगे चाकरी, नाले गर्भवाद गल्ला करे कड़ेरिया, खसम ना पाए साध, आप गवाए सेवा।

नाल आणी दूसती कदे न आवै रास जिहा जाने ते हो वरतै वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवै नानक सिफत विगास महला दूजा नाल आणी दोस्ती।

आप तिस विच जंत उपायिक दिखै थाप उथाप किसनो कहिए नानका सब किछ आपे।

जियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करहु दया मोहे मार्ग लावहु जित पै बंधन टूटै जन्म मरण दुख फेर कर्म सुख जी जन्म ते छूटै रहाउ माया।

सिद्ध अपियो ना चूके, कही ना उपजे उपजी जाने, भाव अभाव बिहूणा उदय अष्ट की मन बुद्ध नासी, तो सदा सहज लिव लीना, ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा, तो मन सुन समाना, आसा गज साडे तै तै धूतियां, तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हाथ निबग वे हर के संत।

गया न बाजी हारी मुई मेरी माई हों खरा सुखाला पहरों नहीं दगली लगे ना पाला रहाऊ बाल किस बापै जिन्हों जाया।

मेरा मन पाया, हम पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठाहर दोहां बसेरा, कहो कबीर जन एको बूझिया, गुर प्रसाद मैं सब किस सूझिया, आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट, इकत पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी कोठन गन बाडाडू, किन्ह बबेकी काटी तू रहाऊ, सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलियां की हो बहन भाणजी, जिन्हें

हाल आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू न उबरना कहो कबीर इं रामह जंपो मेत जन्म मरना आसा फीलर बाबी बल्द पखावज कौआ ताल भजावे पहर चोलना गदहा नाचे पैसा भगत करावे राजा राम ककरिया बरे पकाए किन बूजन हारे खाए रहाओ।

शंख बजावे वंश को पूत ब्याहन चलिया सोइने मंडप छाए रूप कन्या सुंदर बेदी ससै सिंह गुण गाए।

हासा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाऊ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहुरी काया कर तुई दृष्ट की अगन जलावे।

पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जौरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। हरद शरीर ही नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाद कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकरी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राख कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कह ताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोवो मेरे भाई, सहज बलोवो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

कैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिन ते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपर

खंडस अवगन मेरा रहाउ। जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया। चिंत पवन मन

समझावूं। आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ, दो तुके पंज, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाती तोरै मालनी, पाती पाती जीओ, जिस पाहन को पा

सुनडारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग पुलाना हम

काल पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्द फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

सो कृत कर कर लीजै रे मन रहाओ, कुमारै एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई, काहू मह मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई, सुमह धन राखण को दिया मुग्ध कह धन मेरा, जम का डंड मूंड मह लागै किन मह करै निवेरा, हर जाने उत्तम भगत सदावै आग्या मन सुख पाई, जो तिस भावै सत

कर फीकी। आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरीकी। माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना। कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना। आसा गगन नगर एक

चरण रहे कर धरक परे हैं, मुखो नानक सह बाता थाके पंच दूत सब तस्कर, आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका, तेज सूत धर रमते मृतक भय दसै बंद छूटे, मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै, जीवत बंधन तोरे आसा इक टुके चार, सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा बिशन महादेव छलिया, मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी, जिन त्रे भवन दसियले गुर प्रसाद दीठी, रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो भाई, जिन साच पछाने

चराए, कह डिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुवान सब करे कराया, जो तुर लिखिया।

हे रावण कर खबर ना पाई, क्या मांगू किस थिर ना रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई रहाउ, एक लख पूत सवा लख नाती, तेह रावण कर दिया ना बाती, चंद सूरज जाके तपतर सोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई, गुरमत

पहला पूत पशहरी माई गुरला गो चेले की पाई एक अचंभो सुनो तुम पाई देखत सिंह चरावत गाई रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा ले गई बलाई तले रे बैसा ऊपर सूला तिसके पेड़ लगे फल फूला कोरे चार पैस चरावन।

राम रमत तिस सब किश सूजै बाईस चौपदे तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जियो के तिप दे अठ दो तुके सत एक तुका एक एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद बिंद तेजन पिंड किया अगन कुंड रहाया दस मास माता उदर राखिया बहुर लागी माया प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया पूरब जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया रहा बारक ते बिरद भया होना सो होया जा जम आए चोट पकरै तब है काहे रोया जीव ने की आस करह जम निहार है सासा बाजी गरी संसार कबीरा चेत।

सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट ते तीस उजाना, कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं, पुरख एक भगवाना, आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरों रे, सखी सहेली।

राई माया सद मतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांधिया मैं राम रमत सुख पाया।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे तब

मैं तेरा सोच विचार ना देखै खबर ना करहै दीन के बौरे तां ते जन्म अलेखै रहाउ साचक ते बखानै अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल मह खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पी।

जय ही रा बेद पवन मन सहजे रहे आसमाई सगल जोत इन ही रह बेदी सतगुर बचनी मैं पाई हर की कथा अनाहद बानी हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ कह कबीर हीरा अस देखियो जग मह रहा समाई गुप्त हीरा प्रगट भयो जब गुर गम दिया दिखाई आसा पहली कुरूप कुजात कुलखनी सोहरे पेय बुरी अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर धरी भली सरी मुई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टरियो लोहरी संग पई अब मेरे जेठी और धरियो आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राख्यो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा बिटवह राम।

रहु रहु री बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़े रहाउ। घूंघट काढ़ गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। घूंघट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए कूद।

हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सोकंत नार हम सोई, कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुम्हारी प्रतीत ना होई, आशा कोरी को काहू मर्म ना जाना, सब जग अनत नायो ताना, रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे उताना, तरन आकाश की कर गह बनाई, चांद सूरज दोए साथ चलाई, पाई जोर बात एक कीनी, तह तांती मन माना, जो लाहे घर अपना चीना, घट ही राम पछाना।

जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो राम।

ऐसे ओए नर फिर जोनी आवह मनहु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र।

एक मन सत सहंस जैसी पूत पूत प्रभ सोई रहाव जल तरंग हर फेन बुद बदा जल ते भिन्न न होई एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचर ध्यान न होई मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया कहत नाम देओ हर की रचना।

कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल में होते बीठल पहला काहे करूं। जतर जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हां पूज करूं। पहले बास लई है पवर है बीठल पहला काहे करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काहे करूं। इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं। थान तनंतर नामा प्रणवे पूर रहे हो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती। माप माप काटो जम की फासी कहां करूं जाती कहां करूं पाती।

अपना खसम त्याव सोइने की सुई रुपे का धागा नामे का चित हर स्यों लागा आसा साप कुंच छोड़े भिख नहीं छाडे उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडे काहे को कीजे ध्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर जान।

जन्म दैला गुरु उपदेश पहला संत है कह प्रसाद नामा हर भेटला आसा वाणी श्री रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख बनास पंच दोख असाध जाम है तां की केतक आस माधो अविद्या हितकीन दुबेक दीप मलीन रहाओ त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रा मैया धन रहाओ संपत बिपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधो तेरो जन कह रविदास छूटे बो कवन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुत्रा कैसे नचत है देख देख सुन बोले दौर्यो फिरत है रहाओ जब कश पावे तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसै लुभाना

प्रसाद भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलानी तन मन धन नहीं धीरे लालच बिख काम लुभद राता मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ बिख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार ना जानिया गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया ध्यान मान मन एकमय प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त भये जोत समाए समानी जाके अशली प्रभ पहचानिया तन्ने तन पाया तरनी तर मिल जन संत सं।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीद खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन होसी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आईए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

पीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख हयाती जागना कोई थिर रहया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक पूंजा चेत डौ सावन बिजलियां से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़ियां चले चलन हार बचारा ले मनो गा देंदिया छे माह तोड़ंदिया एक खिनो जिमी पुछै।

प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाव राव सस दीपक जा के त्रे भवन एका जोत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मनमुख रहन अंधार सिद्ध समाध करह नित झगड़ा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागै सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला

आई ऐसा सतगुर सेविए मना जित सेवे हैं गोविंद प्रीत उपजे अवर विसर सब जाय हर सेती चित गहर है जरा का पौ न होवे जीवन पदवी पाए रहाउ गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया ता मन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समई बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाईए जे लोचै सब कोई कूड़ै की पाल विचों निकलै ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे गुर आगै जियो तरे सतगुर का पाणा चित करे सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साक अंत होए सखाई हर बिन होर रास कूड़ी है चलदियां नाल ना जाई हर मेरा धन मेरे साथ चल जहां हूं जाऊं तह जाई सो झूठा जो झूठे लागै

गई। वेखो को व्योपाय बलिहारी गुरे अपने, सद बलिहार जाऊ सतगुर मिले हर मन वसै, सहजे रह समाय रहाऊ जा पहु पाए अपना। बैराग उपजे मन आय, बैरागे ते हर पाईए हर स्यों रह समाय। से मुकत जे मन जिन है फिर तात ना लागे आय, दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाय। नानक गुर ते गुर होया वे।

जिस नर की दुबदा ना जाए, धर्म राये तिस देश जाए, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरमुख बूझे कोई, नानक विचो हउमै मारे, ता हर भेटै सोई, गुजरी महला तीजा, तिस जन शांत सदा मत निश्चल, जिसका अभिमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे, हर चरणी चित लाए, हर चेत अचेत मना, जो इच्छा है सो फल होई, गुर प्रसादी हर रस पाव है, पीवत रह सदा सुख होई, रहाओ सतगुर भेटे ता पार सो होवै।

जो आप ना पछाणे सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा।

सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाउ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्तासह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ सुख साग

आग को अमृत रस पाईए, तृप्त विष्टा खाए मुख गो है, अमृत सर सतगुर सतवादी, जितना तै कौआ हंस हो है, नानक धन तन वड्डे वड भागी,

कथा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड भागी हर नाम

तेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव धीरज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर सिउ चित लावे अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपै लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया ते भागहीन मोए मर जावे आनंद मूल जग जीवन दाता सब जन को आनंद करहो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मलावे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुजरी महला चौथा घर तीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई विचे ग्रिस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाई सो हम करहें जो आप कराई जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई ते जन नानक राम नाम लिवलाई गुजरी महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद काहे रे मन चितवह उदम जा आहार हर जियो परया सैल पत्थर मह जनते उपाय ता कारजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन पहु करिया उड़े उड़ आवे सह कोसा तिस पाशे बचरे शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा बरिया गुजरी महला पंजवा चौपदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट कर्मा पितराते संसारी अंतर मैल ना उतरे हुमे बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा तारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे।

रहाउ देश कमावन धन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेब खवास सब त्यागे जम पुरयूठ सदास हुए अनन मन हट की दृढ़ता आपस कौ जानात जो अनिंद निंद कर छोड्यो सोई फिर खात सहज सुपाए पै।

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे रहाओ माया के संबंध सैन साक कित ही काम ना आया हर का दास नीच कुल ऊचा तिस संग मन बांछत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन ता मह त्रिशन ना बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया पै पंजन हर राया साध के चरण धूर जन बांछे सुख नानक एहो पाया गुजरी महला पंजवा पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कह वासा ऊहा छोड़ धर्म मह आया चित्र साल सुंदर बाग मंदर संग न कछु हूं जाया अवर सब मिथ्या लोभ लबी गुरपुरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाउ इष्ट मीत बंधप सुत पाई संग बनता रच हसिया जब अंती अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसिया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोयना रूपा दामा पहाड़ी को ओहो पहाड़ा मिलिया होर सगल पयो बे

जतर कता गुजरी महल्ला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कशु न आयु जह जह अवसर आई बनियो है तहां तहां हर त्यायु प्रभ को भगत वच्छल बिरदायु करे प्रतपाल बारक की न्याई जन को लाड लडायु रहाउ जप तप संयम कर्म धर्म हर कीर्तन जा

0: पंजवा
1: मुन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपने ही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाओ जीत जीत जीते सब थाना सगल भवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए केरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल भ्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दरड़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस भेटे टूटह माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति।

करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचह जोत तरी त्याय अपनो सदा हरी सोच अंदेशा।

चरण कमल अराध हृदय एक स्यो लिव लाह पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया।

करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखी भये पूर्ण काम सास सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना।

गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महावीर गरोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करन कारण जोग मन तन बांछिए जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते माध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमणं।

मन चरनार बिंद उपास कल कलेश मतंत सिमरन काट जम दूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राई जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाई गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावै सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उधरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परिउ नानक प्रभ तुमरी दे राखियो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावै त्रिह दस माल रखै जो नानक मोख मुक्त सो पावै केत हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी

सिख कथी अले सो वैद जे जाने रोगी तिस कारण काम ना धंदा नाही धंदे गिरी जोगी काम क्रोध अहंकार तजी अले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथी अले

है, बूझे है अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजे प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांग।

सोग बजोग बिसर्जत रोग पाई रे। गुर कृपा से भगत ठाकुर की, सतगुर वात हृदय हर निर्मल, ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ। हर गुण रसन रवह प्रभ संगे, जो तिस भावे सहज हरि। बिन हर नाम वृथा जग जीवन, हर बिन निफल मेक करी। ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर, निंदक गत नहीं काई। रोस करे प्रभ बख्श ना मेटे, नित नित चढ़ै सवाई। ऐ जी गुर की दात ना मेटे कोई, मेरा ठाकुर आप दिवाई।

लावै बिनमना अदुआराई आनंद मूल नाथ सिर नाथा सतगुर मेल मलाई है जी सदा दयाल दया कर रविया गुरमत भ्रमण चुकाई पारस भेट कंचन धात होई सत संगत की वडियाई हर जल निर्मल मन इशनानी मज्जन सतगुर पाई पुनरप जन्म नाही जन संगत ज्योति जोत मलाई तू वड पुरख अगम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मग्न हितं हिर नाम भगत दृढ़ मती गुरवाक शब्द रतं परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहित व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबरह हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं तै पाए भगत तर पव जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लभ लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरन गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन चाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै सो मुक्त होवै जो इच्छी सोई फल पाई नाच रे मन गुर कै आगै गुर कै भाणे नाच है ता सुख पाव है अंते जम पौ भागै रहाउ आप नचाए सो भगत कही है अपना प्यार आप लाई आपे गावै आप सुनावै इस मन अंधे को मार्ग पाए।

भूले है स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी गुजरी महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नाथ नरहर दीन बंदव पतत पावन देव भय त्रास नास कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुर गोबिंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहा।

बेकार राख धर्म परम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ पंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक सिरी धर पय गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस हरीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार गुजरी की वार महला तीजा।

नानक हुक्म बुझ परवान होए तां फल पावै सच कतनी बदनी करता फिरै हुक्मै मूल ना बुझई अंधा कच निकच पौड़ी संजोग वजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मलाया ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया ब्रह्मा बिचन महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया श्लोक महला तीजा सो जप सो तप जे सतगुर भावै सतगुर कै भाणे वडियाई पावै नानक आप छोड़ गुर माहे समावै महला तीजा गुर की सिख को विरला लेवै नानक जिसे आप वडियाई देवै पौड़ी माया मोह अज्ञान है बिखम अत भारी पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरियै तारी अन दिन भगती रत्या हर पार उतारी गुर शब्दी

आई ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ महला तीजा नानक मुक्त द्वारा।

सतगुर मिले हम मैं गई जोत रही सब आई एहो जियो सदा मुक्त है सहजी रहया समाई पौड़ी।

वस्यो मन आई त्रिक अवेहा जीव्या क्या जुग मह पाया आय माया खोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाय हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाय जिन सतगुर स्यों चित लाया किन सुख वस्या मन आय हर नाम त्यावह रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाय नानक सतगुर सो

पाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से ही उबरे जे सच रहे लिव लाए पौड़ी। ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर तीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रहे हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पी तिना मनाए सी, जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा, रैन सबाई जल मोई कंतना लायो भावो। नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, उपाय कितै ना पाईऐ हर कर्म बधाता। गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा, काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड़ जाए। इसनों कूड़ बोल के खवालीए,

नानक हुकुम ना जातु खसम का, जे रहा सच सुमाई महला तीजा। एको निश्चल नाम धन होर धन आवे जाय, इस धन को तस्कर जोहे ना सकई ना उ चक्का ले जाय। एहो हर धन जीए सेती रव रहिया, जीए नाले जाय। पूरे गुरते पाई मनमुख पल्ले ना पाई, धन वपारी नानका जिन्ना नाम धन खटिया आई। पौड़ी मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसकै वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है निश्चल धन धीरा, कृपा ते हर मन वसै भेटै गुर सूरा। गुणवंती सलाहिया सदा थिर निश्चल हर पूरा। श्लोक महला तीजा, त्रिग तिन्ना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुख हों मैं पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत कोई सुख ना पावे, अंत गए पछुताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस हों मैं विचों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरनी आए पाए। महला तीजा, मनमुख ऊंदा कौल है ना तिस भगत ना नाम। शक्ति अंदर वरतदा कूड़ तिसका है उपाव, तिसका अंदर चेतना भिजई मुख फीका आलाव। कोय धर्म रलाए ना रलन, उना अंदर कूड़ सुआव। नानक करता बनत बनाई,

पाई, सतगुरु की सेवा ना कीतिया, अंत गया पछताई, अपनी कृपा करे गुर पाई है, विचों आप गवाई, कृष्णा भुख विचों उतरै, सुख वसै मन आई, सदा सदा सलाही है, हिरदै लिवलाई, सलोक महला तीजा, जे सतगुर सेवे अपना, तिसनो पूजे सब कोए, सबना उपावा सिर उपाऊ है, हर नाम प्राप्त होए, अंतर सीतल शांत वसै, जप हिरदै सदा सुख होए, अमृत खाना अमृत पहनना, नानक नाम वडाई होए महला तीजा, ए मन गुर की सिख सुन, हर पाव है गुणी निदान, हर सुख दाता मन वसै, हऊ मैं जाए गुमान, नानक नदरी पाई है, तायन दिन लागे ध्यान पौड़ी, सत संतोख सब सच है, गुरमुख पविता, अंदरों कपट वकार गया, मन सहजे जिता, तह जोत प्रगास आनंद रस, अज्ञान गविता, आनंद नहर के गुण रवै, गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है, इको हर मिता सलोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है, जे अन दिन हर लिव लाए, सतगुर पुछे सच संयम कमावे, हम मैं रोग तिस जाए, हर गुण गावे है, गुण संग्रह, ज्योति ज्योत मलाए, इस जुग में है को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हम मैं मेत समाए, नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है, जे अन दिन हर नाम ते आए महला तीजा, अंतर कपट मनमुख अज्ञानी, रसना झूठ बोलाए, कपट कीता हर पुरख ना पीजे, नित वेखै सुनै सुभाए, दूजै पाए जाए जग प्रबोधै।

नानक गुरमुख मिल रहे जप हरनामा उरतार सलोक महला तीजा गुरमुख ध्यान सहज धुनि उपजै सच नाम चित लाया गुरमुख अनदिन रह रंग राता हर का नाम मन पाया गुरमुख हर वेख है गुरमुख हर बोल है गुरमुख हर सहज रंग लाया नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवै तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया जिसनो कर्म होवै धुर पूरा तिन गुरमुख हर नाम त्याया महला तीजा सतगुरु जिन्ना ना सेवियो शब्द ना लगो प्यार सहजे नाम ना त्याया कि त्याया संसार फिर जूनी पाई है विस्ता सदा खुआर कूड़ै लालच लग्या ना उरवार ना पार नानक गुरमुख उबरे जे आप मेले करतार पौड़े भगत सच्चै दर सोहदे सच्चै शब्द रहाए हर की प्रीत तिन उपजी हर प्रेम कसाए हर रंग रह सदा रंग राते रसना हर रस पिया।

क्रोध अहंकारा यह जम की सिरकार है। इना ऊपर जम का दंड करारा मनमुख जम मग पाईन

रस भोगी आप अतीत अलिपत है निर्योग हर जोगी जो तिस भावै सो करे हर करे सो होगी हर गुरमुख नाम ते आई है लह जाहे वजोगी।

दुख सहाय। नानक गुरमुख उबरी सच्चा शब्द समाही पौड़ी। ताडी तिसनो आखिए जे खसमै तरे प्यार। दर खड़ा सेवा करे गुर शब्दी विचार। ताडी दर घर पाए सी

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरै सज्जन पहुण्यो। बरसना ता बरस घना बहुर बरस है काहे। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा मिठा सो जो भावदा

शंकर विष्णु अवतार हर जस मुख भणा पीर पिकांबर सेठ मसाय के औलिए ओत पोत निरंकार कट कट मौलिए कूड़ो करे विनाश धर्मे तगी है जित जित लाए हैं आप तित तित लगी है सलोक महला पंजवा चंगे आई आलक करे बुरे आई होए सेर नानक अज कल आवसी गाफल फाही पेर महला पंजवा कितिया कुटंग गुजा थी नाहित नानक तैं सह ढकिया।

दवन्य मित्र असाढ़े से कांट ने दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठियां मन की कटिया मैल साध संग उठिया जन्म मरण भौ कटिया जन का शब्द जप बंधन खोल।

आप दया तारी समरथ चुके बिल बलाप नथे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब नवाज थाप आपे लयन छाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख त्राप।

दुख जाए। भगत तेरे दयाल उना मेहर पाए, दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए। भगता एहो आधार गुण गोविंद गाए, सदा सदा दिन रहन इको एक त्याई।

जिन सच ना लगो रंग पौड़ी ज्यो ज्यो तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना जह जह रखे आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरे कै रंग दुरमत धोवना जप जप तुद निरंकार भरम पौ खोवना जो तेरे रंग रत्ते से जोन ना जो

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप किरपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसह दयाल बुझाए हुक्म मित जिसह पलाए आप मर मर जमे है नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकै है हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगे बिन लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सत्ते।

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगही है जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है दुख सुख करत महाभ्रम बूडो अनक जोन परमई है रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर का।

हम हर की सेवा गुजरी घर पहला मलै न लाछ पार मलु करम लियो बैठो री आई आवत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझी है रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यों अकाश पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई ज्यों

पाणी लख चौरासी जिन अपाई सो सिमरोह निर्वाणी कायक मंडल कापड़ी आरे अठ अठ कायक राही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी तन बिन गाह के पाही गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह दे मरै सर्प जोन वल वल अवतरै अरी बाई गोविंद ना

बेसवा जून वल वल अवतर अंत काल जो लड़के सिमर ऐसी चिंता मह जे मर सूकर जोन वल वल अवतर अंत काल जो मंदर सिमर ऐसी चिंता मह जे मर प्रेत जोन वल वल अवतर है।

हर जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार, रहाउ लोकन की चतुराई उपमा, ते बै संतर जार, कोई भला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है टार, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार, देव गंधारी, हर गुण गावे हों तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिल है जूठारी, हम रह जिये होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण तुम्हारी, देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नक्ति, ज्यों बेसवा के करपूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रक्ति रहाओ, जिनकै हृदय नाही हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ति, ज्यों नुगुरा बहु बाता जाने, ओहो हर दरगाह है प्रस्ति, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकती, नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पात।

ज्यो अपने प्रभ भाव नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलाव रहाव अनक अडंबर माया के बिरथे ता स्यो प्रीत कटाव ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सोभा पाव दासन दास रेण दासन की जन की टहल कमाव सर्व सुख बड़े

सेवा दर्शन दुख उतारियो नाम जपत महासुख पायो चिंता रोग बदारियो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारियो माया बंद काटे कृपा निद नानक आप उधारियो देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाउ आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही।

राम नाम रस माती महा किल बिख कोट दुख रोगा प्रभ दिष्ट तुहारी हाती सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराती।

आ रहाउ। खोजत खोजत खोज बिचारियो, हर संत जना पह आहा। तिने प्राप्त इहो निधाना, जिनकै कर्म लिखा। ते बड़ भागी ते

दुख कने रह सके जो देव गंधारी पंजवा मन गुर मिल नाम अरादे सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भादेव रहा कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पादे भाव भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साधे भयो अनग्रहो मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ लादे बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगादे देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताकू पार ब्रह्म।

चंचल सुपने ही पुर जायो, इतनी ना बूझै कब हूँ चलना, विकल भयो संग मायो रहाओ, कुसुम रंग संग रस रचिया, विखिया एक उपायो, लोभ सुने मन सुख कर माने, बेग तहां उठतायो, फिरत फिरत बहुत श्रम पायो, संत द्वारे आयो, करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी, नानक लियो समायो, देव गंधारी पंजवा।

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरनिहारो करहु अनग्रहु स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ। साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन में है इहो सुख धारो गुण गावे है ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारू नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए उड़ तारो देव गंधारी महला।

उपजी छोड़ न कतहु जाता रहाउ। बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मजन किनो साधु धूरी नाता सफल जन्म।

आय संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्श समाइय देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल भई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुई कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया

पाए छोड़ न जाए सद ही संगे अन दिन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना त्याग न कतहु जाए अनक अनक भांत बहु पेखे प्रिय रोम न समसर लाए मंदर भाग सोभ द्वार अनहत रुण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माणी ग्रह प्रिय तीके सद थाई।

जिस आराधी जो दिसकै सो गाखै साध संगत की सरनी परिया चरण रेन मन बाचै जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुतर माए आचै आए पयो नानक गुर चरण तो उतरी सगल दुराचै देव गंधारी पंजवा अमृता प्रिय बचन तुहारी अत सुंदर मन मोह।

चार बरन मुक्त भये देव तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया दुतिया गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निध पाई सहजो राग देव गंधारी महला पंजवा कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक रे हर एक जान एक रे गुरमुख जान रहाउ काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई रवियारे रविया सर्वथान ज्यों बैसंतर काष्ट मझार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार मिल संगत ताज अभमान।

कर चतुराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक चतुर वेद उचरत दिन रात।

छुटकी रे मन छुटकी रे ताकत संग ना छुटकी रे रहाओ। जो काजर भर मंदर राखियो जो पैसा कालू की रे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटी रे। मांगो दान कृपाल कृपा नित मेरा मुख साकत संग ना जुटती रे। जन नानक दास दास को करियो मेरा मूंड साध पगा।

पोयंगन बसरिया अनक उपरिया तौ तो मैं हर हर करिया तौ तो सुख सहजरिया रहाउ मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन घिरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहुबंध परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपि पाचहारिये अर बहु लोग सियाने रहाउ इन मह राउ रंक कौ करई राउ रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी।

राम। मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए, हर हर नाम त्याए राम। हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए, ज्यो बालक लग दुध कीरे राम। हर बिन चांत ना पाईऐ मेरी जिंदड़िए, ज्यो चातरक जल बिन तेरे राम।

0: वडभागी गुर पाया मेरी जिंदड़िए, गुर पूरै गत मित पाया राम, गुर अमृत हर मुख चोया मेरी जिंदड़िए, फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम, जन नानक सतगुरु जो मिले मेरी जिंदड़िए, इनके सब दुख गवाया राम,
1: अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए,
0: इत जपे पाप गवाते राम, पतत पवित्र गुर हर।

जिंदड़िए हर अमृत हर तरना राम अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए जन नानक खिन हर राते राम बिहागड़ा महला चौथा हौ बलिया।

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुनह हर तेरे राम सो सी

तेरा। जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़िए, तिन जान सब डर सुट कत्ते राम। हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए, सब झख मारन

सो ऐसा हर नित सेविया मेरी जिंदड़िए जो सबदू साहिब वड्डा राम जिनी एक मन एक अराध्या मेरी जिंदड़िए तिना नाही किसै दी किस चड्डा राम गुर सेवै हर महल पाया मेरी जिंदड़िए झख मारन सब निंदक कंडा राम जन नानक नाम त्याया मेरी जिंदड़िए तुर मस्तक हर लिख छड्डा राम बिहागड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ।

तिनका संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए इस मन नाम वसाए राम। जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम। वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर रव रहे आ मेरी जिंदड़िए पार

जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम शका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत घर पहला।

कियो, हर हर नाम अराधे राम, कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो, जम का मार्ग साधे राम, मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख, हर दरगहा सुबा पाईए, जिनको बधाते तुरहु लिखिया, तिन्ना रहन दिन लिव लाईए, हौ मैं ममता मोह छुट्टा, जां संग मिलिया साधे, जन कह नानक मुक्त हुआ, हर हर नाम अराधे, कर जोड़े हो संत इकत्तर होए मेरे लाल जियो।

भगतन की मन तन लगो, हर जियो सब पतत पनीता राम, पतता पनीता होए तिन संग, जिन बदाता पाया नाम राते जी दाते, नित देहे चढ़ सो आया, रिद सिद्ध नव निद हर जप, जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक वड भाग पाई है, साध साजन मीता जिन्नी सच वणंजिया हर

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर एच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वद सुख रैनड़िए प्रिय प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रिय रंग राती सहज माती महा दुरमत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी

करन लगे है। मन प्रिय प्रेम घना हर की भगत मंगे है। हर भगत पाईए प्रभ त्याईए जाहे मिलिए हर जना। मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन एहो मना। बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण भ्रम पीत हर हर मिल भगै है।

पंजवा खोजत संत फिर है प्रभ प्राण अधारिये राम तान तन कीन भया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलहु प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाए लीजिए देह नाम अपना जपूं स्वामी हर दर्स पेखे दीजिए सम्राथ पूर्ण सदा निचल ऊच अगम अपारे बिनवंत नानक तार कृपा मिलहु प्राण प्यारे जप तप बरत कीने देखन को चरना राम तपत ना कतह बुझे बिन स्वामी सरना राम प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है नाथ निर्गुण कछ ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है दीन दयाल गोपाल प्रीतम सम्राट कारण करना नानक चातरक हर बूंद मांगे जप जीवा हर हर चरना अमह सरोवरो पियो हर हर नामा राम संत है संग मिले जप पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख बदीरन हर निमख मन हुना बीसरे आनंद अनदिन सदा साचा सर्व गुण जगदीसर अगणत ऊच अपार ठाकुर अगम जाको तामा बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन मिले श्री रंग रामा कई कोटक जग फला सुन गावन हारे राम हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम हर नाम जपत।

सदमना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचे अगम अपारी बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारी बिहागरा।

गुण गपालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली।

अनक दुख कमावनी अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावनी कर अनग्रह पतत पावन बहु जोन प्रमते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण अधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महाचंचल दोख कर कर जोरी नानक शरण सम

ज्ञान मैं प्रगट भए तीजा सुहावी संग प्रभ कै अपनी प्रभ कर लय छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत कह जाही, आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट कट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम, सरपर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाईऐ, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाईऐ, हों हों करतना त्रिशन बूझै, नह काम पूर्ण ज्ञानी बिनवंत नानक बिन नाम हर के, कीत्या पछताने तार अनग्रहो अपना कर लीना राम, पुजा गह काग लियो साधु संग दीना राम, साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले, महाधर्म सोदान किरिया संग तेरे सिह चले, रसना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मलाए सो सर्व गुण पर बीना।